सुप्रभात। मीडियम वेव 462.96 छः मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 5वीं तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है अब समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों के विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट,
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: एंड टूगेदर बिकमिंग अ फोर्स मल्टीप्लायर।
1: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रूपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्व पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने

0: बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जन्मभूमि केवल हमारी धरती नहीं बल्कि हमारी पहचान, संस्कृति और गौरव का आधार है। इसकी मिट्टी में हमारे सपने और संस्कार बसते हैं। अपनी जन्मभूमि के विकास, स्वच्छता और सम्मान के लिए योगदान देना हम सभी का कर्तव्य है।

गुरु हमारे जीवन के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत होते हैं। वे अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। गुरु हमें सही और गलत का अंतर समझाते हैं और जीवन में सफलता की राह दिखाते हैं। उनके आशीर्वाद और शिक्षाएं हमें अच्छे संस्कार, आत्मविश्वास और अनुशासन प्रदान करती है।

अखियां हरि दर्शन को प्यासी, भक्ति और विरह की अद्भुत अभिव्यक्ति है। इसमें भक्त अपने प्रभु के दर्शन की गहन इच्छा व्यक्त करता है। ये रचना हमें ईश्वर प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का संदेश देती है।

कबीरदास जी की रचनाएं हमें जीवन में सरलता, संयम और संतुलन का संदेश देती है। इस रचना में कबीरदास जी बताते हैं कि लोभ, अहंकार और जल्दबाजी से बचकर धैर्यपूर्वक जीवन जीना ही सच्ची बुद्धिमानी और सफलता का मार्ग है।

0: कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं चिंतन, आलेख शालिनी शुक्ला का और वाचक स्वर महिमा शर्मा का।
1: साधना एक ऐसा मार्ग है जो इंसान को धीरे धीरे बेहतर बनाता है और उसे अपने जीवन का सही अर्थ समझने में मदद करता है। साधना का मतलब केवल पूजा पाठ या ध्यान करना ही नहीं होता, बल्कि यह अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से लगातार प्रयास करना भी है। जब कोई व्यक्ति किसी काम को पूरी लगन, धैर्य और अनुशासन के साथ करता है तो वही उसकी साधना बन जाती है। यह एक दिन या कुछ समय की बात नहीं होती, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। साधना हमें सिखाती है कि सफलता तुरंत नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए मेहनत, समय और धैर्य की जरूरत होती है। जब हम बार बार कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और हार नहीं मानते, तब हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। यही साधना की असली पहचान है। साधना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारे सोचने और जीने के तरीके को बदल देती है। जब हम किसी लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करते हैं तो हमारे अंदर आत्मनियंत्रण आता है। हम अपनी इच्छाओं, भावनाओं को समझने लगते हैं और उन पर नियंत्रण करना सीखते हैं। जैसे अगर हमें पढ़ाई में अच्छा करना है तो हमें समय पर पढ़ना होगा, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना होगा और अपने समय का सही सदुपयोग करना होगा। यह सब साधना का ही हिस्सा है। इसी तरह आत्म जागरूकता भी साधना से आती है, जिससे हमें यह समझ में आता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी ताकत क्या है और हमें किन चीजों में सुधार करना है। जब ये समझ बढ़ती है तो हम अपने फैसले भी बेहतर तरीके से लेने लगते हैं और गलत रास्ते पर जाने से बचते हैं। धीरे धीरे साधना हमारे अंदर आत्मविश्वास भी पैदा करती है। जब हम किसी काम को नियमित रूप से करते हैं और उसमें सुधार देखते हैं तो हमें खुद पर भरोसा होने लगता है। यह भरोसा हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, हम हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य के लिए डटे रहते हैं। यही आत्मविश्वास हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। साधना हमें यह भी सिखाती है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सीख के रूप में लेना चाहिए। जब हम असफल होते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि कहाँ गलती हुई और अगली बार कैसे बेहतर किया जा सकता है। इसी तरह हर असफलता हमें और मजबूत बनाती है। साधना का प्रभाव केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यक्ति के पूरे जीवन को सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर देता है। जब कोई व्यक्ति निरंतर प्रयास और समर्पण के साथ साधना करता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास मजबूत होता है और वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। वह चुनौतियों को बाधा नहीं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मानने लगता है। साधना उसे नकारात्मक विचारों से दूर रखकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती है, जिससे उसके जीवन में संतुलन, स्थिरता और संतोष का भाव विकसित होता है। इसके साथ ही साधना मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करती है, जिससे व्यक्ति तनाव और दबाव के बीच भी शांत और संयमित रह पाता है। इस प्रकार साधना केवल सफलता प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि एक बेहतर, जागरूक और संतुलित इंसान बनने की प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को आंतरिक शांति, संतोष और सार्थक जीवन की अनुभूति कराती है। साधना के लिए सबसे जरूरी चीज है नियमितता। अगर हम किसी भी काम को रोज रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं तो समय के साथ उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। चाहे वह पढ़ाई हो, कला सीखना हो या खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना हो, हर चीज में सफलता साधना की जरूरत होती है। अगर हम बीच बीच में रुकते रहते हैं या जल्दी हार मान लेते हैं तो हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और लगातार प्रयास करते रहें। साधना का असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। यह हमें न केवल सफल बनाती है बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाती है। जब हम अपने अंदर अनुशासन, धैर्य और सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो हमारे रिश्ते भी बेहतर होते हैं और हम दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करने लगते हैं।
0: आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख शालिनी शुक्ला और वाचक स्वर महिमा शर्मा का था। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं खेती की बातें। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर नीलम वनकर और विषय है वर्षा जल संचयन।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम बुनकर, सहायक प्राध्यापक कृषि अभियांत्रिकी, कृषि महाविद्यालय इंदौर से आपको वर्षा जल संचयन के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। राम राम किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वर्षा जल संचयन का ज़रूरत क्या है। वर्षा जल संचयन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें जल को एकत्रित करना है, उसे संग्रहित करके रखना है। हम सब ने बहुत सुना है कि जल है तो कल है, जल ही जीवन का आधार है। पर अगर आधार ही खतरे में हो तो हमें ज़रूरत है उसे एकत्रित करने की और संग्रहित करने की। ये मैं आंकड़ों के हिसाब से बताना चाहूँगी आपको कि 2011 में ये सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता लगभग 1545 मीटर क्यूब पर ईयर थी, पर 2025 में यह घटकर 1320 मीटर क्यूब पर ईयर हो गई। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जल की उपलब्धता प्रति व्यक्ति घटती चली जा रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम जल तनाव से ग्रस्त हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन कहता है कि अगर प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1700 मीटर क्यूब पर ईयर हो गई तो इसका मतलब जल तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो हमें टैंकर्स की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं वाटर को हमें रखना पड़ेगा, उसको फिर उपलब्ध कराना पड़ेगा जब भी ज़रूरत होगी। तो इसीलिए विभिन्न तरीके हैं इसे हमें संचयन करने के, जैसे कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग है, सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग है, ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग है। इनको हम एक एक करके समझेंगे। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग में हम घर की छतों में गिरने वाले पानी को पाइप के माध्यमों से टंकियों में संग्रहित करते हैं। ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग में हम रिचार्ज पिट, पुनर्भरण गड्ढे और परकोलेशन टैंक बनाते हैं जिसमें कि हम पानी को इकट्ठा करते हैं और उपयोग जब भी हमें ज़रूरत होती है तब हम उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर रिचार्ज पिट हम बनाते हैं, उसमें भी यही स्थिति उत्पन्न होती है कि वर्षा के जल को हम संचित करें और संचित करने के बाद जब भी ज़रूरत हो उसका हम उपयोग कर सकें। रिचार्ज पिट और परकोलेशन टैंक में सिर्फ अंतर इतना है कि इनके जो ढांचे हैं वो अलग अलग होते हैं। इनके ढांचे के हिसाब से इनका उपयोग किया जाता है छोटे और बड़े स्तर पर। तीसरा जो महत्वपूर्ण इसका बिंदु है और तरीका है वो है सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग का। सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग में फार्म पॉन्ड, चेक डैम और स्टॉप डैम बनाया जाता है कि जो कि स्थानीय रूप में उपलब्ध सामग्री होती है जिसका मूल्य बहुत ही कम होता है, उसके उपयोग से हम छोटे छोटे बांध बना देते हैं, इसलिए उन्हें छोटे बांधों के नाम से भी जाना जा सकता है। यह जल को रोकते भी हैं जिससे सिंचाई की जा सकती है और रुका हुआ पानी भूजल के स्तर को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु है वो है फार्म पॉन्ड। इसमें किसान अपने ही खेत में तालाब बनाकर जल को संग्रहित करता है और जरूरत पड़ने पर उपयोग कर सकता है। इसमें सरकार भी हमारी बहुत बढ़ चढ़कर मदद कर रही है, बहुत सारी ऐसी योजना ला रही है जिसकी मदद से हम जल को संरक्षण कर सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं, जल को संग्रहित कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि पर्यावरण को हम संरक्षित कर सकते हैं। इसमें कुछ योजनाएं आती हैं जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड कृषि कार्यक्रम, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जलाशयों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के लिए जो ज़्यादा रूबरू करता है वह योजना है बलराम तालाब योजना। बलराम तालाब योजना मध्य प्रदेश में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना में किसान बहुत सारी ऐसे अनुदान उसे दिए जाते हैं, जैसे कि 40,000 से 1,00,000 तक का अनुदान दिया जाता है, जिसमें वह अलग अलग ढांचे बना सकता है, जिसमें उसका जो ढांचे का साइज होता है वो अलग अलग रहता है।

और विषय था वर्षा जल संचयन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

कामदेव को भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए भेजना देवताओं की एक चाल थी जिसमें वे सफल हुए थे, किंतु शिव के तृतीय नेत्र के खुलते ही कामदेव के भस्म हो जाने की घटना से देवगण एक बार फिर हतोत्साह हो गए। रति के रोने बिलखने से द्रवित होकर भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि उसका पति कामदेव अब से अनंग होकर सभी प्राणियों को व्यापेगा। इस वरदान से देवताओं का मनोबल बढ़ा और ब्रह्मा तथा विष्णु समेत सभी देवता शिव जी के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने अनंग के रूप में कामदेव को पुनर्जीवन देने के लिए शिव जी की प्रशंसा की। देवगण ने तब पार्वती के अपार तप का वर्णन करते हुए शिव जी से उन्हें पत्नी रूप में अंगीकार करने की प्रार्थना की। अपने आराध्य श्री राम के वचन याद करके शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली।

अभी आप श्री रामचरित मानस गान सुन रहे थे। गायक स्वर मालिनी नाम्बियार का और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे इंदौर परिक्रमा, प्रस्तुति मुकाम सिंह चौहान की। 7:35 पर हम लेकर आएंगे सदाबहार फिल्म गीतों का प्रोग्राम सुनहरे पल। आज का एक विशेष कार्यक्रम होगा। सुबह 8:30 कवि गोष्ठी हम लेकर आएंगे। प्रतिभागी कवि हैं गेंदालाल भाटी, सीमा शाह और शिव चौरसिया। सुबह 9:00 लोक संगीत में सुनिए राजुल सिंधी को। 9:15 पर सुगम संगीत में कलाकार हैं सोनू निगम। 9:30 शास्त्रीय संगीत में सुनिए पंडित शिव कुमार शर्मा का गायन, राग है भूपाल तोड़ी। सुबह 10:00 होगी जिले की चिट्ठी। 10:05 पर सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम है। सुबह 11:00 फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। इस घंटे की खास खबरें 11:58 पर, 12:58 पर और 2:58 पर। दिन में 12:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 12:30 हम लेकर आएंगे संग्रहालय से और 1:00 होगा महिला कार्यक्रम। आप सुनेंगे आरंभिक चर्चा में डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचें, योजना लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी आपको सुनने को मिलेगी। भेंट वार्ता होगी मोटे अनाज से लाभ, जानकारी देंगे डॉक्टर सोनाली निरगुदे। मी टाइम में जानिए आर्थिक स्वतंत्रता का शानदार माध्यम, बिहार की प्राचीन और लुभावनी सिक्की कला। और ये जानना भी जरूरी है, इस क्रम में सुनिए वेस्ट बिफोर डेट एंड एक्सपायरी डेट का मतलब। हेल्थ टिप्स में जानिए स्टोरेज टिप्स।

0: दिन में 1:30 पर सुनिए लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत का प्रोग्राम होगा। 2 सुनिए फिल्म संगीत। 2:30 पर चित्रपट संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे। शाम 5 युवाणी में युवा साथी सुनेंगे साप्ताहिक विज्ञान और खेल गतिविधियां। 5:45 पर सुनिए फिल्म संगीत और 6 होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 6:30 सुगम संगीत में कलाकार है सोनू निगम और 6:45 पर लोक संगीत में सुनिए राजुल सिंधी को। 7:20 पर खेती गृहस्थी प्रोग्राम होगा, आप सुनेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर जानकारी और कविता पाठ होगा हुकुम चंद कटारिया से। रात्रि 8 सुर्खियों में हम भोपाल केंद्र से रैली करेंगे और 8:15 पर लेकर आएंगे दिल ने फिर याद किया। रात्रि 9:15 पर सुनिए चित्र गीत और 9:30 पत्र पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम होगा मन भवन। रात्रि 10:30 शास्त्रीय संगीत में सुनिए विदुषी पद्मा तवलकर का गायन, राग है सावनी विहाग। आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगड़े।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमेनिन से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरूपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टिपत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रूपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य ज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्राकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या
2: अब आकाशवाणी इंदौर

0: में सुना जा सकता है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: और सुनेंगे कैसे?
0: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: ये धरती ये नदिया ये रहना
1: और
2: आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: इस समय आप हैं हमारे साथ।
4: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
5: श्रोताओं, आपको बता दें, आप सुनेंगे साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारती इंदौर FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आपके लिए दिनांक 26 जून 2026 यानी आज सुबह 11:32 से 12 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहें सावधान। ये कार्यक्रम शुक्रवार दिनांक 26 जून यानी आज 11:32 से 12 बजे तक FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती चैनल पर प्रसारित हो रहा है। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम के विशेषज्ञ होंगे DSP नरेंद्र सिंह रघुवंशी, स्टेट साइबर सेल इंदौर। श्रोता साइबर अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सीधे प्राप्त कर सकेंगे। हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय एक बार फिर नोट कर लीजिए। आज ही का दिन और सुबह 11:32 से 12 बजे तक आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं विविध भारती चैनल पर। तो आप फोन करके साइबर क्राइम रोकने के लिए विशेष सावधानियां विशेषज्ञ DSP नरेंद्र सिंह रघुवंशी से, जो स्टेट साइबर सेल इंदौर से हैं, आप जान सकते हैं इसके बारे में जानकारी। और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी। सूचना समाप्त हुई।

0: ये धरती ये नदिया ये रहना
1: और
2: आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र, जिसे आप सुन सकते हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: करूंगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग की।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, नशे के दुष्परिणामों से बचाने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल करें। देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार, पहले की तरह बहाल हुई सेवाएं। और आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे वहां के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय सहयोग में सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करेंगे। बता दें कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशेल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत और स्थायी मित्रता को नई गति देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की बैठक में कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि नशे के दुष्परिणामों से किशोरों और युवाओं को समय रहते परिचित कराना जरूरी है। नशे के विरुद्ध वातावरण बनाने के उद्देश्य से स्कूली और महाविद्यालयीन स्तरों के पाठ्यक्रमों में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता पर केंद्रित सामग्री शामिल की जाए। वैश्विक संकट के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार आने के बाद केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब पश्चिम एशिया संकट से पहले ही आपूर्ति बहाल कर दी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार थोक एलपीजी की आपूर्ति को पहले से 50% तक बढ़ा दिया है, जिससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही सरकार ने पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने का भरोसा भी जताया है। भारत ने जर्मनी में सुहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 में कल 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 4 और पदक जीतकर 25 पदक अपने नाम कर लिए। उधर आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। वहीं हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए रविवार को ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। वहीं भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। लोकतंत्र प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या का दिन बताया। उन्होंने कल ग्वालियर में कहा कि आधी शताब्दी बीतने के बाद भी उन्हें अपने स्कूली जीवन की वे यादें ताजा रहती हैं। मंत्री पटेल ने कहा कि देश ने आजादी के बाद जो अन्याय और यातनाएं झेली हैं, उसकी जानकारी आगामी पीढ़ी को होना जरूरी है, ताकि वे समझ सकें कि लोकतांत्रिक मूल्य कितने महत्वपूर्ण हैं।
1: लोकतंत्र की हत्या का दिन था वो। आधी शताब्दी बीत गई है पर मुझे लगता है कि जब आपातकाल लगा था तब मैं पढ़ता था स्कूल में। आज वो जनरेशन जरूर याद रखे कि मूल्य कैसे सुरक्षित होते हैं। लोगों ने आजादी के आंदोलन की बातें तो सुनी है, लेकिन उसके बाद देश की आजादी के बाद जो अन्याय इस देश पर हुआ, वो जितने यातनाएं सही हैं, उनकी जानकारी भी आने वाली पीढ़ी को होना चाहिए। और जिन लोगों ने लोकतंत्र बचाने के लिए यातनाएं सही हैं, उनका स्मरण भी होना चाहिए और उनको नमन भी होना चाहिए, और उसी कारण से पार्टी प्रतिवर्ष काम करती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर जल संकल्प से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने राज्य में एक अभूतपूर्व जल क्रांति का सूत्रपात किया है। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी ने अपने हालिया लेख में मुख्यमंत्री को जनप्रिय जननायक के रूप में रेखांकित करते हुए लिखी है। लेख के अनुसार मुख्यमंत्री पिछले 22 वर्षों के अपने भागीरथ संकल्प और अटूट निष्ठा के बल पर वे जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्रदेश के पारंपरिक जल स्रोतों, कुओं और बावड़ियों का कायाकल्प कर रहे हैं। आस्था की केंद्र मां शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त और अविरल बनाना है उनका मुख्य उद्देश्य, ताकि आगामी सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालु शुद्ध जल से स्नान कर सके। भोपाल के रविन्द्र भवन में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश से आए करीब 2000 मीसाबंदियों और उनके परिवारों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले 3 वयोवृद्ध सेनानियों का विशेष सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की अंतिम अंतरकुंजी यानी आंसर की को चुनौती देने वाली विंडो खोल दी है। उम्मीदवार 28 तारीख तक www.neet.nta.in पर प्रति प्रश्न ₹200 का शुल्क देकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। साथ ही पुनर्परीक्षा में शामिल छात्र शुल्क वापसी के लिए 30 तारीख तक बैंक विवरण अपडेट कर सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार का संकल्प किसानों की आमदनी बढ़ाना है, जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को अपनाना होगा। श्री चौहान ने कहा कि
3: आपसे निवेदन करूंगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग की। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है एक एक चीज नहीं लगाए मेरे भाई। हमारे यहाँ कहते थे 4 फुट, मतलब खेत में 4 फुट पे 4 चीज लगाओ, एक फसल मत लगाओ। अपन तिल गए धान तो धानी धान, धान और गेहूं, धान और गेहूं, धान और गेहूं। उससे क्या हुआ कि पहले अपन दलहन बाकी चीज लगाते थे तो अपने आप नाइट्रोजन फिक्स हो जाता था धरती में, बदल बदल के लगाते थे ना, तो धान गेहूं का विरोध ही नहीं हुआ। लेकिन लगातार एक ही चक्र चलेगा तो धरती खराब होगी। एक करें अपन इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब ये भी है कि फल भी लगाएं, सब्जी भी लगाएं, दाल भी लगाएं। अब गन्ना के बीच में आकर मूंगफली लगा रहे हैं, अब यहाँ पे शुरू हुआ अच्छा इंटरक्रॉपिंग भी करें। और वहीं पशुपालन भी हो, जिनकी रुचि है वो मछली पालन करें, जिनकी रुचि है उनसे कह रहा हूँ मधुमक्खी पालन हो सकता है, कृषि वानिकी या एग्रीबेस्ड फॉरेस्ट एग्रीबेस्ड एग्रीकल्चर हो सकती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल यहाँ बना है, उसको जरूर देखना। 4-5 चीज करो मेरे भाई। हमारे यहाँ कहते थे 4 फुट।
0: प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कल प्रदेश के कलेक्टर्स को शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकरण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुशासन के लिए सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने और हर विद्यार्थी की आभार आईडी बनाने को कहा। बैठक में शिशु मातृ मृत्यु दर को कम करने, सभी जिलों में पशु आश्रय स्थल विकसित करने और पीएनजी कनेक्शन के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के बदरवास में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की 8 कंपनियों ने भाग लिया। इस मेले में 159 आकांक्षी युवाओं का प्रारंभिक चयन कर उन्हें मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए गए। खंडवा के शासकीय आईटीआई में 2 जुलाई को रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिस मेले के विभिन्न निजी कंपनियां करीब 200 पदों पर भर्ती करेगी। इसमें 18 से 35 वर्ष आयु के 5वीं से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवा भाग ले सकेंगे। आगर मालवा में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय विकासखंड स्तरीय शिविरों में वयोश्री योजना के 99 वरिष्ठजनों और एडिप योजना के 63 दिव्यांगजनों को चिन्हांकित किया गया है। अशोकनगर में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर योजना के तहत एथलेटिक्स कोच की नियुक्ति की गई है। इसके अंतर्गत विभिन्न विधाओं में रुचि रखने वाले और आर्मी व पुलिस भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। कटनी जिले में स्कूल चले हम अभियान के तहत शाला प्रारंभ उत्सव के 2रे चरण में शासकीय स्कूल दोबारा खुल गए हैं। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों के 1st और 2nd श्रेणी के 100 से अधिक अधिकारियों ने स्कूल में प्रेरक बनकर बच्चों का मार्गदर्शन दिया।

झाबुआ कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एसएन मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक कल संपन्न हुई। बैठक में जनता की सुविधा के लिए भौगोलिक परिस्थितियों प्राकृतिक सीमाओं आदि पर चर्चा की गई। डिंडोरी जिले के महदवानी में जन अभियान परिषद द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत दंदना नदी तट पर स्वच्छता श्रमदान किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं इंदौर परिक्रमा, प्रस्तुति मुकाम सिंह चौहान की।
1: इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा।
2: नमस्कार श्रोताओं, इंदौर परिक्रमा के साथ मैं मुकाम सिंह चौहान। आज 26 जून को मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी योमे आशूरा मनाई जा रही है। यह दिन इस्लामी इतिहास में बेहद भावुक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन कर्बला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने शहादत दी थी। इंदौर में इस अवसर पर विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों में कई पारंपरिक व धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शहर के विभिन्न मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में पारंपरिक और कलात्मक ताजिए निकाले जा रहे हैं। ये जुलूस आमतौर पर बॉम्बे बाजार, जवाहर मार्ग, राजवाड़ा और मियाँ बाजार जैसे ऐतिहासिक और केंद्रीय क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इंदौर की गंगा जमुनी तहजीब के तहत आशूरा के दिन जगह जगह सबील लगाई जाती है, जहां आम जनता और जुलूस में शामिल लोगों को ठंडा पानी, शरबत और दूध बांटा जाता है। इसके साथ ही शहर में निकलने वाले बड़े जुलूसों और भीड़ को देखते हुए इंदौर पुलिस और प्रशासन द्वारा जवाहर मार्ग, राजवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है, ताकि कानून व्यवस्था और यातायात सुचारू बना रहे। इस अवसर पर माहे मुहर्रम का क्या महत्व है, आइए जानते हैं।
3: मैं प्रोफेसर डॉक्टर काजी एस रहमान, शहर काजी शुजालपुर और एक्स डायरेक्टर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड। माहे मुहर्रम का इस्लाम धर्म में दोहरा महत्व है। पहला महत्व तो ये है कि हिजरी सन की शुरुआत मुहर्रम की पहली तारीख से शुरू होती है और इस्लामी धर्म का नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। मुहर्रम इबादत का त्यौहार भी है, मोहब्बत मसरत का त्यौहार भी है और मोहब्बत गमे इजहार का त्यौहार भी है। गमे इसलिए कि मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ क्रूर शासक यजीद की सेना से लड़ते हुए कर्बला के मैदान में नमाज पढ़ते हुए शहीद हो गए थे। आज से करीब 1448 साल पहले हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की पुनर्स्थापना की थी। लोग ये कहते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का प्रवर्तन किया था, ये सही नहीं है, क्योंकि इस्लाम धर्म आज से 5000 साल पुराना है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में भी इस्लाम दुनिया में मौजूद था। लेकिन जब अरब में अत्याचार फैले, क्रूर शासक वहाँ पे स्थापित हुए, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम धर्म के सिद्धांतों की पुनर्स्थापना की और इस प्रकार से अरब और आसपास के मुल्कों में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 21 साल बाद शाम, जिसे हम आज थाईलैंड कहते हैं, यजीद उसका बादशाह बना और उसने फिर क्रूर अत्याचारी शासक के रूप में अरब मुल्कों पर अत्याचार करना शुरू किए। उस वक्त कूफा शहर के लोगों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कूफा आने का निमंत्रण

दिया और उनकी दावत पर हजरत अपने 72 साथियों के साथ लश्कर को लेकर कूफा में आए और वहाँ यजीद ने उन्हें चारों तरफ से कर्बला के मैदान में घेर लिया और इस प्रकार से हजरत इमाम हुसैन को यजीद के साथ में युद्ध करना पड़ा। मुहर्रम की 7 तारीख हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों का राशन पानी सब बंद कर दिया गया और मुहर्रम की 10 तारीख को यजीद के साथ हजरत के लश्कर की जंग की शुरुआत हुई और इस तरह मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ नमाज पढ़ते हुए यजीद की सेना के हाथों में शहीद हो गए। ये तो मुहर्रम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, लेकिन उसके बाद मुहर्रम इबादत का त्यौहार बन गया है। आज जिस विकृत स्वरूप में मुहर्रम की छवि भारत में दिखाई देती है, वास्तव में ये मुहर्रम का पैगाम नहीं है। मुहर्रम तो इस बात का संदेश देता है कि शांति, सौहार्द और भाईचारे के लिए हजरत इमाम हुसैन ने जिस तरह शहादत की, अगर आपको भी शांति की स्थापना के लिए अपनी जान को कुर्बान करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मुहर्रम इबादत का मजहब है, जैसा कि मैंने पहले कहा, और मुहर्रम के 10 दिनों में लोग रोजे रखकर इबादत करते हैं। आज जिस रूप में हिंदुस्तान में मुहर्रम दिखाई देता है, वास्तव में ये मुहर्रम की एक परंपरा है जो ताजियदारी, बुर्राकें, घोड़ों के जुलूस, सवारियां, इनकी शुरुआत तैमूरलंग के जमाने से शुरू हुई है। तैमूरलंग एक तुर्की बादशाह था, कई देशों को जीतता हुआ विश्व विजय के सपने लेकर हिंदुस्तान में आया था और उसने अपनी सल्तनत यहाँ पे स्थापित की थी। तैमूरलंग एक शिया बादशाह था और वो हर साल इराक में हजरत इमाम हुसैन के जहाँ अपनी अकीदत पेश करने के लिए जाया करता था। एक साल वो जब बीमार हुआ तो लोगों ने बुलाकर वहाँ न जाने का खामियाजा कैसे मैं अदा करूँ वो पूछा, तो कुछ उसके चाटुकारों ने राय दी कि आप इमाम हुसैन का रोजा हिंदुस्तान में ही बना लें और उस अकीदत के साथ में आप उसे उसकी हिजरत कर लें। तो उन्होंने उस साल एक ताजियानुमा एक रोजा बनाया और कुछ चाटुकार लोगों ने देखा देखी जो छोटे छोटे राज्य थे उन्होंने भी यहाँ ताजिया बनाने की शुरुआत की। तो इस तरीके से हिंदुस्तान में ताजिया बनना शुरू हुआ और आज तक वो परंपरा जारी है। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि आज जिस रूप में मुहर्रम दिखाई देता है, वास्तव में वो मुहर्रम का वास्तविक अर्थ नहीं है। मुहर्रम के 10 ही दिनों में लोग इबादत करते हैं और रात को नमाजें पढ़ते हैं। यहाँ मैं आखिरी में ये बताता चलूँ कि जो हजरत इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ शहीद हुए, वो नमाज के बहुत पाबंद थे और रात को 2 बजे जो नमाज होती है वो नमाज अदा किया करते थे और उस नमाज में जब वो सजदा करते थे तो पूरी जमीन आंसुओं से भीग जाया करती थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बजाय लोग ताजियदारी करने के, सवारियां निकालने के, आज नमाज रोजा रखकर मुहर्रम के त्योहार को मनाएं। और इसीलिए किसी शायर ने लिखा है कि इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हुसैन।

0: श्रोताओं, आज यानी 26 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण और अवैध तस्करी विरोधी दिवस यानी विश्व नशा निरोधक दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज को नशीली दवाओं, ड्रग्स और अन्य व्यसन के हानिकारक प्रभावों से बचाना, युवाओं में जागरूकता फैलाना और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के वैश्विक नेटवर्क को तोड़ना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1987 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। 26 जून की तारीख 19वीं सदी में चीन में अफीम व्यापार के खिलाफ की गई ऐतिहासिक कार्यवाही की याद में चुनी गई थी। भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इस अवसर पर पूरे देश में नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान के तहत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम और विशेष सप्ताह आयोजित करता है। इसका दृष्टिकोण केवल नशे को रोकना नहीं, बल्कि नशे से पीड़ित लोगों के पुनर्वास और उनकी मानसिक व सामाजिक रिकवरी पर भी केंद्रित है। नशा मुक्ति के प्रयासों के अंतर्गत इंदौर में, जो कि देश में स्वच्छता के मामले में लगातार नंबर वन बना हुआ है, अब नशा मुक्त इंदौर बनाने के मिशन पर भी बेहद गंभीरता से काम कर रहा है। इंदौर में युवाओं की बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए यहाँ की पुलिस प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं इस दिन और पूरे साल विशेष अभियान चलाती है। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जून के इस सप्ताह में विशेष रूप से अभियान चलाया जाता है। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटरों और झुग्गी बस्तियों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। युवाओं को जोड़ने के लिए इंदौर पुलिस ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से निबंध लेखन, पेंटिंग और स्लोगन मेकिंग जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित करती है। इसके अलावा राजवाड़ा से लेकर पलासिया चौराहा जैसे प्रमुख रूटों पर जागरूकता साइकिल रैली और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन और इसके आसपास इंदौर पुलिस ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स और अन्य प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी वालों के खिलाफ क्लीन स्वीप जैसे सख्त ऑपरेशन चलाती है। इंदौर में कई सरकारी और गैर सरकारी नशा मुक्ति केंद्र और पुनर्वास केंद्र सक्रिय हैं, जो लगातार नशा मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। एक ऐसी ही संस्था की अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता कल्पना शर्मा हमसे जुड़ रही है और इस संदर्भ में हमें विस्तार से जानकारी दे रही हैं।
1: नशे की श्रेणी में वो हर पदार्थ आते हैं जो आपके दिमाग और शरीर के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। जैसे कि मैं जब बच्चों के पास जाती हूँ और मैं बच्चों से पूछती हूँ कि क्या शराब एक ड्रग है, तो कई स्कूलों में जो बच्चे होते कहते हैं नहीं, वो तो शराब तो ड्रिंक में आती है, वो ड्रग नहीं है। जब मैं उन्हें बताती हूँ कि पूरी दुनिया में सेवन करने वाला सबसे ज्यादा ये जो ड्रग होता है वो अल्कोहल ही है, शराब ही है, तो फिर वो समझने लगते हैं कि हाँ ये ड्रग में है। तो टोबैको हुआ या अल्कोहल हुआ और उसके बाद जितनी भी नई चीजें, अब चरस, गांजा, अफीम, जो मैरिजुआना जिसे कहते हैं, क्रिस्टल मैथ जिसे कहते हैं, एमडी ड्रग्स जिसे कहते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स जिसे कहते हैं, यहां तक कि डॉक्टर की लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन जो ड्रग्स होती हैं वो सब ड्रग्स में आती हैं। और अगर आप जानते तो कई जगह लोग जो है, जैसे रीवा में कॉरेक्स का कफ सिरप, उसको नशे के लिए प्रयोग लाते हैं। कई जगह हमने देखा है कि जो वाइटनर होता है, बच्चे उसी को सूंघ सूंघ के नशा कर रहे होते हैं, आयोडेक्स उसको सूंघ के नशा कर रहे होते हैं। मतलब नशे के लिए तो आप नाम लीजिए, नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है और हम जानते भी नहीं कि इसका नाम क्या है। नए नए नाम से वो अवेलेबल रहता है ताकि बच्चों को वो उस कैंडी के रूप में, किसी चीज के रूप में अवेलेबल हो जाए। सबसे बड़ी आजकल मैं यही देख रही हूँ कि बच्चे कूल बनने के चक्कर में या ट्रेंड में है, या हम उस ग्रुप का हिस्सा है जो ग्रुप सबसे अच्छा माना जा रहा है, उस पीयर प्रेशर और फिट इन होना है उसके अंदर, कैसे भी करके जाना है, और जब इसमें हो जाएंगे तो हमको, मतलब हम सबसे रिनाउंड होंगे या हमारे बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट या कम्युनिकेशन चीजें हमारी अच्छी एस्टेब्लिश होगी, कुछ भी चीजें वो समझ लेते हैं, तो वो इन चीजों में आकर एक दूसरे का संग करके ये चीजें उनको उपलब्ध होने लग जाती है। और उन्हें ऐसे बताया जाता है कि अगर तू ये करेगा तो इससे तू कूल लगेगा, या ये तू करेगा तो हमारे ग्रुप का हिस्सा बनेगा, ये करेगा तो तेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा, तुझे ना जैसे कोई किसी को स्टैमरिंग की आदत है, वह हकलाता है तो कहेगा इससे तेरा ठीक हो जाएगा। तरह तरह के रीजन दे करके इन सारी चीजों की तरफ आकर्षित किया जाता है। ज्यादातर इसका इसी तरह से लोगों को लाया जाता है कूल ट्रेंड में चल रहा है, उसको देख इसको देख, वो करता है ये करता है, इस तरीके से वो लोग ये शुरू करते हैं। लेकिन ड्रग एक ऐसी चीज है कि अगर आपने एक बार शुरू कर ली तो आप इसके चंगुल से निकल नहीं सकते, क्योंकि ये जा करके आपके फैट टिश्यूज में एब्जॉर्ब हो जाती है और 30-30 साल तक ये वहां पर बनी रह सकती है। इसीलिए कहते हैं ना कि एक बार जो इसमें गिरा तो वो दलदल है, इसे निकलना मुश्किल होता है। सबसे पहला ऑर्गन जो हमारा लीवर और किडनी है वो अफेक्ट होने लगता है, सभी को इसके बारे में पता है, क्योंकि अगर हम कुछ बासी खाना भी खाते हैं, कुछ पॉइजनस फूड भी खाते हैं, तो लीवर ही सबसे पहले इफेक्ट होता है, क्योंकि वो टॉक्सिक जो भी वेस्ट होता है वो फिल्टर आउट करता है, और इसी तरह किडनी भी प्रभावित होती है। तो उससे एक बासी खाने से हजार गुना ज्यादा विषैले तत्व जो होते हैं वो ड्रग में होते हैं, और जो आजकल ये MD और सिंथेटिक ड्रग्स

मार्केट में फैली है, इसका तो कितना विषैलापन है ये हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि किसी भी एथिक लेवल के उसमें इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं होती है। तो जो आपका जो लीवर होता है वो काम कर करके, एक्स्ट्रा काम कर करके वो शिथिल पड़ जाता है और एब्रप्ट हो जाता है, और उसकी फंक्शनिंग पूरी तरह से खराब हो जाती है। फिर वो आपके हार्ट पर असर करता है, पहले तो पल्पिटेशन बहुत तेज कर देता है उसकी, और उसकी जो प्रक्रिया है वो अलग हो जाती है। दूसरा प्रभाव आपके ब्रेन पर पड़ता है कि जैसे आपके ब्रेन में हर चीज एक छवि के रूप में अंकित होती है, जैसे आप जब से आप पैदा हुए तब से लेकर आज तक आपकी सारी जो भी यादें हैं वो एक पिक्चर के रूप में स्टोर होती हैं, तो ये उनको उन तस्वीरों को धुंधला करने लग जाता है। अब जब व्यक्ति से कुछ पूछा जाता है कोई सवाल, तो वो बहुत जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाता है, क्योंकि वो सोच नहीं पाता है। सवाल सुनना और फिर जवाब देना, उसकी प्रक्रिया में अंतर हो जाता है। कभी कभी सारे जो चित्र हैं वो पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो जाते हैं, और बहुत सारी चीजें उसके बहुत सारे साल याददाश्त से उड़ जाते हैं। तो इस तरह से वो मस्तिष्क पे प्रभाव डालते हैं। और पारिवारिक और सामाजिक तो मैंने इतने बुरे बुरे हाल देखे कि परिवार में मतलब अच्छा खासा वेल टू डू परिवार था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, टूट गया, क्योंकि बच्चे ने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ बेच डाला मतलब अपने नशे के लिए। फिर वो मारने लगा अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को, तो वो उस तरह से पूरा परिवार बिखरते देखा है। और सामाजिक स्तर पर तो ये बहुत ही बड़ा चिंतन का विषय है, क्योंकि हमारे समाज को खोखला कर रहा है दीमक की तरह। ये इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि जो युवा है जो इसमें फंस गया है, उसे हमेशा शिक्षा के माध्यम से हम जागरूक करते हैं कि नशा लेना क्यों खराब है आपके लिए, नशा क्या करता है। नशे के लिए सब लोग आकर के बताते हैं से नो टू ड्रग्स, लेकिन कोई ये नहीं बताता वाई। बच्चे इतने समझदार होते हैं कि अगर वो गलत चीजें बहुत जल्दी समझ सकते हैं, तो वो सही चीजें भी बहुत जल्दी समझ सकते हैं। तो बच्चों के सामने सही जो सत्य है, जो ट्रू फैक्ट्स हैं ड्रग्स के, जिसे इसीलिए हम अपने जो कैंपेन है, अपने अभियान का नाम हमारा ट्रूथ अबाउट ड्रग्स कैंपेन है, कि हम नशे के बारे में सच्चाई बताते हैं। तो बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने हम सच्चाई रखते हैं एक एक ड्रग की, कि वो शरीर के किस किस हिस्से को, किस किस ऑर्गन को कैसे कैसे अफेक्ट डालता है, और आपका क्या क्या दुष्प्रभाव होता है, और उसके बाद लाइफ में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और जिसने नशा किया है उनकी सच्ची घटनाएं, उनके सच्चे वक्तव्य उनके सामने हम रखते हैं। तो और हमारा वीडियो होता है, तो बच्चे उससे इतना ज्यादा प्रभावित होते हैं। न जाने अभी तक मतलब मैं 6-7 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ काम कर चुकी हूं, और उन सबके हस्तलिखित टेस्टिमोनियल मेरे पास हैं। तो सभी ने ये बोला कि मैडम आपने मेरी आंखें खोल दी, हमने भी सोचा था कि ये जब हम 18 इयर्स के होंगे या बर्थडे आ रहा है हम ट्राई कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स लोग बोलते हैं, लेकिन अब हमें पता चला कि वो एक बार ट्राई करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये लत लगने जैसी बात है। और मैं बच्चों को ये भी बताती हूँ कि लत ऐसी चीज है जो दो तरह की होती है, एक शारीरिक एक मानसिक। शारीरिक लत आप रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाकर के, जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं वहां जाकर के छुड़ाना तो भी प्रोसेस की जाती है, लेकिन मानसिक लत के लिए बहुत तगड़ी विल पावर की जरूरत होती है, बहुत बड़ी मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए हम जो बच्चों की जो स्टेज है जिसमें बच्चों को ये सारे समस्याएं आती है, जैसे पीयर प्रेशर हो गया, या कोई भी समस्याएं हो गई, पढ़ाई की समस्या, स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करने की समस्या, पारिवारिक समस्या, जो भी है, और पढ़ाई भी साथ साथ में चल रही है और बाहर का वातावरण भी उनको प्रभावित कर रहा है, हम उसी दौरान बच्चों में शिक्षा के जरिए अपना ये अभियान चलाकर उनको जागरूकता प्रदान कर रहे हैं कि आप देखिए निर्णय लेना आपका काम है, हमने ये काम किया है कि आप जागरूक बने, ये है सत्य, ऐसा ऐसा हो सकता है, निर्णय आप अपने विवेक से स्वयं लीजिए। जो ये नशे का जो दुष्चक्र है, इसके लिए सामाजिक तौर पे तो हम सभी को जागरूकता के लिए, हर एक इंसान का कर्तव्य ये बनता है कि वो इस नशे के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए अपना कर्तव्य निभाए, क्योंकि बच्चे हम सबके हैं, समाज हम सबका है, राष्ट्र हम सबका है, किसी सरकार की, किसी संस्था की, किसी की भी ऐसी जिम्मेदारी नहीं बनता है, ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। और पारिवारिक स्तर पर तो मैं कहती हूँ कि और बड़ी जिम्मेदारी है, घर में ऐसा माहौल होना चाहिए कि बच्चे को कभी भी दबाव ना महसूस हो, और बच्चे को ऐसी परवरिश दी जानी चाहिए जहां ये बताया जाए कि ये जो सारी चीजें होती है ये इसके प्रति क्या क्या जो सच्चाई है वो पहले से ही अवगत करा दी जाए। और अगर माँ बाप कुछ ऐसा
खुद ही इन चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो वो रोके अपने आप को क्योंकि उनका भविष्य खतरे में है।

0: इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा।
1: अभी आप सुन रहे थे इंदौर परिक्रमा, प्रस्तुति मुकाम सिंह चौहान की। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सदाबहार फिल्म गीतों का प्रोग्राम सुनहरे पल।

सुनहरे पल के सभी श्रोताओं को माजिदा खान का नमस्कार। श्रोताओं, आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर हिजरी का सबसे पवित्र और पहला महीना कहलाता है। इसे अल्लाह का महीना भी कहा जाता है। यह हमें हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के महान बलिदान की याद दिलाता है। ये महीना शांति, संयम और इबादत के साथ साथ पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की इराक के कर्बला में हुई शहादत की याद दिलाता है और साथ ही हमें सत्य और न्याय के लिए कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने की प्रेरणा देता है।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से।

0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
1: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी आज का दिन, जिसे योम आशूरा भी कहा जाता है, सन 61 हिजरी में कर्बला का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। आशूरा के दिन इमाम हुसैन ने सच्चाई और दीन हक के लिए अपनी जान कर्बला के मैदान में न्यौछावर कर दी। उनकी लड़ाई यजीद से थी, लेकिन ये विचारधारा की लड़ाई थी। इमाम हुसैन खिलाफत को आवाम की राय से कायम करना चाहते थे, जबकि यजीद इसे ताकत के जोर पर कायम करना चाहता था। इसी क्रम में सफ़र करते हुए इमाम हुसैन मदीना से कूफा, जो वर्तमान में इराक में है, पहुँचे और लोगों को इस्लाम के सही मायने बताने लगे। इसी से नाराज़ होकर यजीद ने उनके ख़ानदान के 72 लोगों को कर्बला की तपती हुई रेत में बंदी बना लिया और उनके अहल अयाल पर दसला नदी का पानी भी देने पर बंदिश लगा दी, जिससे कई बच्चों ने पानी के लिए तड़प तड़प तक जान दे दी और 10वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन लड़ते हुए शहीद हो गए। इमाम हुसैन ने सत्य और न्याय के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। उनके सिर को यजीदियों ने अपने नेजे पर चढ़ाकर जश्न मनाया, जबकि हकीकत में इमाम हुसैन की जीत हुई थी। ये सच्चाई की जीत थी।

शाम आते ही सब्र, हिम्मत और कुर्बानी की तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। ये वो घटना है जिसने पूरी मानवता को ये संदेश दिया कि अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। श्रोता, मुहर्रम हमें भाईचारे और मानवता का संदेश देता है। कर्बला की घटना किसी एक समुदाय की नहीं बल्कि पूरी मानवता की धरोहर है। जब भी इतिहास में त्याग और बलिदान की बात होगी, कर्बला का नाम हमेशा याद किया जाएगा।

श्रोताओं, समय बदलता है, पीढ़ियां बदलती हैं, लेकिन कुछ संदेश कभी पुराने नहीं होते। करबला की याद भी ऐसा ही एक संदेश है जो हर दौर में लोगों को अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला ने लोगों को त्याग, मानवता और इंसानियत का पाठ पढ़ाया। अब सुनहरे पल से अनुमति दीजिए माजिदा खान को।

0: बल।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राष्ट्रीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थीं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे

0: वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
3: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रूपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रूपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रूपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
4: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

0: वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
1: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिन्दुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना 1,000 रूपये महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्य ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices.

0: बेटियां, और एक छंद प्रस्तुत
1: हाँ, स्वागत
0: कि बेटियां घर का उजाला लगती सुंदर फूल माला, ठंडी ठंडी छाया वाली बागों की हरियाली है।
1: बहुत अच्छे
0: तू बेटियां घर का उजाला लगती सुंदर फूल माला, ठंडी ठंडी छाया वाली बागों की हरियाली है। धरती माँ की धानी चूनर कि धरती माँ की धानी चूनर, कल कल बहते झरनों का स्वर, मीठी तान सुनाने वाली कोयल भोली भाली है। कि नदियां हैं मथुरा गोकुल की, नदियां हैं मथुरा गोकुल की, नाव चलाती अपने कुल की, ये नहीं तो सारी दुनिया लगती खाली खाली है। बेटियां घर का उजाला लगती सुंदर फूल माला, ठंडी ठंडी छाया वाली बागों की हरियाली है। कि निवेदन मेरा स्वीकारो, कि निवेदन मेरा स्वीकारो, भूण में इन्हें ना मारो, यही तो है।

0: बागों की हरियाली है, ठंडी ठंडी छाया वाली।
1: वाह भाई भाटी जी,
2: और एक देशभक्ति पर गीत सुना रहा हूँ,
1: सुनाइए।

0: न्यारा देश महान है, इस धरती पर जन्मे है हम सदा यही अभिमान है। और अगला छंद प्रस्तुत
1: करो। स्वागत।
0: कि वीर प्रसूता रही यहाँ, कि वीर प्रसूता रही सदा ही इसके आंगन की माटी, शोर झलकता जिसके भुज से गौरवमय हल्दी घाटी। तो सोना

0: ही अभिमान है।
1: बहुत अच्छा।
0: और अंत में अंतिम छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ,
1: बिल्कुल सुनाइए।
0: कि राम कृष्ण के आदर्शों की इस माटी में गंध है, सीता जी सा पूज्य हमारा धरती से संबंध है। तो राम कृष्ण के आदर्शों की इस माटी में गंध है, सीता जी सा पूज्य हमारा धरती से संबंध है। तो माँ बनकर यह प्यार लुटाती हम पर एक समान है, इस धरती

0: और एक दो छोटी छोटी घटना बिल्कुल कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ मैं।
1: हाँ जी,
0: लौट चले, चलो लौट चले हम अपने गांव,
1: चलो लौट चले हम अपने गांव,
0: उस अपने गांव में जहाँ हवा में धुआं नहीं होता है, उस अपने गांव में जहाँ हवा में धुआं नहीं होता है, पानी गर्म ताजा कुनकुना होता है, पानी ताजा गर्म कुनकुना होता है, जमीन जमीन मत मृत देह सी नहीं बल्कि माँ सरीखी होती है, जमीन मृत देह सी नहीं बल्कि माँ सरीखी होती है, आसमान में दूर दूर तक फैला, आसमान दूर दूर तक फैला, धरती तक झुका दिखता है। चलो लौट चले हरे भरे खेतों और जीवंत वनों में, चलो लौट चले हरे भरे खेतों और जीवंत वनों में, स्वच्छंद विचरते पशु पक्षियों के बीच, चलो लौट चले अपने गांव में स्वाभाविक ढंग से जीवन जीने के लिए, स्वाभाविक ढंग से जीवन जीने के लिए। एक और उपेक्षा शीर्षक से सुना रहा हूं। मेरे और तुम्हारे बीच के रिश्ते सड़क और पुल के रिश्ते हैं, मेरे और तुम्हारे बीच के रिश्ते सड़क और पुल के रिश्ते हैं, मैं पुल हूँ दबा सकुचाया सा किसी अपड़ गरीब आदमी सा,
1: मैं पुल हूँ
0: दबा सकुचाया सा किसी अपड़ गरीब आदमी सा, और तुम हो एक चिकनी सपाट सड़क, और तुम हो एक चिकनी सपाट सड़क जो पुल से सटकर निकल जरूर जाती है मगर रुकती नहीं है, जो पुल से सटकर निकल जरूर जाती है मगर रुकती नहीं है, न कभी देखती है एक नजर, कभी तुमने सोचा है कि मेरे बगैर तुम रह जाओगी टूट कर, कभी तुमने सोचा है कि मेरे बगैर तुम रह जाओगी टूट कर, कुबड़ा हो जाएगा तुम्हारा जिस्म, मैं तुम्हें एक रास्ता एक धरातल देता हूं, क्या तुम मुझे कुछ नहीं दे सकती एक उपेक्षा के सिवा।
1: बहुत अच्छा,
0: और दो तीन छंद प्रस्तुत कर रहा हूं।
1: बिल्कुल सुनाइए सर भाटी जी।
0: मुक्तक सुना रहा हूं सर।
2: हर मनुज कार धै राष्ट्र से जोड़िए, हर मनुज

0: कुछ कहे पीछे कुछ कहते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे श्री गेंदालाल भाटी को, और उनकी इतनी अच्छी रचनाओं के बाद अब हम अनुरोध करते हैं थांदला से पधारी सुश्री सीमा सहाजी से कि वे अपनी कविताओं का, गीतों का पाठ करें।
2: धन्यवाद चौरसिया जी। पहली रचना माँ पर पढ़ना चाहूंगी।
1: स्वागत आपका।
2: माँ शब्द जिसमें पूरा संसार समाया हुआ है, उसी पर मेरी प्रथम रचना प्रस्तुत है। माँ आंगन में अनाज पछोड़ती है, कपड़े अगोड़ती है, चरखा काटती है रात और दिन।
1: माँ
2: माँ आंगन में अनाज पछोड़ती है, कपड़े अगोड़ती है, चरखा काटती है रात और दिन के कुछ पल छिन।
1: वाह।
2: माँ दहलीज को तकिया बनाकर जब सोती है, माँ दहलीज को जब तकिया बनाकर सोती है तो हवाओं का काफिला उसके आसपास से गुजरता है।
1: बहुत अच्छा।
2: हवाओं का काफिला उसके आसपास से

0: अनजाने तराने, कभी लोरियों की रुनझुन तो कभी मरसिया की धुन, कभी लोरियों की रुनझुन तो कभी मरसिया की धुन, सुख दुख की पगडंडियों पर लहू लुहान मन, सुख दुख की पगडंडियों पर लहू लुहान मन, फिर भी हस्ती है, फिर भी हस्ती है, झरते हैं मौलश्री के फूल, झरते हैं मौलश्री के फूल, सच को कितना झेल जाती है,
1: क्या बात,
0: सच को कितना झेल जाती है, कुछ पलछिन माँ पूजा है, माँ पूजा है, घर के कोने कोने में अग्रु सुगंध सी महमहाती है, माँ पूजा है, घर के कोने कोने में अग्रु सुगंध सी महमहाती है, उसके अणु अणु में बोलती गीता की ऋचाएं, उसके अणु अणु में बोलती गीता की ऋचाएं, सबत साखी बानी की सुकमलिनी भावनाएं, सबत साखी बानी की सुकमलिनी भावनाएं, कब कैसे हमारी जन्मदात्री हमारे जीवन का संबल और आधार बन जाती है, कब कैसे हमारी जन्मदात्री हमारे जीवन का संबल और आधार बन जाती है, कुछ पलछिन।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: दूसरी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी, तितली रूपी मन क्या कहना चाहता है, यही अभिव्यक्त किया है मैंने इस कविता में।
1: जी
0: भाटी जी, आपका भी ध्यान चाहूंगी।
1: स्वागत आपका।
0: कविता का शीर्षक है टिक जाने दो पंखों को। मुझे मिले अद्भुत उपहार, मुझे मिले अद्भुत उपहार, प्रकृति से, वंश से, परंपरा से, उड़ने वाला मन, शरीर और भावनाएं पक्षी की तरह।
1: मुझे मिले अद्भुत उपहार,
0: प्रकृति से, वंश से, परंपरा से, उड़ने वाला मन, शरीर, भावनाएं पक्षी की तरह, पर पंखों को भी विश्राम चाहिए, पंखों को भी विश्राम चाहिए और मन को विश्रांति, भावनाओं को विराम, उड़ते पंखों ने करवाया यह अद्भुत एहसास। उम्र नहीं होती केवल एक तयशुदा दिशा, यात्रा नहीं होती केवल एक मार्ग पर, जीवन केवल एक लक्ष्य ही नहीं होता, अविरल बहना केवल पानी नहीं होता,
1: अविरल बहना केवल पानी नहीं होता।
0: उम्र नहीं होती केवल एक तयशुदा दिशा, यात्रा नहीं होती केवल एक मार्ग पर, जीवन केवल एक लक्ष्य ही नहीं होता, अविरल बहना केवल पानी नहीं होता, जीवित पंखों को लगती है थकान, जीवित पंखों को लगती है थकान, भावुक मन को चाहिए ठहराव, बहता पानी बनना चाहता है सागर भी कभी, बहता पानी बनना चाहता है सागर भी कभी, मैं तितली ही सही टिक जाने दो मुझे, मैं तितली ही सही टिक जाने दो मुझे, किरण भी सो जाए तिमिर की बाहों में, पंखों से हटकर मुझको भी अपने भीतर खो जाने दो, पंखों से हटकर मुझको भी अपने भीतर खो जाने दो, एक लम्हा अपनी खातिर जी लूं, कुछ ऐसा अब हो जाने दो।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सीमा।
0: एक लम्हा अपनी खातिर जी लूं, कुछ ऐसा अब हो जाने दो, अक्षत मन क्षत विक्षत होकर बिखर गया कण कण में, अक्षत मन क्षत विक्षत होकर बिखर गया कण कण में, करने दो अपने तार एकत्रित, जिससे हो झनकार अनियंत्रित, सुप्त शांत हलचल से हीन, अपने में अब तक जो है लीन, आज कुलांचे भरते हैं मेरे उर्मे गीत नए, अंतर के अकुलाते भाव होते हैं प्रतीत नए, आज कुलांचे भरते हैं मेरे उर्मे
1: भरते हैं
0: मेरे उर्मे गीत नए, अंतर के अकुलाते भाव होते हैं प्रतीत नए, फिर से उड़ सकूं, बह सकूं, कर सकूं नवीन गीतों का सृजन, दे दो थोड़ा सा विश्राम मुझे, टिक जाने दो मेरे पंखों को, टिक जाने दो मेरे पंखों को। अगली कविता का शीर्षक है वक्त वक्त की बात है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, वक्त भी कई चीजों के अर्थ बदल देता है, जरूरी है कि हम उस दूसरे पहलू को भी देखें। तुमने कहा मत गुजरो उस रास्ते से,
1: तुमने कहा
0: मत गुजरो उस रास्ते से, नागफनी का जंगल है, लहूलुहान कर देंगे तुम्हारे पाँव को, संकल्प को, पर मैं गुजर गया नागफनी के समीप, उस पर फूल जो खिले थे, सबने रोका मत जाओ उस बस्ती में, सबने रोका मत जाओ उस बस्ती में, लुटेरे कातिल बसते हैं वहां, लूट लेंगे तुम्हारी पोटली को, लूट लेंगे तुम्हारी पोटली को, अजबाब को, पर मैं गुजर गया। बस्ती में बच्चे खिलखिला रहे थे वहां पे,
1: बस्ती में
0: बच्चे खिलखिला रहे थे वहां, मित्रों ने रोका मत पड़ो प्यार के चक्कर में, मित्रों ने रोका मत पड़ो प्यार के चक्कर में, हो जाओगे बदनाम, पर मिल ही गया मुझे वह प्यार, पर मिल ही गया मुझे वह प्यार, भटक रहा था जिसके लिए मन कई धाम,

0: भटक रहा था जिसके लिए मन कई धाम। सांसों को रोक कर कर लो प्राणायाम, किसी ने कहा सांसों को रोक कर कर लो प्राणायाम, तन मन होगा स्वस्थ। रोक ली मैंने सांसें, तब आत्महत्या करार दिया मेरी मौत को।
1: तब आत्महत्या
0: करार दिया मेरी मौत को। वक्त वक्त की बात है, बदल जाते हैं अर्थ। वक्त ही दोष है, दोस्त है और है अर्थ। वक्त ही दोष है, दोस्त है और है अर्थ। समुद्र सड़क तो नहीं है पर दौड़ जाते हैं स्टीमर जहाज।
1: ठीक बात।
0: समुद्र सड़क तो नहीं है पर दौड़ जाते हैं स्टीमर जहाज। हवाओं की दिशा तो नहीं होती पर कौतुब हवाओं को दिखा देता है दिशा। लोहे का तिनका समय तो नहीं होता पर घड़ी बनकर दिखा देता है समय।
1: ठीक बात है।
0: लोहे का तिनका समय तो नहीं होता पर घड़ी बनकर दिखा देता है समय। उलाहना उपदेश अनुभव नहीं बन सकते, उलाहना उपदेश अनुभव नहीं बन सकते। छूने दो मन को तन को समय की बयार, छूने दो मन को तन को समय की बयार, ताकि नया अनुभव गढ़ सके नए प्रतिमान, ताकि नया अनुभव गढ़ सके नए प्रतिमान।
1: बहुत अच्छे।
0: अगली रचना का शीर्षक है झाबुआ की महिलाएं।
1: ठीक बात है, स्वागत।
0: चूंकि मैं झाबुआ जिले से हूँ, झाबुआ की महिलाएं कितने परिश्रम और कठिनाइयों से अपना सुर साधती हैं।
1: इसी झाबुआ की महिलाएं,
0: झाबुआ की महिलाएं। मौसम दर मौसम सूरज के निकलते ही, मौसम दर मौसम सूरज के निकलते ही, अल सुबह रोटियां और चटनी निगल कर चली जाती हो खेतों की ओर। रोटियां और चटनी निगल कर चली जाती हो खेतों की ओर। दिन भर जूझती हो बूढ़े बेलों भोतरे नागर के कंसुइयों से, दिन भर जूझती हो बूढ़े बेलों भोतरे नागर के कंसुइयों से, खंगालती हो धरती की माटी का सीना।
1: खंगालती हो धरती की माटी का सीना,
0: खंगालती हो धरती की माटी का सीना, कठोर खुरदरे हाथों की कर्मठ उंगलियों से। पाटती रहती हो दरारों को, कठोर खुरदरे हाथों की कर्मठ उंगलियों से, पाटती रहती हो दरारों को, चुभती है चाहे तीखी सुइयां, चुभती हो चाहे तीखी सुइयां, थकते हुए भी नहीं थकती, थकते हुए भी नहीं थकती, आंखों में चमकती काली गुइयां। समय को धक्याते हुए कुछ बोलते बतियाते हुए भी अनकहा छोड़ देती हो। उजली सफेद झक दंत पंक्तियों में,
1: उजली सफेद झक
0: दंत पंक्तियों में मुस्कुराती ईश्वरीय हंसी, मुस्कुराती ईश्वरीय हंसी, मजबूत इरादों से बनी ठनी रहती हो, मजबूत इरादों से बनी ठनी रहती हो, हरदम हर ठोर दाने के एक एक अंकुए को देख सीना तान। सांसों के उमंगित आरोह अवरोह की लय ताल से आबद्ध, होठों की कोर से लोकगीत की टेर छेड़ देती हो।
1: बहुत अच्छे।
0: होठों की कोर से लोकगीत की टेर छेड़ देती हो। मौसम दर मौसम फसल पकने का सुनहला सपना बुनती हो,
1: फसल पकने का
0: सुनहला सपना बुनती हो। महक जाता है वन प्रांतर का हर छोर, महक जाता है वन प्रांतर का हर शोर। तुम्हारे पैरों की फटी बिवाइयां, तुम्हारे पैरों की फटी बिवाइयां और पगथलियों के चमकते छालों से टप टप लाल बूंदों का टपक जाना।
1: बहुत अच्छे।
0: टप टप लाल बूंदों का टपक जाना, तुम श्रम सन्नारियों की यही है कठिनतम रुबाइयां, तुम श्रम सन्नारियों की यही है कठिनतम रुबाइयां। आदिम जनजाति की महिला जनक्रांति का बजता रहता शंखनाद है, इसीलिए तो जंगल जंगल टपरियां टपरियां खिलखिलाहट से आबाद है।
1: बहुत अच्छे।
0: इसीलिए तो जंगल जंगल टपरियां टपरियां खिलखिलाहट से आबाद है।
1: बहुत अच्छे गीत।
0: अगली कविता सुनाना चाहूंगी, गांव।
1: स्वागत।
0: गांव का परिवेश कुछ बदला बदला सा नजर आता है ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में। गांव गांव नहीं रहे, कुछ और ही हो गए हैं।
1: सुनाइए।
0: गांव बच्चों की तरह बड़े हो रहे हैं, गांव बच्चों की तरह बड़े हो रहे हैं। गली मोहल्ला कॉलोनियां शोर शोर हो रहे हैं, गली मोहल्ला कॉलोनियां शोर शोर हो रहे हैं। दुख हो या सुख, दुख हो या सुख, जश्न दर जश्न उत्सव कुछ और हो रहे हैं।
1: ठीक बात है।
0: उत्सव कुछ और हो रहे हैं। हर रिश्ते दब दब दमकते नहीं,
1: हर रिश्ते दब दब दमकते,
0: दमकते नहीं। उदास अनमने गुप चुप अश्रु विभोर हो रहे हैं। उम्र दराज की तरह आंखों से अनदेखा कर

0: यूं ही समय काटने में बोर हो रहे हैं। उम्र दराज की तरह आंखों से अनदेखा कर बस यूं ही समय काटने में बोर हो रहे हैं। गांव तुम क्यों नहीं लगते पिता से, गांव तुम क्यों नहीं लगते पिता से, जिनके आत्मविश्वास के पहाड़ पर सूर्य किरणों से चमकते हीर कनियों के पहरे थे। गांव तुम क्यों नहीं लगते माँ से, जिनकी ब्रह्मांड सी गोद गुनगुन लोरियों के सुन सुन वे पल अतल गहराइयों में छुपे मोती शंख सीपियों अनगिन लड़ियों में पिरोए सहरे थे। गांव तुम क्यों नहीं लगते पूर्वजों से, जिन्होंने परंपराओं को पीढ़ियों से संवारा। गांव तुम क्यों नहीं लगते पूर्वजों से, जिन्होंने परंपराओं को पीढ़ियों से संवारा। संस्कारों की माटी तपा बनाया कुंदन, संस्कारों की माटी तपा बनाया कुंदन, नदियों की पूजा की तालाब कुएं बनाए, पंछियों के बसेरे और हरियाले आंगन बनाए, पंछियों के बसेरे और हरियाले आंगन बनाए। मानवता की सुरभि सुवास हर सांस में बिखेरे थे, मानवता की सुरभि सुवास हर सांस में बिखेरे थे। गांव तुम भूल गए हो अपने ही उत्स को, गांव तुम भूल गए हो अपने ही उत्स को, अपने ही बैरी बन मौन मत बनो। गांव अपने ही बैरी बन मौन मत बनो, तुम सिरमौर नहीं सिर फिरे हो गए हो, तुम सिरमौर नहीं सिर फिरे हो गए हो, या मैं कहूँ तुम्हें शहर की हवा लग गई है,
1: या मैं कहूँ
0: तुम्हें शहर की हवा लग गई है।
1: अभी हम सुन रहे थे थांदला से पधारी कवियत्री सुश्री सीमा शाहजी से, और अब मैं शिव चौरसिया अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ।
2: स्वागत है।
1: मैं ऐसा मानता हूँ मित्रों कि इस जीवन में परिश्रम ही सब कुछ है, अगर परिश्रम करेंगे हमारा जीवन सफल होगा। इसी संदर्भ में एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, शीर्षक है जीवन रथ बढ़ता जाता। घर बना लेती जब मेहनत, घर बना लेती जब मेहनत मनुज भुजा की नगरी में, घर बना लेती जब मेहनत मनुज भुजा की नगरी में, छलक छलक कर सुख उभराता फिर जीवन की गगरी में। घर बना लेती जब मेहनत, घर बना लेती जब मेहनत मनुज भुजा की नगरी में, छलक छलक कर सुख उभराता फिर जीवन की गगरी में। कर्म योग के बल पर मानव, कर्म योग के बल पर मानव नए पंथ गढ़ता जाता, कर्म योग के बल पर मानव नए पंथ गढ़ता जाता, सुख के सच्चे राजमार्ग पर जीवन रथ बढ़ता जाता। कर्म योग के बल पर मानव, कर्म योग के बल पर मानव नए पंथ गढ़ता जाता, सुख के सच्चे राजमार्ग पर जीवन रथ बढ़ता जाता। यही बात तो गूंज रही है, यही बात तो गूंज रही है सरगम की स्वर लहरी में, यही बात तो गूंज रही है सरगम की स्वर लहरी में, छलक छलक कर सुख उभराता फिर जीवन की गगरी में। सत्य यही है श्रम आराधक, सत्य यही है श्रम आराधक सदा सफलता पाता है, सत्य यही है श्रम आराधक सदा सफलता पाता है, कदम बढ़ाकर चलते चलते सूरज सिर पर आता है। सत्य यही है श्रम आराधक सदा सफलता पाता है, कदम बढ़ाकर चलते चलते सूरज सिर पर आता है। तीखी किरणें यही सिखाती, तीखी किरणें यही सिखाती सबको भरी दोपहरी में, तीखी किरणें यही सिखाती सबको भरी दोपहरी में, छलक छलक कर सुख उभराता फिर जीवन की गगरी में। अंतिम छंद है छोटी छोटी जल की बूंदे, छोटी छोटी जल की बूंदे सागर को भर देती है, छोटी छोटी जल की बूंदे सागर को भर देती है। सहज श्रम की एक इकाई काम बड़े भी कर लेती हैं, छोटी छोटी जल की बूंदे सागर को भर देती हैं, सहज श्रम की एक इकाई काम बड़े कर लेती हैं। बात यही परखी रघुवर ने छोटी एक गिलहरी में, बात यही परखी रघुवर ने छोटी एक गिलहरी में, छलक छलक कर सुख उभराता फिर जीवन की गगरी में। घर बना लेती जब मेहनत, घर बना लेती जब मेहनत मनुज भुजा की नगरी में, छलक छलक कर सुख उभराता फिर जीवन की गगरी में। और एक रचना और शीर्षक है बंधन।
0: स्वागत है।
1: बंधन का सब विरोध करते हैं पर मैं ऐसा मानता हूं कि बंधन ही आवश्यक है, इसके बिना संसार

0: चल नहीं सकता।
1: बिल्कुल सही।
0: प्रस्तुत है बंधन कि बंधन बंधन, हां बंधन, इधर भी बंधन उधर भी बंधन, जिधर देखता हूं मैं तो बस मुझे दिखाई देते बंधन। बंधन हां बंधन, इधर भी बंधन उधर भी बंधन, जिधर देखता हूं मैं तो बस मुझे दिखाई देते बंधन। यहां वहां और सभी जगह से आती है आवाज यही, बंधन तोड़ो बंधन तोड़ो। यहां वहां और सभी जगह से आती है आवाज यही, बंधन तोड़ो बंधन तोड़ो। पर मैं कहता हूं मत तोड़ो, तुम मत तोड़ो कि बंधन ही, बंधन ही सब टूट गए तो और बचेगा बाकी क्या।
1: बंधन ही सब गए तो
0: और बचेगा बाकी क्या। इस बंधन में ही, इस श्यामल से आकाश में साथी, ये धरा अरुण और चांद सितारे, कोटि कोटि ग्रह नक्षत्र सारे, जाने किस बंधन में ही बंधे बंधाए घूम रहे हैं। इस श्यामल से आकाश में साथी, ये धरा गगन और चांद सितारे, कोटि कोटि ग्रह नक्षत्र सारे, जाने किस आकर्षण की डोरी में ही बंधे बंधाए घूम रहे हैं। जैसे जैसे कोई विराट पुरुष की माला के मोती चमक चमक कर झूम रहे हैं। कि पांच तत्व का पुतला मानो, पांच तत्व का पुतला मानो, इसमें भी प्राणों का पंछी रहता है जब तक ही बंदी, तभी तलक जीवन रहता है। पांच तत्व का पुतला मानो, इसमें भी प्राणों का पंछी रहता है जब तक ही बंदी, तभी तलक जीवन रहता है। सभी सरिताओं का पानी रहता है तब तक सुखकारी, जब तक कि वह बंधे बंधाए कुल कगारों में बहता है, कि वह बंधे बंधाए
1: बहुत
0: है। मेरी इस कविता के बाद आप सबको नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कवि गोष्ठी। प्रतिभा के कवि थे गेंदालाल बाटी, सीमा शाह और शिव चौरसिया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
3: इस समय आप हैं हमारे साथ।
4: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर से आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। आज कलाकार हैं राजुल सिंधी।

आप सुनाए थे राजुल सिंघी को, इनसे आपने सुने मालवी लोकगीत। लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आपको बता दें आज सुबह 11:32 से 12 बजे तक FM 106.6 MHz पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम के विशेषज्ञ होंगे DSP नरेंद्र सिंह रघुवंशी, स्टेट साइबर सेल इंदौर। श्रोता साइबर अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सीधे प्राप्त कर सकेंगे। हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 2710223 और 2710224। इंदौर का ICT कोड है 0731। तो आप फोन करके अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सुबह 11:32 से 12 बजे तक विविध भारती 101.6 MHz पर और मोबाइल ऐप News on AIR पर। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। आज कलाकार हैं सोनू निगम।

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच कहा। इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
0: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
2: इस समय आप हैं हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज कलाकार थे सोनू निगम। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत आज हम आपको सुना रहे हैं पंडित शिव कुमार शर्मा को राग है भोपाल तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे हैं सफ़ाकत अहमद खान।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन, राग था भोपाल तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे थे सफाकत अहमद खान। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। श्रोताओं आपको बता दें 10:05 से आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन, जिसमें बात करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो हमें कॉल करिए और सुनिए अपने पसंद के फिल्मी गीत, साथ ही हमसे बातें करिए लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन में। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिसे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: आलेख है अमित द्विवेदी का, वाचन स्वर है शरद बाघेला के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख अमित द्विवेदी, वाचन स्वर शरद बाघेला। बीता हुआ महीना सिंगरौली जिले से विकास कार्यों, प्रशासनिक सतर्कता, खेल जगत की उपलब्धियों और सामुदायिक कल्याण की दृष्टि से मिलाजुला रहा। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सिंगरौली प्रवास के दौरान जिले के लिए विकास का बड़ा पिटारा खोला गया। मुख्यमंत्री ने यहां कुल 552 करोड़ रूपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जो जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की 24 लाख महिलाओं के खातों में 3 महीनों की कुल 115 करोड़ रुपए की अनुदान राशि ट्रांसफर की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत भी 33.71 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 202.28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजी गई। इस प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय छात्राओं से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधा संवाद भी किया। जिले में खेल संस्कृति को नई दिशा देने के लिए एक अत्याधुनिक खेल परिसर की स्थापना की जा रही है, जो युवाओं को बेहतर सुविधाएं देकर उनकी प्रतिभा को निखारने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही जिले की सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करने वाला सिंगरौली महोत्सव और नगर गौरव दिवस 23 मई से 25 मई तक आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ जिले की प्रभारी मंत्री संपत्तिया उइके और राज्य मंत्री राधा सिंह भी मौजूद रहीं। आगामी मौसम को देखते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर गौरव बैनल की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक शियाज के एम की

0: उपस्थिति में आपदा प्रबंधन कार्य योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी एसडीएम को बाढ़ प्रभावित गांवों और संवेदनशील नदी नालों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि यदि नदी नालों के बहाव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण है तो सर्वे कर उसे तत्काल मुक्त कराया जाए। साथ ही बाणसागर बांध और सोन नदी में जल स्तर बढ़ने से प्रभावित होने वाले संभावित गाँवों का निरंतर भौतिक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए। खेल जगत की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2026 में सिंगरौली के नन्हे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण 3 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 10 मेडल जीतकर नया इतिहास रचा है। कलेक्टर ने इन प्रतिभावान खिलाड़ियों की सराहना करते हुए मुख्य कोच गणेश सिंह को एक योजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिसके तहत जिले के शासकीय स्कूलों और कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों में बच्चों विशेषकर बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए नियमित कराटे प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर द्वारा आम का पौधा रोपा गया। उन्होंने अधिकारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि केवल पौधा लगाना काफी नहीं है, बल्कि उसका एक बच्चे की तरह संरक्षण करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जिले के सभी शासकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाने की भी बात कही। दूसरी ओर दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने मुखबधिर दिव्यांगजनों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि उनकी रुचि के अनुसार CSR मद के माध्यम से रोजगार के अवसर और RCT के माध्यम से ब्यूटी पार्लर व टेलरिंग जैसे प्रशिक्षण दिए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बंद पड़े दिव्यांग विद्यालय को फिर से संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जहाँ BEd प्रशिक्षित स्थानीय शिक्षकों द्वारा बच्चों को संवेदनशील वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। सिंगरौली पुलिस की त्वरित कार्रवाई और साइबर सेल की सतर्कता से साइबर ठगी का शिकार हुए शांतिनगर बैड़न निवासी राहुल कुमार सोनी को उनके खाते से धोखाधड़ी कर निकाले गए 51,000 रुपए वापस करा दिए गए हैं। पुलिस विभाग की भर्ती प्रक्रिया के तहत जिले के 198 नव आरक्षक मिले हैं, जिनमें से 28 नवनियुक्त आरक्षकों को SP शियाज के M ने स्वयं नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार SP द्वारा 2 चौकी प्रभारियों समेत कुल 89 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है, जो पिछले 4 वर्षों से एक ही थाने या शाखा में पदस्थ थे। स्वास्थ्य क्षेत्र में NTPC विंध्य चिकित्सालय द्वारा सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 136 लाभार्थियों को विशेषज्ञों द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। अंत में नोनिहालों के विकास के लिए चल रहे आरोहण समर कैंप 2026 में बैडमिंटन, टेबल टेनिस और डांस गतिविधियों में लगभग 180 बच्चे उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं, जिन्हें अनुभवी कोच द्वारा मार्गदर्शन और पोषण युक्त स्नैक्स प्रदान किए जा रहे हैं। निष्कर्षता सिंगरौली जिला प्रशासन, पुलिस और जनप्रतिनिधि मिलकर स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सुरक्षा और पर्यावरण के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सिंगरौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अब सुन रहे थे सिंगरौली जिले की चिट्ठी, आलेख था अमित द्विवेदी का और वाचन स्वर थे शरद बाघेला के। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला संसार।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
3: हेलो MH हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन के सभी श्रोताओं को माजिदा खान का नमस्कार। हमारे पहले कॉलर कौन हैं? आइए देखते हैं और हम प्रोग्राम की शुरुआत करें। इसके पहले हमारे नए श्रोताओं को हमारे फ़ोन नंबर्स बता दें। हमारे फ़ोन नंबर से 2710223 और 2710224। इंदौर का सिटी कोड है 0731। तो फ़ोन कीजिए और हमसे बातें कीजिए, साथ ही अपनी पसंद का गीत भी सुनिए। आइए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: ग्राम सुराना, जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
0: शेख हैदर खान बात कर रहे हैं और पहले कॉलर हैं आज आप हमारे इस प्रोग्राम के। स्वागत है आपका।
1: और क्या हाल चाल है मैडम?
0: बढ़िया।
1: इंदौर में बारिश हो चुकी है?
0: बिल्कुल, बारिश की शुरुआत हो चुकी है, ठंडक हो चुकी है, अभी तो मानसून आ गया।

0: है अभी इंदौर में भी?
1: हाँ, यहाँ भी मैडम कल 2 घंटे बारिश हो गई है, तो
0: अच्छा जी।
1: बस आजकल में मतलब सोयाबीन की बोनी करेंगे। हाँ
0: बिल्कुल, खेतों के लिए तो बहुत अच्छा है। और अब 2-3 दिन से तो बारिश हो रही है इंदौर में।
1: हाँ यहाँ तो मैडम कल शुरुआत हुई है पानी की,
0: जी अच्छा।
1: और अच्छा पानी गिरा है।
0: चलिए अच्छी बात है। और बताइए आज आपकी क्या पसंद है?
1: आज मेरी पसंद है फिल्म हीर रांझा का गीत है लता जी के। आज में
0: जी
1: मिलो ना तुम तो हम घबराए, ना मिलो तो आंख चुराए, हम में क्या हो गया है।
0: बिल्कुल, बहुत बेहतरीन गीत है। वैसे हीर रांझा के बहुत सारे सारे गीत बहुत फेमस हुए थे और ये गीत भी बहुत
1: हाँ
0: पसंद किया जाता है। जी
1: अच्छा गीत है, राजकुमार और प्रिया राजन से पे मतलब फिल्माया गया
0: फिल्माया
1: गीत
0: गया था,
1: था।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी।
1: हाँ
0: ये फिल्म आपने देखी?
1: जो इसकी जो मतलब संगीतकार है मदन मोहन जी,
0: जी
1: हाँ, और गीतकार है कैफी आजमी।
0: आपने ये फिल्म
1: और
0: देखी है?
1: हाँ देखी थी ना मैडम,
0: अच्छा
1: हाँ देखी थी फिल्म।
0: चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, है ना, कैफी
1: ओके
0: आजमी
1: ओके
0: का
1: है ना,
0: लिखा हुआ और मदन मोहन के संगीत निर्देशन वाला, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।
1: ओके ओके, शुक्रिया है ना।
0: शुक्रिया।

0: हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रही हैं अपनी प्यारी सी आवाज में?
1: रानू गुप्ता बात कर रही हूँ, देवास से।
0: देवास से रानू गुप्ता जी, बिल्कुल स्वागत है आपका, बताएं।
1: आपके क्या हाल चाल है?
0: बढ़िया, हमारे ईश्वर की कृपा है, सभी पर बनी रहे।
1: चलिए चलिए, हमारी भी दुआ है, आप स्वस्थ रहे हमेशा।
0: थैंक यू।
1: और आज मुझे गाना सुनना है।
0: हाँ जी, बताएं।
1: नाम है फकीरा और गाने के बोल है तोता मैना की कहानी।
0: जी बिल्कुल, हम आपको सुनाएंगे ये गाना जो आपने पसंद किया है। और बढ़िया है, आपके हाल चाल?
1: बस ठीक हूँ, मैं छत पर कपड़े सुखाने के लिए आई हूँ।
0: अच्छा अच्छा, और साथ में बात भी कर रहे हैं?
1: हाँ, कपड़े धुल चुके हैं, ड्राई हो रहे थे।
0: अच्छा अच्छा,
1: सुखा भी देते, क्योंकि अभी ना जैसे थोड़ा सा बारिश का मौसम है।

0: जल्दी धो देते हैं तो जल्दी सूख भी जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: वैसे तो मशीन में ड्राई हो जाते हैं लेकिन थोड़ी बहुत हवा भी तो चाहिए उनको।
1: बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, बाहर की धूप भी जरूरी है और हवा भी, आप तो बेहतर जानती हैं। ठीक है, लीजिए आपकी पसंद
0: का गीत। ना तो आपकी आवाज थोड़ी कम ही आने लगी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कभी कभी हो जाते हैं ऐसा। लीजिए आप सुनिए अपनी पसंद का गीत जी। थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी माता जी को वेरी गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग आपको भी।
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल।
0: अरविंद अग्रवाल जी बात कर रहे हैं।
1: जी
0: स्थान का नाम बताइए। श्रीनगर से।
1: आप श्रीनगर जिला महोबा आपके पड़ोसी हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी।
0: बताएं क्या कैसा मौसम है वहाँ?
1: अभी यहाँ तो पानी नहीं बरसा।
0: अच्छा
1: ज्यादा है।
0: अच्छा मतलब महोबा में अभी पानी की शुरुआत नहीं हुई?
1: नहीं ऐसी एक दो बार छीट ऐसे पड़े बस।
0: अच्छा अच्छा चलिए आप तो अपनी दुकान में साथ साथ मनोरंजन करते रहते हैं जहाँ तक मुझे याद है। और अभी आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी फिल्म का नाम रहेगा पर करके सनम।
0: हाँ जी
1: अब आहोने।
0: हाँ बताएं।
1: जी महबूब महबूब मेरे महबूब।
0: हाँ जी चलिए हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में ये गीत जो आपने पसंद किया है। लीजिए सुनिए अपने रेडियो सेट पर।
1: आपका दिन शुभ हो।
0: धन्यवाद आपको।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते।
1: दुबई से बगीचे से महेश रायकवार।
0: दुबई के बगीचे से
1: जी महेश रायकवार।
0: महेश श्री अकबर बात कर रहे हैं। हाँ जी,
1: जी
0: कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: वो पलकों की छाँव का गाना सुना दीजिए मुझे।
0: हाँ जी जरूर
1: अल्लाह
0: सुनाएंगे।
1: मेघ दे गुल गुड़ दे पानी दे।
0: हाँ जी, हाँ जी, देखिए आपने बिंदी आपकी तो बिल्कुल कबूल हो गई है, पानी तो आ गया है।
1: अभी तो थोड़ा है मैडम, अभी तो और थोड़ा
0: बहुत सारे पानी
1: पानी
0: की जरूरत
1: जी
0: है।
1: जी
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल।
1: हाँ ये तो पहले चला गया तो डाइटा नहीं मिला।
0: बिल्कुल, क्या करते हैं आप?
1: मैं इधर गुजराती गेस्ट हाउस में हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो काम के साथ साथ मनोरंजन के लिए आप रेडियो का उपयोग करते हैं।
1: जी जी
0: अच्छा, मोबाइल ऐप पर सुनते हैं या फिर रेडियो पर?
1: नहीं मेरे कहने मोबाइल भी है मैडम, रेडियो भी है छोटा।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: आप तो ये समझ लो कि भीड़ भाड़ के आकाशवाणी के सारे कार्यक्रम सुनते रहता हूँ।
0: अच्छा
1: जी,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो। चलिए हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: थैंक यू मैडम,
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: माजी को आदाब और प्यार भर सलाम।
0: नमस्ते, सलाम आपको भी।
1: ना मांगी कोई दुआ, ना कोई गुजारिश की, ना कोई फरियाद, ना कोई नुमाइश की। जब झुका सर सजदे में खुदा के, तो आप किसी की ख्वाहिश की।
0: बहुत ही खूबसूरत सी शायरी आप कर रहे हैं। मैं आपका नाम जान सकती हूँ?
1: पालता नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी, मोहम्मद रफी जी मंसूरी। हाँ, आप तो बड़ी शेर व शायरी कर लेते हैं। हाँ, और बताएं कैसे हैं?
1: कैसे हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ
1: जी, अच्छे ही रहना चाहिए।
0: हाँ, बताएं आज आपकी क्या पसंद है? मुहर्रम का त्योहार मना रहे हैं ना आज?
1: जी, सब तैयारियाँ हो चुकी है अभी
0: शाम के लिए। जी,
1: जोहर के बाद जाएंगे हम लोग।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा, आज फिल्म का नाम है डेली फिक्स।
0: हाँ जी,
1: और गाने के बोले अर्जिया कारी में चेहरे पे लिख के लाया हूँ।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे। और मुहर्रम के समय में आपने क्या, आपके घर में, आपके परिवार में लोगों ने रोजे रख रखे हैं? नहीं।
1: हाँ, रखते हैं ना मैम, 9 और 10 तारीख को दोनों को रखते हैं।
0: 9 और 10 तारीख को रखते हैं। हाँ, ये आशुरा का रोजा तो जरूर रखा जाता है।
1: आशुरा का तो रहता ही रहता है।
0: हाँ जी, हाँ जी, और 9 और 10 तारीख को सभी रखते हैं लगभग। कुछ लोग 1 से 10 तारीख तक भी रखते हैं, कुछ 9 और 10 का ही रखते हैं। जी बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। लीजिए सुनिए। धन्यवाद।

0: आलिया खान। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनकी क्या पसंद है आज। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: हाँ, मैं यहाँ राजाराम नगर देवास से राजेश अग्रवाल बोल रही हूँ दीदी।
0: हाँ जी राजेश जी, क्या पसंद है आज आपकी?
1: आज ये शोर पिक्चर का गीत सुनवा दीजिए, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे हो जैसा, लता जी और मुकेश जी की आवाज में, मनोज कुमार साहब की फिल्म है।
0: जी जी जी बिल्कुल, हम आपको सुना रहे हैं आपकी पसंद का गीत।
1: बारिश का मौसम चल रहा है तो गीत पानी का ही होना चाहिए दीदी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लीजिए सुनिए शोर फिल्म का गीत जो आपने पसंद किया है।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: जी नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं? आपका शुभ नाम? जी
1: जी दीदी, मैं महेश बिलाला बात कर रहा हूँ, जिला आगरमालवा, ग्राम मनासा थी।
0: आगरमालवा मनासा से?
1: जी दीदी
0: जी। क्या नाम है आपका?
1: महेश बिलाला।
0: महेश जी, महेश जी बताएं।
1: जी दीदी, कैसे हो आप?
0: हम बहुत अच्छे हैं, आप भी अच्छे रहें, ये ईश्वर से हमारी सबकी प्रार्थना रहती है।
1: जी दीदी, बहुत दिनों बाद कॉल लगाया आपको।
0: अच्छा कितना समय हो गया
1: दीदी? लगभग 25-26 दिन बाद कॉल ट्रांसफर हुआ है दीदी।
0: अच्छा चलिए, वैसे अब तो
1: अपना कॉल तो कनेक्ट हो जाते हैं, नए श्रोताओं की नई आवाज़ सुनने का और ही मजा हो जाता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो नए नए श्रोताओं को अवसर मिलता है तो उनको भी अच्छा लगता है और हमें भी नए श्रोताओं से बात करने में अच्छा लगता है। वैसे तो हमारे पुराने श्रोता हमारे साथ ही हैं पुराने, लेकिन और भी लोग जुड़ जाएं तो अच्छी बात है, हमारा परिवार बढ़ जाता है।
1: हम तो चाहते हैं दीदी आकाशवाणी से ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता जुड़े।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी। और आज आपकी पसंद क्या है?
1: जी दीदी, आज का अर्जुन फिल्म का सुनवा दो ना, वो गोरी है कलैया के लादे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनाएंगे आपकी पसंद का गीत जो आपने पसंद किया है। नीचे सुनिए अपने रेडियो सेट पर।
1: धन्यवाद दीदी,
0: शुक्रिया आपको फोन करने के लिए।

0: हेलो
1: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
0: एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम में स्वागत है आपको। जी, अनिल कौचाले जी, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही, क्या बात है? हाँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, बताएं आज कौन सी पसंद है आपकी?
1: आज हमको सुनवा दीजिए सुरेश शंकर की आवाज में।
0: जी
1: बोला,
0: बिल्कुल बिल्कुल, तू है कमाल, हम आपको जरूर सुनवाएंगे सल्तनत का गीत। और कैसे हैं आप?
1: बस आज बैंक तो घर पर है।
0: अच्छा अच्छा,
1: टाइम मिला नहीं था बैंक में, तो होते हैं तो लगातार टाइम में आपका कार्यक्रम आता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, अच्छी बात है, आज आपको मौका मिला और आपको फोन भी लग गया।
1: फोन
0: जी जी जी, आपने छुट्टी का उपयोग कर लिया अपनी पसंद का गीत सुनकर।
1: हेलो
0: जी जी जी
1: मैडम, हमको एक बात आपका कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं, लेकिन हमारे पत्र जानबूझकर शामिल नहीं किए जा रहे हैं। हम बल्कि स्पीड पोस्ट से पत्र भेजते हैं, नॉर्मल लाकर भी नहीं भेजते।
0: जी
1: पाँच छह पत्र भेजे, लेकिन एक भी शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ईमेल और व्हाट्सएप ही शामिल हो रहे हैं।
0: नहीं देखिए सर, ऐसा नहीं है, हम तक या तो पहुंच नहीं पाया होगा, है ना, हमारे साथियों तक, इस कारण आपका पत्र शामिल नहीं हुआ। नहीं तो हमें किसी भी श्रोता से ऐसे कोई दुर्भाव नहीं है कि हम उनका पत्र शामिल ना करें, है ना। किसी वजह से शायद आपका पत्र वहां तक ना पहुंच पाया हो, आप ईमेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जब हमारा प्रोग्राम चलता, आप उस दौरान भी कर सकते हैं। नहीं अब तो बहुत अच्छी बात है कि आप टेक्निकल वाले इस टेक्नोलॉजी के युग में भी आप पत्र लिख रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और किसी कोई ऐसी वजह जरूर रही होगी कि आपका पत्र शामिल नहीं हुआ, अन्यथा कोई ऐसी बात है नहीं कि आपका पत्र शामिल ना किया जाए, है ना।
1: तो आपके साथी से मिलेगा तो आप शामिल जरूर कर लीजिए।
0: नहीं नहीं बिल्कुल, जो भी बैठेंगे हमारे साथी वो आपका पत्र जरूर शामिल करेंगे और आपकी बात भी हम उन तक पहुंचा देंगे। और ज़रूर आप लिखिए, व्हाट्सअप करिए और आपका पत्र ज़रूर शामिल होगा। और अभी सुनिए आपकी पसंद का गीत जो आपने पसंद किया है, फिल्म सल्तनत से।
1: ठीक है,
0: लीजिए सुनिए।

0: हेलो
1: जी जी नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी मैडम जी, मैं मालवा रेडियो श्रोता संघ गुलबालो तहसील आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से विक्रम मालवीय बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: विक्रम मालवीय जी रतलाम से बात कर रहे हैं ना, आलोट से?
1: जी आलोट से।
0: हाँ जी, और फोन लगाते रहते हैं आप हमारे कार्यक्रम में?
1: नहीं मैम जी, मैडम मैंने पहली बार फोन लगाया है।
0: अच्छा,
1: बहुत हाँ जी, तो बहुत खुशी हुई फोन लगाया, अच्छा हुआ आपसे बात करके।
0: हमें भी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपका पहली बार फोन लगा और हम आपसे बात कर पा रहे हैं, एक नया श्रोता हमारे परिवार में जुड़ रहा है।
1: जी बीच में कितनी बार ट्राई करा पर लगा नहीं था, आज किस्मत से लग गया मैडम जी।
0: जी ये तो सही बात है, हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार लाइन पर होते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल होती है फोन लगने में।
1: जी
0: और प्रयास करते रहेंगे तो जरूर सफलता मिलती ही है, जैसे आज आपको मिली गई।
1: जी मैडम, आज मिल गई काफी दिनों को। जी मैं आकाशवाणी इंदौर का नियमित श्रोता हूँ जी मैडम जी, मन भवन युवाणी सारे कार्यक्रम सुनता रहा, खेती गृहस्थी सुबह रामचरित मानस गान फिल्म संगीत।
0: जी
1: जी
0: अच्छा, बहुत सारे कार्यक्रम मतलब आप सुनते रहते हैं?
1: जी मैडम जी।
0: रेडियो के माध्यम से या फोन से?
1: रेडियो, हमारा रेडियो घर पे है, रेडियो पे सुनता हूँ, आलोट जाता हूँ ऑफिस तो या मोबाइल ऐप पे भी सुन लेता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: जी मैं वेयरहाउस में काम करता हूँ मैडम जी।
0: अच्छा अच्छा,
1: मध्य प्रदेश शासन का वेयरहाउसिंग है उसमें।
0: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप जॉब के साथ

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्ते, आपका स्वागत है एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्ते,
0: लाभ्या भेरू से अनिल बामनिया बोल रहा हूँ।
1: जी जी, हमारे नियमित श्रोता और नियमित आपके पत्र हम तक आते हैं, हमें प्राप्त होते
0: जी,
1: रहते हैं।
0: हाँ,
1: मन भावन चॉइस टाइम प्रत्येक कार्यक्रम के लिए आप पत्र भेजते हैं लगातार, और हाँ। आपका पत्र में भी भेजते हैं
0: जी। हाँ भेजता हूँ ना मैडम।
1: जी जी बिल्कुल। और बताएं कैसे हैं आप?
0: बस बढ़िया, आज छुट्टी का दिन है तो उन्होंने चलो आज लगा लिया जाए कम से कम।
1: हाँ जी सही बात है, आज का उपयोग कर लेते हैं छुट्टी के दिन का।
0: हाँ तो आज समय का सदुपयोग कर लिया जाए कम से कम।
1: जी जी जी। अब वैसे जॉब क्या है आपका?
0: मेरे स्कूल में, स्कूल में टीचर हूँ मैडम, उर्दू गर्ल्स स्कूल में।
1: उर्दू गर्ल्स
0: हाई सेकेंडरी? हाँ उर्दू गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल,
1: ये अपना हाथीपाला।
0: हाथीपाला? हाँ हाथीपाला।
1: जी जी, क्योंकि वही है एक।
0: हाँ वो हाई सेकेंडरी स्कूल है ना।
1: हाँ जी हाँ जी, हायर सेकेंडरी स्कूल में है।
0: हाँ मैं हाई सेकेंडरी में, वो मैं प्राइमरी से लगा के हाई सेकेंडरी तक का है, एक ही परिसर में।
1: हाँ जी मैंने देखा हुआ है।
0: अच्छा अच्छा, शायद हो सकता आपने वहाँ पढ़ाई करी हो भी।
1: नहीं मैं गई थी, मैंने देखा हुआ है। हाँ जी
0: हाँ, नहीं बहुत बड़ा अच्छा स्कूल है आपको, वो पहले से बेहतर हो गया है स्कूल। अच्छा पहले तो आपके समय गए होंगे तो समय इतनी कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन अब अच्छी हो गई बाउंड्री वगैरह, और नगर निगम ने भी अच्छे काम करवा दिए, वहाँ पे टंकी वंकी सब लगवा दिए, ग्राउंड वगैरह।
1: चलिए
0: तो बहुत हमारे यहाँ लड़कियाँ पढ़ रही, 250 करीब लड़कियाँ रहती है।
1: हाँ जी अच्छा,
0: 9th से 12th तक को पढ़ाता हूँ वैसे मैं।
1: अच्छा 9th से 12th तक पढ़ाते हैं आप?
0: हाँ जी जी हाँ।
1: कौन सा विषय पढ़ाते हैं आप?
0: हिंदी पढ़ाता हूँ।
1: अच्छा चलिए, लैंग्वेज पर कमांड दे रहे हैं बच्चों को, और बहुत हाँ, अच्छी बात है। शिक्षक तो एक ज्योति के समान बच्चों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं, भावी नागरिक तैयार कर रहे हैं। और आज आपकी क्या पसंद है?
0: मेरी पसंद है आज फिल्म अनुरोध।
1: जी
0: उसके बोल है, मेरे दिल ने तड़प के जब तेरा नाम पुकारा।
1: जी जी बिल्कुल, अनुरोध
0: फिल्म कुमार की आवाज में,
1: किशोर कुमार की आवाज़ में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में है और आनंद बख्शी का लिखा हुआ है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। जो आपने पसंद किया है हम गीत आपको ज़रूर सुनवा रहे हैं।
0: थैंक यू।
1: सुनिए अपने रेडियो सेट पर, और फ़ोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो हेलो।
0: हाँ जी बताएं, कौन बात कर रहे हैं?
1: हाँ दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: आपके नियमित श्रोता भागचंद्र साहू जी, राजेंद्र नगर गंज मासोदा।
0: जी जी जी बिल्कुल, आप ये पसंद बताएं जल्दी से हमें।
1: हमें सिर्फ तुम की कव्वाली सुनना है, सिर्फ मुलाकात जरूरी है सनम।
0: जी जी जी एक मुलाकात जरूरी है सनम।
1: बिल्कुल दीदी बिल्कुल।
0: हाँ
1: कैसी
0: हाँ
1: हैं दीदी आप?
0: हम बहुत अच्छे हैं, और अभी आपकी पसंद
1: बिल्कुल
0: का गीत
1: दीदी।
0: सुनवा देते हैं जल्दी से आपको।
1: और दीदी हम पानीपुरी सेंटर का ठेला लगा दिया। आइए
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बात हो चुकी है,
1: गंजवा पर
0: हमारी
1: आइए
0: कई
1: दीदी
0: बार
1: आप।
0: बात हुई है आपसे, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी बिल्कुल, आपकी
1: आपसे
0: पसंद का
1: तो
0: गीत
1: निमित्त होता
0: सुनिए।
1: है वैसे।
0: जी जी बिल्कुल, निमेश होता है आप, और अभी हम आपकी
1: बिल्कुल
0: पसंद का गीत

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते, स्वागत है आपका एमएच हॉटलाइन में। हमारी बात किससे हो रही है?
1: नमस्कार मैडम, मैं गांव लेह दिगर तालुका जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश सावन बात कर रहा हूँ।
0: जलगांव महाराष्ट्र से आपने फोन किया हमको।
1: हाँ मैडम, बहुत दिन से कॉल लगा रहा था, लग रहा था नहीं, पर आज लग गया है कॉल।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। और पहली बार आपका फोन लगा है?
1: पहली बार नहीं मैडम, पहले रिकॉर्डिंग का प्रोग्राम चलता था उस
0: उस
1: समय
0: समय आपका
1: जब
0: फोन
1: लग
0: लगा था जी।
1: हाँ, तो जब से अभी लगा है लाइव में।
0: चलिए अच्छी बात है। और आप प्रयास करते रहे इसलिए आपका प्रयास भी सफल हुआ और आप आज बात कर पा रहे हैं, और हमें भी अच्छा लग रहा है आपने इतनी दूर से हमें कॉल किया है।
1: अच्छा लगता है मैडम, आकाशवाणी इंदौर के प्रोग्राम मन भवन
0: जी
1: जैसा, ये फोन इन फरमाइश वाला, ये सभी कार्यक्रम अच्छे लगते रहते हैं।
0: हाँ
1: और
0: जी
1: हम पहले रेडियो पर भी रेंज मिलती थी हमको, पर लेकिन अब रेडियो खराब हो गया तो हम ऑनलाइन के जरिए सुनते हैं।
0: जी जी बिल्कुल। आपके पास तो आपका मोबाइल है आपकी जेब में, और उससे आप आराम से सुन सकते हैं मोबाइल ऐप पर। AIR के लिए एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप पर आप आराम से इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
1: बराबर।
0: हाँ जी, आज आपकी कौन सी पसंद है?
1: पसंद फिल्म का नाम है दिल,
0: जी
1: और गाने के बोले वो प्रिया प्रिया।
0: जी हम आपको सुनवाएंगे अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज़ में जो गीत है वही आप पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, हम
1: हाँ
0: आपको दिल
1: मैडम,
0: फिल्म का गीत सुनवाएंगे। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का गीत, क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, तो हम आपको चलती से आपकी पसंद का गीत सुनवा देते हैं।
1: शुक्रिया, नमस्कार।
0: नमस्ते, फ़ोन करने के लिए शुक्रिया आपको इतनी दूर से।

0: ये था प्रोग्राम का आखिर गीत और हमारे जो श्रोता आज हम तक नहीं जुड़ पाए हैं, हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, उनसे निवेदन है कि वो अगले प्रोग्राम में ज़रूर प्रयास करें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे श्रोता, हमारे नए नए श्रोता हमसे जुड़ पाएँ। और अब कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए माजिदा खान को। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 11 बजे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: और आप हमें फोन करके अपने फरमाइशी गीत सुन सकते हैं। फोन नंबर है 07552660902। इसमें 07552 हमारा STD कोड है। तो आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार है। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं रोजाना सुबह 10:30 से 11 बजे तक। नमस्कार, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है।
2: नमस्ते मैडम
1: जी, आपका नाम जान सकती हूँ?
2: मैं अनिला जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालदाना का इंदौर से। मैडम कैसे आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, कैसी हैं आप?
2: अच्छी हूँ मैडम, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बढ़िया हूँ। और क्या चल रहा है?
2: बस पड़े पड़े समझा रही थी मैडम आपको।
1: अरे वाह,
2: कर रही थी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो कार्यक्रम है आपकी पसंद का, कौन सा गाना आज सुनना चाहेंगे?
2: ये फूल दो माली का सुनवा दीजिए, पर्दा हटा दो मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले कोई घर नहीं।
1: तो आपका गीत हमें मिल गया है कार्यक्रम में फोन करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू मैडम।
1: तो लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म एक फूल दो माली का ये गीत।
3: ये

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है
1: हेलो
0: जी। नमस्कार, किन से बात हो रही है?
1: जी। नमस्ते मैडम,
0: आपका नाम जान सकते हैं?
1: जगत सिंह बोल रहा मैडम। जगत सिंह
0: जगत सिंह जी। कहाँ से बात कर रहे हैं जगत सिंह जी?
1: जी, मैं ग्राम पिपलिया वराई तहसील भी कौन चला रहा है।
0: कैसे हैं आप?
1: जी मैडम जी, अच्छे हैं। खाना खा लो
0: खाना खा रहे हैं?
1: जी।
0: अरे वाह, तो गीत कौन सा सुनेंगे खाना खाते हुए?
1: जी मैडम, वो सुना दो। बरसात हो रही है तो बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। बरसात ही फिल्म को है जहाँ तक मैडम जी, सही
0: बरसात
1: पता तो नहीं आ रहा हुआ, खबर नहीं आ रही फिल्म का।
0: जी। जगत सिंह जी, गीत आपका मिल गया है, कुमार सानू की आवाज़ में है, बस आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम में
1: जी
0: आप शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।

0: फोन करें, गीत सुनें।
1: नमस्ते दीदी, क्या
0: नमस्ते, किनसे बात हो रही है?
1: शंकर कुशवाहा छतरपुर मध्य प्रदेश से।
0: कैसे हैं आप?
1: ठीक है दीदी, बहुत बढ़िया है। बड़ी मुश्किल में लगता है फोन अब।
0: हाँ, थोड़ा समय लग
1: जी
0: जाता है, सारे श्रोता जो हैं कोशिश कर रहे होते हैं तो थोड़ा।
1: फिल्म का नाम है
0: जी
1: हेलो
0: हाँ बताएं।
1: डोली।

0: सजना साथ निभाना।
1: अच्छा, डोली फिल्म का सजना साथ निभाना
0: जी
1: गीत सुनना चाहते हैं।
0: जी दीदी, जी दीदी,
1: बिल्कुल, आपको सुनवा देते हैं। मोहम्मद रफी आशा भोसले जी की आवाज़ में है, अब आएगा आपके रेडियो सेट पर।
0: नमस्ते
1: जी,
0: दीदी।
1: कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आपको सुनवाई देते हैं गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज़ में।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत
1: हेलो
0: सुने। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: जी नमस्ते मैम, मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ।
0: नरेश प्रजापति जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: फिलहाल मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: इंदौर से?
1: वैसे मेरा गांव है रामनगर बमोरी गुना मध्य प्रदेश में।
0: अच्छा,
1: जी।
0: और फिलहाल आप इंदौर में हैं?
1: हाँ फिलहाल इंदौर में हूँ मैं, यहाँ लगभग 2011 से हूँ।
0: क्या करते हैं आप?
1: मैं एम्प्लॉय हूँ मैम, और ट्रक और बसेस बनते हैं यहाँ, मैन्युफैक्चर होता है।
0: अच्छा, वहाँ आप काम करते हैं।
1: जी जी
0: ठीक है जी, तो कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे आज?
1: देखिए मौसम बरसात का चल रहा है, तो बरसात से रिलेटेड भी आज एक फरमाइश लेकर आया हूँ मैं।
0: हाँ बताएं।
1: उनका नाम रहेगा आई मिलन की रात।
0: आई मिलन की रात।
1: सावन का महीना आया है कथा। वैसे सावन का महीना तो भी आया नहीं, लेकिन मौसम बरसात का आ गया।
0: तो आई मिलन की रात फिल्म से आपने कहा, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं? सावन का महीना आया है।
1: हाँ जी आया है कथा से।
0: अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में ये गीत हमारे पास उपलब्ध है, तो बस आपको सुनवाई देते हैं ये गीत। कार्यक्रम में आपने प्रतिभागिता की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी।
1: जी थैंक यू मैम।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: परमारणी दीदी, सारा सप्रेम, प्यार है, नमस्कार
0: नमस्कार, किन से बात हो रही है?
1: जी। मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजा

0: श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ दीदी।
1: शारदा प्रसाद प्रजापति जी मथुरा से बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छा हूँ दीदी, आपका आशीर्वाद है, माँ की बिहारी कृपा है, घर परिवार में सब लोग आनंद मंगल रहते हुए आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं, रेडियो से कार्यक्रम सुनते हैं, अच्छा लगता है। और जब आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल में फोन लगता है तो फिर कहना क्या, बहुत ही खुशी और प्रसन्नता होती है। दीदी मैं रीवा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और वर्तमान में मथुरा में निवास कर रहा हूँ।
1: अच्छा जी, क्या करते हैं आप वहाँ पर?
0: मेरे बच्चे जॉब में हैं और वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उन्हीं के साथ में मैं रहता हूँ और मैं विद्युत विभाग में सेवानिवृत्त हो चुका हूँ
1: अच्छा,
0: और घर में रहते हुए सेवानिवृत्ति का आनंद ले रहा हूँ और आकाशवाणी से जुड़ा रहता हूँ।
1: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो गीत कौन सा आज सुनना चाहते हैं आप?
0: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु झील।

0: बहुत ही सुंदर प्यारा सुरीला गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ।
1: शारदा प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में प्रतिभागिता करने के लिए, और अब आपको सुनवाई देते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म जीवन मृत्यु से।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: जी नमस्कार,
0: नमस्ते
1: हेलो आकाशवाणी भोपाल।
0: जी, आकाशवाणी भोपाल से बात कर रहे हैं, आप कौन बात कर रहे हैं?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा था।
0: कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है जी, प्रभु की कृपा है।
0: क्या करते हैं मनोहर जी?
1: ये मेरी कपड़े की शॉप है और मैं यहीं पे अपना संगीत से जुड़ा रहता हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है। क्या चल रहा है, कैसा मौसम है?
1: मौसम कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्मी हो जाती है। इस समय धूप खिला हुआ है, उमस भरी गर्मी है।
0: तो गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आज फिर?
1: ये सुनना चाहते हैं जी, फिल्म का नाम है रॉकी, क्या यही प्यार है। ये हमारे दोस्त हैं हेमंत, उनके पसंद।
0: रॉकी फिल्म का गीत आप अपने दोस्त के लिए सुनवाना चाहते हैं? हेलो मनोहर जी, आपका आवाज़ आ रही है जी? शायद तकनीकी खराबी के कारण कॉल कट गया है। मनोहर जी कोई बात नहीं, गीत आपका हमारे पास उपलब्ध है, अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म रॉकी से।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार
0: जी। किन से बात हो रही है
1: जी? मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकायरी गांव से बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पाल जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन आपका शुभ नाम तो बताइए, कितनी प्यारी आवाज आप।
0: जी मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: अच्छा अच्छा रक्षा जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार, तो कैसे हैं आप, क्या चल रहा है?
1: बिल्कुल रक्षा जी, बस बैठे हैं, दुकानदारी करते हैं, तो दुकानी पे बैठे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं आपका।
0: किस चीज की दुकान है आपकी?
1: सारी दुकान, हर चीज की।

0: मेरा साजन कैसा होगा। बहुत प्यारा गाना है, लता जी की आवाज में है।
1: ठीक है जी, फूलचंद जी आपको ये गीत सुनवाते हैं आपकी पसंद का।
0: बहुत बहुत नमस्कार। और ये गीत जो है प्रेमदास बाबा जी और मांगीलाल चंदे दिनकर सिंह और जो है आपको डेडिकेट रहेगा। और पूनम जी है कानपुर से
1: जी,
0: तो आप सभी श्रोताओं को जो है हमारे जितने मित्र हैं सभी को डेडिकेट रहेगा।
1: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद फूलचंद जी। अब आपको सुनवाई देते हैं गीत आपके पसंद का।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्ते, कार्यक्रम में फोन किया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: मैडम नमस्ते, मैं सुमित बात कर रहा हूँ एमपी धार से। जी
0: कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताइए क्या हाल चाल है।
0: हम भी बढ़िया हैं। क्या चल रहा है?
1: जी अभी बस कुछ देर बाद ऑफिस जाने की तैयारी है। मेरा ऑफिस दिन में होता है 1 से शाम 7 बजे के बीच।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: मैं म्यूजिक लेक्चरर हूँ।
0: अरे वाह, अरे वाह,
1: मेरी किनसे बात हो रही है?
0: मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: रक्षा जी।
0: जी
1: अच्छा चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं कार्यक्रम में?
1: आप मुझे सुनवा दीजिए, चूंकि अब बरसात का मौसम कहीं ना कहीं दस्तक दे रहा है, तो
0: जी
1: आप मुझे सुनाइएगा बरखा बहार। आशा जी की एक रचना है, ये थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गीत है ये।
0: थोड़ी सी बेवफाई।
1: हाँ इसका बरखा बहार देखिए, अगर मिल जाता है तो नहीं फिर मैं दूसरा बताता हूँ।
0: ये बरसे फुहार
1: बरसे
0: है
1: फुहार, सॉरी,
0: ना?
1: हाँ
0: जी
1: हाँ यही वाला है
0: जी ये गीत तो हमारे पास है उपलब्ध।
1: और बहुत अच्छा गीत है, आप सुनिएगा इसको, बहुत अच्छा गीत है ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुमित जी आपको ये गीत सुनवाएंगे आशा भोसले की आवाज़ में, और कार्यक्रम में आपने प्रतिभागिता की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी आपको बहुत बहुत नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: पेशे इस घंटे की खास खबरें। आज मुहर्रम है, ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि उनका त्याग साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्य का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर आज कई जगहों पर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से नशा मुक्ति क्विज प्रारंभ कर रहा है, जो कि 15 जुलाई तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति बच्चों और युवाओं को जागरूक करने के लिए पाठ्यक्रम में इस विषय को सम्मिलित किया जाएगा। प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत 13 जिलों में जिन सिंचाई परियोजनाओं के कार्य पूर्ण हो गए हैं, इससे 6 माह में 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी की चुनौती देने की विंडो खोल दी गई है। वेबसाइट पर जाकर विद्यार्थी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जर्मनी में चल रही ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत कुल 25 पदक प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर है। और भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सरिता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम लेकर आए हैं आपकी पसंद पर बेहद खूबसूरत गीत, जिसे आपने ही चुना है। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम को आपकी पसंद यानी फिल्म एक दूजे के लिए से। और ये गीत गाया है लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम ने। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इस खूबसूरत गीत को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने इसी गीत को सुनना चाहा था। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और इनके पूरे राजावत परिवार ने। तो आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म हीरो से। स्वर हैं रेशमा के। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतमय बनाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोता, उस गीत की फरमाइश हम तक लिख भेजी थी जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास बंटा बेले जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार, श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली वैष्णवी, अनरत रेखवार, हल्ले लल्लू और ऋषि रेखवार ने इसी गीत को पसंद किया था। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सनम बेवफा का ये गीत और स्वर हैं विपिन सचदेवा के। ये गीत लिखा है सावन कुमार ने और संगीत है महेश किशोर का। इस गीत को सुनना चाहे कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने इसी गीत को पसंद किया है। शाहनगर यवतमाल से राहुल मनबर, सरला मनबर, विशाल तथा चेतन मनबर ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

आपकी फरमाइश में अगला और अंतिम गीत पसंद करने वाले श्रोता हैं सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। इसी गीत को पसंद किया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप साजेश और राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म दिल का ये गीत। गीत लिखा है समीर ने, स्वर हैं उदित नारायण और अनुराधा पुडवाल के।

0: इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है अंतराल का।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
3: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
3: उद्गम से।
1: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
4: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
8: सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक भुवन मोहिनी का 8वां भाग।

पिछली कड़ियों में आपने जाना कि देश निकाले की सजा प्राप्त नर्तकी भुवन मोहिनी को ढूंढते हुए राजकुमार विजय श्रवा इंद्रप्रस्थ पहुंचा, जहां भुवन मोहिनी राजा आदित्य सेन के आश्रय में थी। राजा आदित्य सेन अपनी पुत्री का विवाह विजय श्रवा से कराना चाहते थे, परंतु राजकुमारी के प्रति आकर्षित होने के बावजूद विजय श्रवा भुवन मोहिनी से ही प्रेम करता था। राजकुमार ने चंद्रहासिनी से साफ साफ कह दिया कि यदि वो उसके मन से भुवन मोहिनी के स्थान को छुड़वाना चाहेगी तो बदले में अपने लिए मात्र घृणा प्राप्त करेगी। राजकुमार की शर्त को चंद्रहासिनी ने स्वीकार कर लिया। इंद्रप्रस्थ के मेले में विजय श्रवा के माता पिता भी आए और वहीं उन्होंने अपनी भावी वधू को पसंद भी किया। वहां राजकुमार ने राजमाता को आश्वासन दिया कि वो भारतीय सीमा पर आक्रमण करने वाले हूणों को पराजित करने के बाद चंद्रहासिनी से विवाह करेगा। इंद्रप्रस्थ में राजाओं की सभा में विजय श्रवा को भारतीय सेना का सेनापति बनाया गया और उसने सुप्त प्राय लोगों में नई चेतना भर दी। उसने ये भी कहा कि वो आजीवन विवाह नहीं करेगा।

0: वो वापस चलने के लिए भुवन मोहिनी को कहता है, परंतु चंद्रहासिनी भी साथ में आती है। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 8वीं कड़ी में।
1: सावधान, सम्राट दुमित सेन पधार रहे हैं।
2: सम्राट दुमित सेन की जय हो।
3: क्या बात है, दरबार में आज सन्नाटा क्यों है? युवराज विजय शर्मा, आज की कार्यवाही आपको आरंभ करनी है ना?
4: जी सम्राट।
3: तो फिर विलंब क्यों?
4: सम्राट, इस सभा में हूण अधिनायक के दो दूत भी उपस्थित हैं, जो अधिनायक का पत्र लेकर आए हैं। इस पत्र पर त्वरित कार्रवाई होने की आवश्यकता है।
3: पत्र को पढ़ा जाए।
4: आज्ञा सम्राट। इस पत्र में हूण अधिनायक ने लिखा है कि या तो भारतीय सम्राट प्रत्येक सैनिक पदाधिकारी के लिए सर्वश्रेष्ठ सुंदरी प्रदान करें और एकत्रित राजकोष का 2/3 धन और राजकीय परिवार की सर्वश्रेष्ठ राजकुमारी जो अनिंद्य सुंदरी हो, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में अपराजिता सिद्ध हुई हो, सैनिक अधिनायक को समर्पित करें और साथ ही पराजय को स्वीकार करते हुए हूणों के सैनिक अधिनायक को प्रतिवर्ष साम्राज्य की आय का 1/2 भाग प्रदान करते जाएं। यदि ऐसा किया गया तभी रक्त सागर को भरने वाला विकराल युद्ध टाला जा सकेगा, अन्यथा भारत देश की भूमि में ऐसा भयंकर युद्ध होगा जिसमें भारतीय परंपरागत वैभव की होली जलाई जाएगी, भारतीय सुंदरियां बलात् लूट ली जाएंगी और सर्वनाश का तांडव देश के कोने कोने में दिखलाई पड़ेगा।
3: ऐसा अपमानजनक पत्र लिखने का दुस्साहस! मन तो करता है कि ऐसे पत्र को लाने वाले दूतों की खाल उतरवा दे, परंतु यह हमारी परंपरा नहीं है। मैं दरबार में उपस्थित सभी सभासदों के चेहरों पर आ रहे भावों को देख रहा हूं, मैं तमतमा रहे युवराज के चेहरे को भी देख रहा हूं। यहां पर साम्राज्य और राज परिवार की अन्य महिलाएं भी उपस्थित हैं, मैं उनके भी मनोभावों को भली भांति समझ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि भावी सम्राट विजय शर्मा की क्या राय है।
4: सम्राट, शीघ्र ही युद्ध का बिगुल फूंकने का आदेश दें। इस अपमान भरे पत्र ने हमारे राष्ट्रीय सम्मान को चुनौती दी है। हमारे हृदय शत्रु के रक्त से होली खेलने के लिए उतावले हैं सम्राट। हमारे हाथ उन पामरों के मस्तक काटकर पैरों की ठोकरों से कुचल देंगे।
3: महिलाओं और समस्त सभासदों, मेरे चिरंजीव युवराज ने शत्रु के पत्र के प्रत्येक अक्षर को आप लोगों के समक्ष बड़े साहस पूर्वक पढ़कर सुनाया। आप सब लोगों ने जाना कि संधि की शर्तें भारतीय गौरव परंपरा के विपरीत हैं। दूसरी ओर युद्ध को स्वीकार किया जाए तो महान सर्वनाश को स्वीकार करना पड़ेगा। आज राष्ट्रीय स्थिति यह है कि समस्त देश बौद्ध मतावलंबी और अहिंसा का समर्थक हो चुका है। एक प्रकार से राष्ट्रीय धर्म ने युद्ध का निषेध कर रखा है। अधिकांश भारतीय नरेश अहिंसा धर्म द्वारा दीक्षित हैं, जो संभावना है कि रक्त से सने हुए युद्ध के विपरीत अपना समर्थन करेंगे। शत्रु ने जो दो शर्तें संधि के लिए प्रस्तुत की हैं, वो मुझ जैसे युद्ध प्रिय क्षत्रिय नरेश की विचारधाराओं के सर्वथा विपरीत है। मैं कायरता को स्वीकार करने से कहीं अधिक रक्त सागर में निमग्न होना पसंद करता हूं। मैं अहिंसा का सम्मान करते हुए भी माताओं, बहनों और बेटियों की लज्जा को निर्लज्ज बनकर शत्रु को नहीं समर्पित करना चाहता, भले ही मुझे हिंसक युद्ध द्वारा रक्त सागर को द्वेलित करना पड़े। वीर प्रसवनी भारत वसुंधरा वीरांगनाओं के अपमान को सहन करने में असमर्थ है। अस्तु, मेरा प्रबल समर्थन युद्ध के पक्ष में है, फिर भी मैं अपना निर्णय नहीं लादना चाहता। समस्त सभासद आपस में निर्णय करके मुझे ये बताएं कि वे संधि चाहते हैं अथवा युद्ध।
5: सम्राट, मैं इस विषय में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं।
3: आज्ञा है अमात्य ऋषभदेव।
5: सम्राट, मैंने इस संबंध में समस्त

0: राजाओं महाराजाओं की सहमत या सहमत जानने का सफल प्रयास किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जैसा आपने कहा, अधिकांश राजा महाराजा अहिंसावादी हैं और वो किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं चाहते। ये राजा महाराजा राष्ट्र को रक्त सागर में निमग्न करने से अधिक श्रेयस्कर हूणों के द्वारा मांग पूरी किए जाने के पक्ष में। उनका कहना है कि हूणों द्वारा मांगे गए धन का जो भाग राजकोष से दिया जा सके दिया जाए और शेष भाग अधिकांश नरेश मिलकर अपने अपने राजकोष से पूरा कर देंगे। शेष बची कुछ सहस्त्र सुंदरियां जो हूण सैनिक अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली हैं, उन्हें भी प्रत्येक नरेश राज की धन दान के अनुपात से एकत्रित कराकर सम्राट को सौंप देंगे और सम्राट व्यापक जनहित और राष्ट्रहित में मुझे समस्त राजाओं महाराजाओं की ओर से ये कहने में संकोच नहीं है कि हूण अधिनायक को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के रूप में महाराज आदित्य सेन जो इंद्रप्रस्थ के नरेश हैं अपनी राजकन्या चंद्रहासिनी का विवाह कर दें। संभवतः चंद्रहासिनी सौंदर्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ भी सिद्ध होगी। इस प्रकार राष्ट्र के अपार जनधन का सर्वनाश रोका जा सकेगा। अन्यथा प्रस्तावित धन दान कुछ सहस्त्र सुंदरियां और चंद्रहासिनी का विशेष दान उस सर्वनाश का एक साधारण भाग भी न होगा जो युद्ध की विभीषिका और सर्वनाश के पश्चात राष्ट्र को भोगना पड़ेगा। मुझे मात्र यही कहना था राजन।
1: अमात्र ऋषभदेव, क्या आप जानते हैं आपने अभी क्या कहा है? आपकी बातें सुनकर यहां उपस्थित दो हूण दूतों के चेहरे खिल उठे हैं, मानो उनकी मनोकामनाएं अब प्रयास ही पूर्ण हो गई हों और बाकी सभा तो मरघट सदृश बन चुकी है। महाराज आदित्य सेन की सुपुत्री राजकुमारी चंद्रहासिनी, जो इस सभा में अन्य महिलाओं के साथ स्वयं बैठी हैं, के ऊपर क्या प्रभाव हुआ होगा आपके इस प्रस्ताव का? कुछ कल्पना है आपको? मेरे स्वयं के कानों को आपकी बातें पिघले सुवर्ण जैसी प्रतीत हुई हैं अमात्य। हमारे राजा महाराजाओं के इस कायरतापूर्ण अभिमत से मेरी इन वृद्ध आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। आज हमें ज्ञात हुआ कि हमारा रक्त पानी हो चुका है। पानी।
2: ठहरिए सम्राट।
1: भुवन मोहनी, आज हम लज्जित हैं। हमें सभा में ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं।
2: सम्राट, सभा स्थल के मध्य आकर मैं आपके चरणों में अभिवादन करती हूं। आपकी पीड़ा मात्र आपकी नहीं है सम्राट, इन सुवर्ण जटित चौकियों पर रखी नग्न तलवारों का औचित्य ही क्या यदि वो राष्ट्र की आन बान और शान को न बचा सके। सम्राट, यहां पर उपस्थित राजपूती शान को यद्यपि अच्छा तो नहीं लगेगा कि एक नर्तकी इसे अपने हाथों में ले, परंतु क्या करूं, विवशता है, क्योंकि ये नर्तकी भी इसी राष्ट्र की कन्या है। इसी राष्ट्र की, जिसकी गौरव गाथा को आज इस सभा में एक निकृष्ट वाणी ने कलंकित करने का प्रयत्न किया। सम्राट, जो व्यक्ति हमारी धरती को कलंकित करे वो मात्र मांस का एक पिंड है, और जो प्राण हमारी मर्यादा को गर्त में गिराने का काम करे वो प्राण निष्प्राण होने के लिए ही उपयुक्त है।
1: भुवन मोहनी,
2: सम्राट, आपके श्री चरणों में राष्ट्रद्रोही आमात्य ऋषभदेव का सिर समर्पित है।
1: ये तुमने क्या किया? आमात्य ऋषभदेव का शिरच्छेद कर दिया?
2: पूज्य सम्राट, यदि मैंने राजसभा का अपमान किया है तो सम्राट अपने हाथों मुझे मृत्यु दंड प्रदान करें। मैं विवश थी सम्राट, लुटेरी जातियों के सेनानियों को तुष्ट करने के लिए भारतीय महिलाओं के सतीत्व और नारीत्व का उपहासास्पद निम्नदान

0: वासाग्नि में स्वाहा करने से उपयुक्त चिता की लपटों से आलिंगन करना समझें। भारतीय नारियों का बलिदान सर्वदा अमर रहा है। वो अपनी परंपरागत बलिदानी भावनाओं के लिए एक नहीं सहस्त्र बार अपने तुच्छ शरीर को स्वाहा करने के लिए प्रस्तुत है। किंतु ये कैसा अधापतन लाने वाला नीच प्रस्ताव है कि सिंघनी नारियां कामी कुत्तों और श्रृंगालों की वासना पूर्ति का साधन बने। सम्राट, मैं उपस्थित राजसभा के वीरों से निवेदन करूंगी कि या तो वे समर भूमि में शत्रु से मोर्चा लेने के लिए कटिबद्ध हों, या वे हमारी चूड़ियां धारण कर अंतापुर में जाकर बैठ जाएं। भारतीय नारियां अपनी मर्यादा की रक्षा में स्वयं जुट जाएंगी। महामात्य ने जिस नीच मुख से राजकुमारी चंद्रहासिनी को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के रूप में हुणों के अधिनायक के साथ प्रणय संबंध स्थापित करने का प्रस्ताव किया था, उसी के दंड स्वरूप उनकी समस्त ज्ञान इंद्रियां उनके तुच्छ शरीर से विलट की जाकर श्रृंगालों की भोज्य वस्तु बनने के लिए राजसभा के चरणों में लौट रही हैं, और मैं अपने किए का प्रतिफल भोगने के लिए तत्पर हूं। किंतु स्मरण रहे सम्राट, चंद्रहासिनी एक देवता की प्रेमार्थी बन चुकी हैं। वो किसी अधम राक्षस की वासना अग्नि के तुष्टि का कभी भी साधन नहीं बनेंगी।
1: उठो बेटी, मेरे हृदय से लग जाओ। मृत्युदंड उन्हें ही दिया जाता है जो स्वराष्ट्र के सम्मान के प्रति कृतज्ञ हैं। उठो
0: सम्राट।
1: महामात्य ने स्वयं वो दंड प्राप्त कर लिया जो भारतीय वीरांगनाओं और राष्ट्र की मर्यादा को खंडित करने वालों के लिए दिया जाता। मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा।
2: सैनिकों, हुण दूतों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो।
0: मात्र कारागार नहीं, इन्हें भी मृत्यु दंड मिलना चाहिए युवराज।
1: भुवन मोहिनी ठीक कह रही हैं युवराज। हम आदेश देते हैं कि इन दोनों ही दूतों को अविलंब मृत्यु दंड दिया जाए, ताकि ऐसे घृणित प्रस्तावों को भेजने और ले आने से पहले कोई 100 बार सोचे। हमारी आज्ञा का पालन अविलंब हो।
2: ले जाओ सैनिकों,
3: चलो।
4: सम्राट, मैं राष्ट्र रक्षा के लिए संकल्पित वीरों के भाल को स्वयं कुमकुम का टीका लगाऊंगी।
1: अवश्य साम्राज्ञी।
4: हे माता के वीर सपूतों, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है कि राष्ट्रीय सम्मान और देश की वीरांगनाओं की रक्षा का भार तुम लोगों के सबल कंधों पर आ टिका है। भुवन मोहिनी इस गौरवमय युद्ध की ध्रुव तारा है। हम कर्तव्य भ्रष्ट न हो, इस आदर्श को हमें भुवन मोहिनी से ही ग्रहण करना चाहिए। आप सब लोग मृत्युंजय बनकर इस युद्ध में लग जाएं, सफलता आपकी चेरी होगी। यही हमारा सुभाषीर्वाद है।

0: महाराज आदित्य सेन को प्रणाम।
1: आयुष्मान युवराज विजय शर्मा, राजकुमार, हूणों के साथ युद्ध में मैं आपकी इच्छा अनुसार आपके साथ हूं।
0: महाराज, ये आपकी महानता है। यद्यपि आपकी सेना धारा सेना से कई गुना अधिक श्रेष्ठ है, फिर भी आपने हमारा नेतृत्व न केवल स्वीकार किया अपितु उसकी अनुशंसा भी की। महाराज, हमारी सेना चार टुकड़ियों में विभक्त है, पैदल सेना, अश्वारोही, गजारोही और रथारोही।
1: और हमारे पास तलवार, भाला, खाना, तीर, धनुष, परशु, गदा, कुलिश, दंड, चर्म, त्रिशूल और सिरोही आदि अस्त्र शस्त्र पर्याप्त मात्रा में हैं। राजकुमार, मैंने अपने गुप्तचरों के द्वारा, जो बड़ी ही चालाकी से हूणों की सेना में सम्मिलित हो गए थे, कई जानकारियां प्राप्त की हैं।
0: बहुत अच्छा, हमें पता चला है कि हूण दूतों के मारे जाने का समाचार मिलने पर हूण सेनापति तुरंत आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है।
1: आपने ठीक ही सुना है युवराज, परंतु ये भी जान लीजिए कि जैसे ही उसे पता लगा कि समस्त भारतीय राज्य मिलकर युद्ध लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और इंद्रप्रस्थ के मार्ग को चारों ओर से घेर लिए हैं, तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए।
0: परंतु हूण वास्तव में लुटेरे हैं, धन का लालच उन्हें युद्ध की ओर अवश्य।

0: अकेलेगा।
1: हाँ, आपको याद होगा युवराज कि पिछले 6 महीने से वो सीमावर्ती क्षेत्रों में लूटपाट और हत्याएं कर रहे हैं।
0: हम तैयार हैं इंद्रप्रस्थ नरेश, और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस दिन हूणों से हमारा सामना होगा।
1: ये ध्वनियां कैसी हैं?
0: लगता है हूणों ने आक्रमण कर दिया है। महाराज, सेना को आदेश दें कि वो कूच करें।
2: कूच करो।
3: अरे, भारत की सेना इतनी बड़ी कैसे हो गई? अरे, ये पराक्रम कहां से आ गया इसमें? हमारे सैनिक तो गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। अगर हम हार गए तो ये हमेशा के लिए ताकतवर हो जाएंगे। क्या करूं? हाँ, चूंकि मैं एक बलशाली पहलवान भी हूं तो मैं भारतीय सेनापति को द्वंद युद्ध के लिए ललकारता हूं। कौन है भारतीय सेना का सेनापति? बोलो, कौन है? कौन है सेनापति? बोलो।
0: हम है सेनापति। क्या हो गया हूणों अधिनायक? ये पुकार क्यों लगाने लगे? बोलो, क्या कहते हो? आत्मसमर्पण करना है तुम्हें?
3: आत्मसमर्पण हमने नहीं सीखा है सेनापति, आत्मसमर्पण। अगर तुम वाकई योद्धा हो तो आकर हमसे द्वंद युद्ध करो। बोलो, मंजूर है?
0: मंजूर है।
3: तो फिर अपनी सेना को आदेश दो कि वो लड़ाई बंद करें। अब इस जंग का फैसला हम दोनों की कुश्ती से ही होगा।
0: चलो, यही सही। सैनिकों, रुक जाओ।
1: युवराज, युद्ध को क्यों रोक रहे हैं आप?
0: महाराज आदित्य सेन, हूण सेनापति अब हमसे द्वंद युद्ध करना चाहता है।
1: द्वंद युद्ध?
0: हम चाहते हैं कि उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाए। चल, आ जा हूण सेनापति। यदि अपने पिता के संतान है तो आकर हमसे द्वंद युद्ध कर।
3: आ जाओ, चलो, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ।
4: महाराज आदित्य सेन, राजकुमार ने ये क्या किया? हम विजय के बिल्कुल समीप थे, ये द्वंद युद्ध क्यों?
1: शांत रहो सैनिक, अपने सेनापति पर भरोसा रखो, वो एक कुशल मल्ल योद्धा भी हैं।
4: परंतु महाराज, हूण सेनापति लगातार आक्रामक हो रहा है। और हमारे सेनापति रक्षात्मक हैं।
1: देखते जाओ सैनिक।
0: अच्छा, अब देख तू, अब मैं क्या करता हूं?
4: अरे वाह, अब हमारे सेनापति ने जमकर दांव लगाया है। अरे, उन्होंने उसके दोनों पांवों को तोड़ दिया।
0: अब बस, ये मेरा अंतिम प्रहार होगा। ले, संभाल इसे।
4: हूण सेनापति मारा गया। हूण सेनापति मारा गया।
5: टूट पड़ो हूण सेना पर, एक भी जीवित न बचे। टूट पड़ो, टूट पड़ो।
6: बचाओ, बचाओ, हम शरणागत।

0: बख्शो, हमारे प्राण बख्शो।
1: रुक जाओ, शरणागतों पर वार मत करो, इनके अस्त्र शस्त्र छीन लो और स्वदेश जाने दो।
0: हम स्वदेश नहीं जाना चाहते सेनापति, नहीं जाना चाहते, वहाँ शांति नहीं है। हम शांति से अपना जीवन यहीं भारत में व्यतीत करना चाहते हैं। हमें स्थायी रूप से यहीं बसने की आज्ञा दीजिए।
1: तो फिर तुम सबको भारतीय जीवन आदर्शों को मानना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जीवन आदर्श ही मानव जीवन के सच्चे आदर्श हैं।
0: हमें स्वीकार है सेना नायक, हमें स्वीकार है, स्वीकार है।
2: सेनापति विजय शर्मा की।

0: आओ पुत्र विजयश्रवा, आओ हृदय से लग जाओ। हा, अपेक्षा के अनुरूप ही तुमने स्वयं को समर्थ, योग्य और पुरुषार्थ पूर्ण सिद्ध किया है। महाराज आदित्य सेन
1: जी सम्राट,
0: आपने विजयश्रवा को एक संरक्षक की भांति सहयोग दिया, हम आपके आभारी हैं।
1: धन्यवाद सम्राट। सम्राट, राजकुमार विजयश्रवा ने मात्र हूणों की सेना पर ही विजय प्राप्त नहीं की, अपितु उन्होंने हूण सैनिकों के हृदय पटल पर भी विजय प्राप्त की है। भविष्य का तो नहीं कहा जा सकता सम्राट, परंतु निकट के कई वर्षों तक के लिए भारत भूमि निरापद हो गई है।
0: इस प्रसन्नता की घड़ी में हमारी पुत्री भुवन मोहिनी कहाँ है?
2: दासी यहाँ है सम्राट।
0: दासी मत कहो स्वयं को पुत्री, आओ तुम भी हृदय से लगो। तुम मेरी और राजकुमार की समस्त विजयों की रीढ़ हो। तुमने राष्ट्र के सुप्त वीरत्व भाव को जगाकर देश के युवाओं को सर्वोत्सर्ग का पाठ पढ़ाया है।
1: सम्राट, आपको बता दूं कि भुवन मोहिनी इस पूरे युद्ध में सैनिक वेशभूषा में राजकुमार की ढाल बनकर उनके संग रही है।
0: अच्छा,
1: भुवन मोहिनी का जितना भी सम्मान किया जाए कम होगा सम्राट।
0: सर्वथा उचित कहा आपने महाराज।
1: एक आग्रह है सम्राट।
0: कहिए इंद्रप्रस्थ नरेश।
1: इस शुभ अवसर पर ही यदि राजकुमार विजयश्रवा का विवाह राजकुमारी चंद्रहासिनी के साथ संपन्न करा दिया जाए।
2: इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती सम्राट।
0: आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली महाराज, अब इसमें विलंब कदापि न किया जाए। समस्त राजे महाराजे यहाँ है ही, अब हम सब धारा नगरी अपनी पुत्र वधू को लेकर ही जाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत भुवन मोहिनी की 8वीं कड़ी, आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे वहां के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब पहले की तरह आपूर्ति बहाल हो गई है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत कर रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से होगा। और आईसीसी महिला 2020 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम रविवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला करेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा।

कार्यक्रम महिला सभा में स्वागत है सखियों आपका। आपके साथ हूँ मैं दुर्गेश नंदनी। सखियों, मौसम सुहावना हो गया है और इसका आनंद आप उठा रही हैं। फोन कॉल्स भी हो रहे हैं सखियों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। बिल्कुल बेशक गपशप करिए, क्योंकि इसी से हम खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और ये कहीं ना कहीं संवाद आपस में जोड़े रखता है। सखियों, हम जानते हैं कि आप सभी कुशल सजग सखियां हैं, फिर भी समय की दरकार है कि हम आपको समय समय पर सजग करते रहें। सखियों, इन दिनों डिजिटल अरेस्ट को लेकर काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, खबरें पढ़ने सुनने को मिल रही हैं। डिजिटल अरेस्ट एक साइबर फ्रॉड है। ठग अक्सर महिलाओं और बुजुर्गों को अपना शिकार बनाते हैं। पुलिस, CBI या कस्टम अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करके किसी फर्जी आरोप में फंसाने की धमकी देकर डराते हैं। सखियों, ऐसी कॉल आने पर डरे नहीं, कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें, तुरंत कॉल काट दें, क्योंकि कानूनी तौर पर डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं होता। तुरंत अपने परिवार के सदस्यों या स्थानीय पुलिस को इस बारे में सूचित कर सकती हैं आप। यदि शिकार हो जाते हैं तो सबसे पहले साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। ऑनलाइन शिकायत भारत सरकार के आधिकारिक साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर कर सकती हैं। बैंक को सूचित करें या कस्टम केयर को बताकर अपना खाता तुरंत फ्रीज करवा लें। सदैव अननोन नंबर से कॉल आने पर सजग होकर कॉल रिसीव करें। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित मानिए आप डिजिटल अरेस्ट से सुरक्षित रहेंगे। और सखियों, ये हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि हमारी केंद्र सरकार ने अपने शानदार 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन 12 वर्षों के सफर में सरकार ने सेवा, सुशासन और जन कल्याण पर जोर देते हुए अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। VPI के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम स्थापित हुआ और जन कल्याणकारी योजनाओं से सीधा लाभ पहुंचा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री जनधन योजना, PM आवास योजना, आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर

वालों को सीधा लाभ पहुंचाया है। महिलाओं के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाएं लागू हुई हैं। बात करते हैं सखियों आज भारत सरकार की लखपति दीदी योजना की। जी हां, ये योजना ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक पहल है। इसका मुख्य लक्ष्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय कम से कम 1,00,000 रुपये करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाना है। पात्रता की बात करें तो महिला का स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना अनिवार्य है। महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। और सखियों, लाभ और सुविधाओं की बात करें तो महिलाओं को उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए सिलाई बुनाई, ड्रोन संचालन, LED बल्ब निर्माण और कृषि संबंधित आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है। स्वरोजगार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा 1,00,000 से 5,00,000 रुपए तक का लोन प्रदान किया जाता है। इन ऋणों पर सरकार ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है, ताकि महिलाओं पर आर्थिक बोझ न पड़े। जी हां सखियों, आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक जो आधार से लिंक हो, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर जरूरी है। फॉर्म अपने क्षेत्र के ब्लॉक कार्यालय या पंचायत में जाकर लें और सही सही जानकारी के साथ भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ब्लॉक कार्यालय या पंचायत में जमा कर वहां से रसीद अवश्य लें। और अधिक जानकारी के लिए और आवेदन प्रक्रिया के लिए आप आधिकारिक लखपति दीदी पोर्टल पर जा सकती हैं। और अब बस सुन लेते एक प्यारा सा मीठा सा गीत, क्योंकि मौसम खुशनुमा हो गया है।

सखी वाकई बादल पर पांव है और हम सब जो है वो कहीं ना कहीं एक खुशी के दौर से गुजर रहे हैं। और चलिए अब सुन लेते हैं एक भेंट वार्ता। विषय है कुपोषण दूर करने में सहायक मोटे अनाज, और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर सोनाली नरगुंदे। तो आइए सुनते हैं और जानकारी लेते हैं। सखियों, कुपोषण की स्थिति हमारे देश में चिंताजनक है। जी हाँ, बच्चे और महिलाएं बड़ी संख्या में कुपोषण और एनीमिया से पीड़ित हैं। कारण, जागरूकता की कमी और खाद्य असुरक्षा जैसे कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि सरकार ICDS और PM वॉन्ड जैसी योजनाओं से इसे दूर करने का प्रयास कर रही है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सोनाली नरगुंदे जी को। आप

0: अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता विभाग की विभागा अध्यक्षा हैं। विषय आपको बता देते हैं, जी हाँ, कुपोषण दूर करने में सहायक मोटे अनाज। नमस्कार सोनाली जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपको भी।
0: सोनाली जी, जैसा कि हमारा आज का विषय है कुपोषण दूर करने में सहायक मोटे अनाज, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप हमें ये स्पष्ट करें कि मोटे अनाज से क्या अभिप्राय है और ये किस तरह से कुपोषण को दूर करने में सहायक है।
1: जब हम मोटे अनाज की बात करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि मोटा अनाज मतलब कि बुरा अनाज या कुछ अलग तरह का अनाज, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि यही अनाज हमारा प्राथमिक अनाज रहा है, कालांतर में हम इसे भूल गए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: पहले हमारे देश में यही जिसको हम मिलेट कहते हैं, सुपर मील कह रहे हैं, सुपर फूड कह रहे हैं, अभी नई नई परिभाषाएं इसके लिए गठित हो गई हैं, और ये मोटा अनाज जो हमारा प्राथमिक अनाज था ये अब बड़ा अलग तरह से हमारे प्रचलन में आ रहा है, मतलब इसको एक अलग ब्रांडिंग करके हमारे सामने रखा गया है। तो इसका कारण भी है, इसका कारण ये है कि पूरी दुनिया में अलग अलग तरह से अनाज और अनाज के प्रभावों के ऊपर बात होती रहती है खानपान को लेकर। जैसे आपने कुपोषण की बात की, तो कुपोषण पे जो चर्चा चल रही है और हमारे यहाँ जो एनीमिया की स्थिति है बच्चों में और महिलाओं में, वो स्थिति देखते हुए जब हम आकलन करते हैं इसका, तो हम पाते हैं कि मोटा अनाज किस प्रकार से इसमें सहयोगी है। इसका कारण यह है कि 2023 में भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय मोदी जी ने इसको एक 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित हुआ था, और उस वर्ष में 2023 से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं इसी के ऊपर, मोटे अनाज के ऊपर। प्राथमिक तौर पर 7 प्रकार के मोटे अनाज कहते हैं जिसको मिलेट्स कहते हैं अंग्रेजी में, सुपर फूड की श्रेणी में जो है, इसके ऊपर बहुत सारे अनुसंधान हो रहे हैं, बहुत सारे शोध हो रहे हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, मोटा अनाज मतलब क्या, मोटा अनाज जिसको हम भूल चुके हैं, अभी हम सब गेहूं की रोटी खाने लगे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हमारे यहाँ पर अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अलग अलग अनाज खाया जाता था, हमारे यहाँ अलग अलग मौसम के आधार पर अलग अलग अनाज खाया जाता रहा है, जो कि हम एक अलग प्रचलन के कारण भूलते गए। तो अभी सभी लोग गेहूं की रोटी खाते हैं, लेकिन हमारे पास बाजरा था, हमारे पास ज्वार थी, हम मक्का की रोटी खाते थे। अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो वहां पर रागी की रोटी या रागी के बॉल खाए जाते हैं, उसको रागी बॉल कहते हैं, रागी मुड्डा कहते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर मोटा अनाज हर जगह पर अलग प्रचलन में है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहां पर हमें ज्वार देखने को मिलती है, वैसे अगर हम राजस्थान और अलग क्षेत्र में गुजरात में चले जाते हैं तो वहां पर हमको बाजरा प्रचलन में मिलता है। यही उनकी मूलभूत रोटी रही है, लेकिन अब वो रोटी एक फैशन का चलन हो गई है। यही सारे मोटे अनाज है, मतलब 7 प्रकार के मोटे अनाज हम देख पाते हैं अभी।
0: जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा और बहुत अच्छे से आपने स्पष्ट किया। बात हम करते हैं कि वर्तमान में मोटे अनाज अपने किन गुणों के कारण लोकप्रिय हो रहे हैं, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: अब जैसे हमने मोटा अनाज नाम रख दिया उसका, और मोटे अनाज का मतलब जैसे हम अपनी आतड़ी की बात करते हैं, आंत की बात करते हैं, मोटी आंत की, बड़ी आंत की, छोटी आंत की, पाचन तंत्र के हिसाब से।
0: जी जी।
1: तो जब हम पाचन तंत्र में कोई चीज अपने मुंह में चबाते हैं और उसको अपने शरीर के अंदर जब वो चीज जाती है वस्तु, तो उसमें कुछ न कुछ तत्व ऐसा होना चाहिए जो उसको पचाने में सहायक हो सके, उसमें पाचन तंत्र को कहीं ना कहीं कष्ट न हो, ये एक मुख्य उद्देश्य रहता है। इसीलिए मोटा अनाज खाया जाता है। मोटा अनाज मतलब क्या, मोटा अनाज मतलब जिसमें बहुत ज्यादा फाइबर है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा रेशे हैं, जो रेशे आपको पाचन में सहायता करते हैं और वो जल्दी से अनाज आपका पच जाता है। एक तो मोटे अनाज का पहला तत्व यह है कि वो मोटा है, पचने में बहुत सरल है, कोई भी मोटा अनाज अगर आप खाते हैं तो आप जल्दी उसको पचा पाते हैं। दूसरा तत्व है, जब हम इसकी बात करते हैं, मोटे अनाज प्रचलन में आए इसलिए क्योंकि अभी सभी लोग ना फिजिक कॉन्शियस हो गए हैं, अपने शरीर को लेकर के, सुंदरता को लेकर के, वजन को लेकर के, बीमारियों को लेकर के, इस कारण बहुत लोग जागरूक हो गए हैं, और उस जागरूक के चलते मोटे अनाज को प्रचलन में लाया गया। तो मोटा अनाज ग्लूटेन फ्री है, उसका मुख्य तत्व है कि वो ग्लूटेन फ्री है। जब ग्लूटेन फ्री होता है तो वो आपको डायबिटीज और मोटापे जैसी बीमारियों से सीधे सीधे बचा लेता है। इसलिए मोटे अनाज खाए जाते हैं।
0: तो ये तो हमें जानकारी मिली कि जो मोटे अनाज हैं उनमें क्या गुण पाए जाते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि वो सुपाच्य होते हैं।
1: बिल्कुल
0: सोनाली जी, हमारे देश में स्वास्थ्य और पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इस विषय में भी आप जानकारी दें।
1: इसके दो प्रयास हैं। देखिए, सरकार के स्तर पर तो प्रयास जारी हैं। अगर हम कहें कि सरकार कुपोषण हटाने के लिए कुछ नहीं कर रही है तो मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ। जो लोग ये कहते हैं वो दुष्प्रचार कर रहे हैं।
0: जी जी।
1: क्योंकि हम अपने आंगनवाड़ी में देखें, अगर हम आंगनवाड़ी में देखते हैं तो वहां पर भी जो वो दलिया बच्चों को दिया जाता है या खिचड़ी दी जाती है, वो मैंने स्वयं खाई हुई है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं है, क्योंकि वो खिचड़ी और दलिया बहुत अच्छा है और वो बच्चों के लिए उपयोगी है। दूसरी बात, अगर हम सुपाच्य और के सरकारी प्रयासों की बात करें, तो सरकार जो भी धान्य दे रही है, जो भी अनाज वहाँ पर राशन में मिल रहा है लोगों को, वो बहुत अच्छा है, वो किसी भी स्तर पर निम्न स्तरीय नहीं कहा जा सकता है। तो कुपोषण के सरकारी प्रयास तो जारी है। दूसरा, हमें प्रयास करने चाहिए व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, जो हमारी परिवार की इकाई है वहाँ से

0: को शुरुआत करनी पड़ेगी कि माँ अपने बच्चों को जंक फूड से बचाए, उसको ये तले गले बाजार की चीजों से बंद करे और घर में उसको बना करके दे। हमारे घर में दलिया बना करता था, मक्के का दलिया बनता है, राबड़ी जिसको राब कहते हैं, कहीं राबड़ी कहते हैं, कहीं दलिया बनता है, तो मक्के का दलिया भी बनता है और वो छाछ में बहुत अच्छा लगता है अगर बनाया जाए तो।
1: बिल्कुल,
0: तो ये प्रयास तो माँ कर सकती और कोई नहीं कर सकता।
1: सही कहा आपने, और ये कोशिश भी होनी चाहिए जैसा कि आपने कहा कि माँ ही कर सकती है, तो ये जो मोटे अनाज है उन्हें भावी पीढ़ी को उससे उनका परिचय कराना चाहिए और अपने रसोई में उन्हें शामिल करना चाहिए, तभी जाकर जागरूकता आ सकती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि सात प्रकार के जो हैं हम, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, ये सारे जितने भी हमारे तत्व हैं वो बड़े सुंदर हैं देखने में, सबके अलग अलग उपयोगिता है, उसमें सब में अलग अलग तत्व भी हैं और हर मौसम के हिसाब से आप इन मिलेट्स को बदल सकते हैं, मतलब मोटा अनाज हर समय पर आप अलग खा सकते हैं। जैसे आप ठंड में आप बाजरा खाएंगे, गर्मी में आप ज्वार खाएंगे और मक्के को आप पूरे साल भर खा सकते हैं। इन तीनों का दलिया भी खा सकते हैं, इन तीनों का थालपीठ बन सकता है, इन तीनों की रोटी बन सकती है, इन तीनों की मिठाई भी बन सकती है। तो बहुत अलग अलग प्रकार हैं खाने के और ये मैं सिर्फ साधारण तीन चीजों की बात की है। अगर आप रागी को शामिल करते हैं तो रागी में आपको आयरन रिच रागी होता है, क्योंकि रागी में वैसे ही तत्व है लोह, तो वो उसको आपको बच्चों को कहीं ना कहीं एनीमिया हटाने में मदद करता है।
1: बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। एक और प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा है कि कुपोषण उन्मूलन के लिए नई रणनीतियों के विषय में अगर आप जानकारी देंगी तो हमारी सखियों को मार्गदर्शन मिलेगा।
0: देखिए, एक बार एक समय था जब हमारे देश में पोलियो जैसी चीज थी, लेकिन सरकारी प्रयासों से ही पोलियो को हटाया जा चुका है, ये आप देख चुके हैं, दो बूंद जिंदगी की आपने देखी होगी और उससे अब हम स्थिति पर है कि हमारे देश में पोलियो जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि बच्चों में जितने भी टीकाकरण या उन्हें जो भी दिया जाता है वो प्राथमिक स्तर पर दिया जा रहा है। एक उदाहरण देना चाहूंगी, सरकारी केंद्र को देख पाती हूं तो मैंने सरकारी जो अस्पताल है, हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें या जितने भी सरकारी अस्पताल है, वहां पर ये सब सुविधाएं हैं, लोगों को जानकारी नहीं है कि उसको कैसे आप उसका लाभ लें, तो लोगों को जाना पड़ेगा वहां तक, क्योंकि उसके लाभ लेने की चीजें वहां पर आपके पास है। वैसे अगर हम कुपोषण की बात करते हैं तो कुपोषण के लिए बहुत सारे जो तंत्र है वो काम कर रहा है और कुपोषण से आप बच्चों को अपने बचा सकते हैं
1: जी।
0: तो ये तो माँ ही करेगी जो प्राथमिक स्तर पर खाना खिलाती है बच्चे को। इसके लिए अगर सरकारी प्रयास की बात करते हैं तो उन्हें एनीमिया दूर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग दवाइयां दी जाती हैं, वो दवाइयां ली जा सकती हैं और बच्चों को दी जा सकती हैं, पर छोटे बच्चों में तो प्राथमिक स्तर पर ये होता है कि उन्हें खान पान से ही सुधार करना चाहिए, उनको अगर हम दवाई पे ना रखें तो ज्यादा अच्छा है।
1: जी जी, तो क्या इस तरह की कुछ जागरूकता शिविर का भी आयोजन होता है सोनाली जी?
0: हाँ, ये जागरूकता शिविर कुपोषण के ऊपर तो अभी बहुत काम हो रहा है, मतलब देश में कुपोषण को लेकर के हमारा एक विषय है विकास संचार, तो उस विकास संचार के तहत हम बहुत सारे इस प्रकार के शिविर हम भी आयोजित करते हैं। मेडिकल वाले भी खुद भी करते हैं, सरकारी स्तर पर भी करते हैं, महिला एवं बाल कल्याण विभाग जो है वह भी करता है इस तरह के शिविर आयोजन जिसमें कुपोषण और एनीमिया को दूर करने की बात की जा रही है। आमजन की भूमिका यही है कि उनको जानकारियों का स्तर मतलब बढ़ाया जाए कि वो सिर्फ मक्के को मक्के की रोटी की तरह ही लोगों ने सीमित कर दिया या बाजरे को बाजरे की रोटी की तरह सीमित कर दिया। इसके बहुत सारे प्रयोग हो गए। आजकल बहुत सारी महिलाएं जो घरेलू उद्योग में काम करती हैं, हम मेरे पास ही बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, मेरी साथी हैं, जो लोग इन सब मोटे अनाज से बिस्किट बनाती हैं, कुकीज बनाती हैं और बहुत सारे बेकिंग के आइटम्स भी बनाती हैं जो बच्चों को बहुत रोचक लगते हैं, बच्चे क्या बड़े भी खाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम कुपोषण को हटाने के लिए या लोगों को मोटे अनाज को रोचक बनाने के लिए कर रहे हैं, वो प्रयास हमारे जारी है।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी आपसे मिली, आपने समय निकाला और विषय से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सखियों, सोनाली जी की बातों को सुनने के बाद तो भाई यही हम कहेंगे कि हमें मोटे अनाजों से जो है पक्की दोस्ती कर लेना चाहिए और ये हमें कहीं ना कहीं सेहतमंद बनाने में मदद करेंगे। और सुन लेते हैं एक और प्यारा सा मधुर गीत।

0: चली है चोरी हो चोरी खाली पलक पिया मुड़ी ना।
1: सखियों अब मी टाइम में हम बात कर रहे हैं बिहार की पारंपरिक सिक्की कला की, जो कि बेहद लुभावनी है। यह हस्तकला सदियों से यहाँ की महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का आधार रही है। जी हाँ, घास फूस से हस्तनिर्मित एक इको फ्रेंडली कला है ये। इसमें सिक्की एक विशेष प्रकार की सुनहरी घास का उपयोग करके टोकरियाँ, खिलौने, चटाई और धार्मिक कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। ये मिथिला और उत्तर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का बहुत सशक्त और टिकाऊ माध्यम है। ये बिहार की प्राचीन और पारंपरिक लोक कलाओं में से एक है। इस हस्तशिल्प ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान दर्ज की है। प्रक्रिया की बात करें तो सखियों, घास के ऊपरी हिस्से जिसे पटेली कहते हैं, सुखाकर एक दूसरे प्रकार की जो घास होती है उसको अंदर भरकर सिक्की को सुई की मदद से लपेटकर सुंदर आकृतियां बुनी जाती है। सजावटी सामान में इससे फल फूलों की टोकरियां, झूमर, पूजा थाली, गहने और विवाह के उपहार रखने वाले डिब्बे, मोर मौनियां शामिल हैं। इस उत्कृष्ट पारंपरिक कला को बढ़ावा देने के लिए इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग भी प्राप्त हो चुका है। जी हां सखियों, बिहार सरकार के जीविका और उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान ग्रामीण महिला कारों को सशक्त बनाने में सहयोग कर रही हैं। तो बताने का, जानकारी देने का हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है सखियों, कि यदि आप भी किसी हस्तशिल्प में दक्ष हैं तो बस उसे आर्थिक उपार्जन का साधन बना लें। सोच क्या रही हैं, बढ़ाइए कदम आत्मविश्वास के साथ, बस फिर देखिए आप आत्मनिर्भर हो जाएंगी। और चलिए इसी बात पर सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सखियों, गीत सुनकर तो आनंद आ गया। और अब बात करते हैं बेस्ट बिफोर और एक्सपायरी डेट के बीच विशेष अंतर की। जी हाँ सखियों, सामान विशेषकर खाद्य पदार्थों को खरीदने से पूर्व इन दोनों बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पैकेज खाद्य पदार्थों पर लिखी बेस्ट बिफोर उत्पाद की गुणवत्ता को दर्शाता है, जबकि एक्सपायरी डेट उसकी सुरक्षा से जुड़ी होती है। बेस्ट बिफोर की डेट बताती है कि कोई उत्पाद कब तक अपने सबसे अच्छे स्वाद, रंग, सुगंध और पोषण मूल्य को बनाए रखेगा। ये बात अलग है कि बेस्ट बिफोर डेट के बाद भी खाने के लिए सुरक्षित है, लेकिन उनका स्वाद या बनावट थोड़ा कम हो सकता है, जैसे कि बिस्किट का कुरकुरापन। सखियों, एक्सपायरी ये वो अंतिम तिथि है जिसके बाद उत्पाद का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इस तारीख के बाद उत्पाद में बैक्टीरिया या हानिकारक तत्व पनपने का खतरा बढ़ सकता है, जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। जल्दी खराब होने वाली चीज़ों की बात करें तो दूध, दही, पनीर इसमें शामिल है। सखियों, बेस्ट बिफोर तिथि के बाद भी खाना सामान्य दिखता है, सही महक आ रही है और उसे ठीक से स्टोर किया गया था तो आप उसे खा सकती हैं। एक बात और सखियों, एक्सपायरी डेट वाले उत्पादों को बाजार में बेचना कानूनी रूप से अपराध है, जबकि बेस्ट बिफोर की डेट निकलने के बाद भी उचित गुणवत्ता परक उत्पादों को बेचा जा सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। और अब थोड़े से कुछ अच्छे से आपको टिप्स देते हैं, किचन स्टोरेज की बात कर लेते हैं। जी हाँ, हमारे रसोई घर सुव्यवस्थित रहे इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम हर चीज़ के लिए एक निश्चित जगह बनाएं और वर्टिकल स्पेस का पूरा इस्तेमाल करें। किचन में जो भी कंटेनर्स और डब्बे रख रही हैं, आप ध्यान रखें कि वे पारदर्शी हों, साफ़ हों, ताकि डिब्बा खोले बिना ही अंदर का सामान दिख जाए। इसके साथ ही आप स्टेकेबल डिब्बे खरीदें जो एक के ऊपर एक आसानी से रखे जा सके। इससे आपकी शेल्फ और फ्रिज में काफ़ी जगह बचती है। मसालों को नमी से बचाने के लिए ढक्कन बंद करने से पहले एल्यूमिनियम फॉयल या बटर पेपर की लेयर लगाएं, फिर ढक्कन कसें। बस देखिए आपका जो किचन है वो कितना सुव्यवस्थित रहेगा। और अगर थोड़ा सा भी अव्यवस्थित है तो गीत सुनते सुनते उसे आप सुव्यवस्थित कर लें।

सखियों, मन तो कर रहा है आपसे ढेर सारी बातें की जाएं, लेकिन समय का तकाजा है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। अब दुर्गेश नंदनी को दें अनुमति। नमस्कार।

ये गीत अभी आपने सुना बद्री प्रसाद खरे और उनकी साथियों की आवाज़ में। अब आपको सुनाते हैं अगला गीत पंचम सिंह सेंगर

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी। आइए आपको सुनवाते हैं रविंद्र दीक्षित की आवाज में ये भजन।

रविंद्र दीक्षित की आवाज़ में सुने आपने ये भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान था।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: अरे रेवती ताई, या रविवारी आपल्याला उज्जैनला चलायचं आहे, तयार रहा बरं का?
4: मी नाही येऊ शकणार।
3: अरे आपल्याला सकाळी चलायचं आहे, काय त्रास आहे त्यात?
4: रविवारी सकाळी रेडिओवर मराठी कार्यक्रम येतो 10:30 वाजता, तो मी नक्की ऐकते, तो कधी सोडत नाही।
3: असं का? अरे पण आता आपल्याकडे मोबाईल आहे आणि रेडिओ आता मोबाईलवर सुद्धा ऐकता येतो।
4: अरे वा, हे तर खूपच छान, मग मी नक्की येणार।
3: तर मोबाईलवर ऍप न्यूज ऑन AIR डाउनलोड करा आणि त्यावर ऐका
4: मराठी कार्यक्रम।
3: तर नक्की ऐका प्रत्येक रविवारी सकाळी 10:30 वाजता
4: मराठी कार्यक्रम।
5: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
6: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान
7: आकाशवाणी इंदौर।
6: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
4: चलो दीदी, झूला झूलते हैं।
8: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
4: और झूलते झूलते सुनते हैं
6: मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

वाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है वो कौन थी।

लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम वो कौन थी, संगीत दिया मदन मोहन ने और शब्दों में पिरोया था राजा मेहंदी अली खान ने। और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ही।

0: गले लग जा फिल्म से सुना भी आपने गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत दिया था आर डी बर्मन ने और शब्दों में पिरोया था साहिल लुधियानवी ने। और इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास एक मजबूत, स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने सभी से जागरूकता फैलाने, नशा मुक्ति में लगे लोगों का समर्थन करने और युवाओं को नशे की बजाय आशा, स्वास्थ्य और उद्देश्य को चुनने के लिए प्रेरित करने हेतु एकजुट होने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों और युवाओं तथा देश के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस युद्ध को जीतने के लिए एक मंच पर एकजुट होने का आग्रह किया।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। हालांकि जैव दवाइयों और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाइयों के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। सतना जिले में मुहर्रम का पर्व परम्परागत तरीके से मनाया जा रहा है। आगरमालवा जिले में ताजियों के जुलूस को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए। जबलपुर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में विशेष इबादत कर देश में अमन चैन, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। बात मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 2 दिनों में इसके भोपाल और उज्जैन संभाग तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून और मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को खेती किसानी से जुड़ी आधुनिक और वैज्ञानिक जानकारियां दी जा रही हैं। पन्ना जिले के बीहरपुरवा गांव में कुआं खोदने के दौरान मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत के बाद विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने शोकाकुल परिवारों से मुलाकात की और झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में आज जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की प्रबंधन समिति की बैठक में नोडल अधिकारी ने दिव्यांगजनों के कल्याण की गतिविधियों की जानकारी दी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आप सुनेंगे कुछ ही देर में दोपहर समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए, इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT के सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
3: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
4: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
5: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
5: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है।

0: ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15-वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार साथियों, आपके साथ हूँ कार्यक्रम में मैं अनुजा। तो इस कार्यक्रम में आपके द्वारा भेजे गए जो बड़े ही प्यार से जो आप हमें पत्र लिखते हैं वो पत्र हम आपको यहाँ पढ़ के सुनाएंगे और आपके पसंद के गीत आप तक पहुँचाएंगे। तो चलिए बिना देर करे हम आपको सुनाते हैं पहला पत्र। हमें भेजा है जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास खेलई जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार ने, साथ ही में श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरथ रेखवार, हल्ले ऋषि रेखवार ने बंडा से। और उन वो चाहते हैं, उनकी फरमाइश है कि हम उन्हें दीवार फिल्म का गीत सुनाएं। तो अब उन्होंने फरमाइश की है और हम उसे पूरा ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए आपकी फरमाइश कार्यक्रम का पहला गीत हम आप तक पहुँचा रहे हैं।
1: दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

अभी आपने सुना दीवार फिल्म से गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। साहिर के बोल थे और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने, और इस गाने की फरमाइश करी थी बंडा से लक्ष्मण रैकवार और उनके परिवार ने। तो देखिए, हमने आपकी फरमाइश पूरी करी, अब चलते हैं अगली फरमाइश की ओर। ये पत्र हमें भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने, और वो सुनना चाहते हैं याराना फिल्म से गीत किशोर कुमार की आवाज़, और गाने के बोल हैं छू कर मेरे मन को। जी, आपका पत्र भी हमें इसी तरह से हमारे मन को छूते हुए जाता है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में सुना अभी आपने गीत फिल्म याराना से, बोल थे अनजान के, और म्यूज़िक दिया था, संगीत दिया था राजेश रोशन ने, और आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। तो आइए देखते हैं अगला पत्र हमें किसने और कहां से भेजा है। अगला पत्र हमें भेजा है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से, राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने, और वो सुनना चाहते हैं फिल्म धर्मवीर से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ओ मेरी महबूबा गीत। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं उनकी पसंद का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना भी आपने गीत फिल्म धर्मवीर से। आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और ये फरमाइश की थी डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से गजबीय परिवार ने। तो चलिए अब आपको बताते हैं, अगला पत्र हमारे पास आया है नेपाल पैलेस सागर से। तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने हमें ये पत्र भेजा है और वो चाहते हैं कि हम उन्हें अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से गीत सुनाएं, जिसके गायक हैं नीरज श्रीधर, सुजैन डी मेलो और बोल हैं प्रेम की नैया। तो आइए अब आपको सुनाते हैं उनकी पसंद का ये गीत।

नीरज श्रीधर की आवाज़ में सुना आपने ये गीत, नीरज श्रीधर और सुजन डीमेलो की आवाज़, और बोल थे इरशाद कामिल के, संगीत दिया था प्रीतम ने और फिल्म का नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। और ये गीत फरमाइश की थी नेपाल पैलेस सागर से। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम में हमारे पास अगला पत्र किसका आया है। हमें अगला पत्र भेजा है, उन्होंने नमस्कार लिखा है, तो हम आपको यहाँ से नमस्कार करते हैं। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य और पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित और प्रतीक आर्य ने, उन्होंने नीचे लिखा है, हमारी फरमाइश किसी भी फिल्म के साथ पूरी करने का कष्ट करें। अरे कष्ट नहीं, हमें बहुत सुख महसूस होता है, खुशी होती है हमारे श्रोताओं के लिए उनकी पसंद के गीत सुनाने में। तो चलिए बिना देर करे आपको गीत सुनाते हैं हमारी पसंद का, हमें उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा।

उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में सुना अभी आपने गीत फिल्म खाकी से, समीर की बोल थे और संगीत दिया था राम संपत ने। और इसी के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों और युवाओं तथा देश के भविष्य के लिए खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता, वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ, आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी रचनाओं ने पीढ़ियों से भारतीयों में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना को जागृत किया है। भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से होगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए सबसे पहले आज की सांधिकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण आपको दे दें। सबसे पहले आपको आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं। युवा साथी सुन सकते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी ठीक शाम 5:02 पर। वहीं शाम 6 बजे सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। सुर्खियों में कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 8 बजे, रात 8 बजे। खेल जगत कार्यक्रम सुनेंगे आप ठीक रात में 9:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे बेस्ट लिफ्टर ऑफ मध्य प्रदेश से सम्मानित भोपाल के पावर लिफ्टर अभिषेक बघेल से बातचीत। रात 10 बजे सुनिएगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा कलाकार राजेंद्र व्यास का वायलिन वादन, राग होगा पूरिया धनाश्री। आकाशवाणी भोपाल से सुन सकते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा ठीक रात में शाम 7:21 पर। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। शाम के 5 बज रहे हैं, आरंभ हो गई है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सांध्यकालीन सभा सुनने वाले सभी श्रोताओं का इस सभा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए श्रोताओं, शुरुआत करते हैं उस कार्यक्रम से जो है युवा दिलों की धड़कन। जी हाँ, कार्यक्रम का नाम है युववाणी। तो आइए देर नहीं करते हैं, आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, शाम के 5 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवानी। तो दोस्तों, आज हम आपसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त माधवी।
1: मैं हूं आपका साथी राज। स्वागत करते हैं आप सभी का आप सभी के पसंदीदा युवा प्रोग्राम युवावाणी में।

0: दोस्तों, आप सभी को पता है कि मौसम बिल्कुल सुहावना हो चुका है और सब जगह बारिश की बूंदें धीरे धीरे धरती पर पड़ने लगी हैं। सौंधी सौंधी खुशबू हमारे जुबान पर, हमारे दिमाग पर चढ़ने लगी हैं। उसी के साथ साथ सौंधा सौंधा मीठा मीठा व्यंजन, चाहे वो चाय पकौड़ा हो, चाहे चाय हो, कुछ भी हो, हम सभी की जुबान पर याद दिलाने लग गया है कि अब भैया जो है बारिश का सीजन आ चुका है, तो अच्छा अच्छा खान पान, घूमने की जगह स्थान और उसी के साथ पर्यावरण का ख्याल रखना और पर्यटन स्थल पर जाने के लिए उत्साह बनाए रखना, पर सबसे बड़ी बात उन सभी को जिम्मेदारी से पालन करना और सुरक्षित स्थान पर अपना और अपनों का ख्याल
1: बस
0: रखना।
1: राज बस। तो दोस्तों, ये सारी बातें हम आपसे आज करने वाले हैं इस कार्यक्रम में, और इसके अलावा और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन क्यों ना राज, शुरुआत करने से पहले हम हमारे श्रोताओं से आज के दोनों प्रश्न पूछ लें।
0: बिल्कुल। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है,
1: और आज का जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो दोस्तों, इन दोनों सवालों के जवाब आप हमारे कार्यक्रम के अंत तक ढूंढ के रखिएगा और हम आपसे साझा करेंगे कि इनके उत्तर क्या हैं। तब तक के लिए बने रहिए और सुनते रहिए ये कार्यक्रम। अभी शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम के पहले गीत के साथ।

0: तो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से। बारिश की ये जो पहली फुहारों के साथ इंदौर में ऐसा लग रहा है जैसे किसी कलाकार ने नए रंगों से उसको सजा कर रख दिया हो। हर तरफ हरियाली, ठंडी हवाएं और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू है। सच कहूँ तो मानसून का मौसम शहर को एक अलग ही पहचान दे देता है।
1: ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही माधवी। और अगर बात आकाशवाणी इंदौर परिसर की हो तो यहाँ का नज़ारा तो इन दिनों देखते ही बनता है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चमकती बारिश की बूंदें, हरे भरे लॉन, पत्तों की टपकती पानी की बूंदें और चहचहाते पक्षियों की आवाज़, ऐसा लगता है जिसे प्रकृति खुद कोई मधुर सा गीत सुना रही हो।
0: एकदम सही कह रहे हो। सुबह सुबह जब हल्की सी धुंध और ठंडी हवा पूरे परिसर में फैल जाती है तब आकाशवाणी का हर कोना किसी खूबसूरत पोस्ट कार्ड की तरह दिखाई देता है। बारिश के बाद पेड़ों की पत्तियां इतनी चमकने लगती है ऐसा लगता है किसी ने उनको धोकर नया सा कर दिया हो।
1: यही तो है प्रकृति का जादू। और इंदौर का मौसम भी इन दिनों लोगों को खूब राहत दे रहा है। बादलों की आवाजाही बनी हुई है, बीच बीच में हल्की सी और मध्यम बारिश हो रही है और तापमान में गर्मियों की तुलना में काफ़ी सुहावना सा मौसम भी हो चला है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी रुक रुक कर बारिश की संभावना बनी रहेगी।
0: वैसे राज, मैंने देखा है कि मानसून आते ही इंदौरियों की दिनचर्या भी एकदम बदल सी जाती है। किसी को गरम गरम पोहा और जलेबी चाहिए, साथ में अदरक वाली चाहिए चाय भी चाहिए। साथ में अगर देखा जाए तो जो पोहा जलेबी नहीं खाते वैसे तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे, पर भुट्टे पर नींबू मसाला लगाकर खाना लोगों को बहुत पसंद है। सड़क के किनारे गरम गरम पकौड़ों की खुशबू तो हर किसी को अपनी ओर खींच ही लेती है।
1: ये बात तो
0: और इंदौरी तो है ही चटोरे।
1: हाँ, खैर इंदौर की बात तो हम करते ही, पोहा जलेबी की जो कि एक नेशनल फूड बन चुका है, उसी के साथ साथ हर एक जिले में हर एक राज्य में मौसम के लिए अपना एक अलग ही व्यंजन होता है। अगर हम गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या फिर यूपी की बात करें, हर प्रदेश में अपना अलग ही एक मतलब व्यंजन होता है और वो बारिश के सीजन में उभर के आ जाता है और लोगों की ज़ुबान पर होता है। तो दोस्तों शाम होते ही अपने लोग, इंदौर के लोग, कई सारे अलग अलग शहरों के लोग शहरों की सड़कों पर निकल पड़ते हैं, हल्की फुहारों में ड्राइव का मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं। वो कहीं की छोटी सी चाय की टपरी मिल जाती है तो हंसी मजाक चलते चलते यूं ही कट जाता है। वो कहीं लोग बारिश को निहारते हैं तो कुछ पल सुकून से बिताने के लिए ब्रिज पर खड़े हो जाते हैं या फिर गाड़ियाँ चलाते हैं। ये भी हमने हमारे इंदौर शहर में देखा हुआ है।
0: वैसे देखा जाए तो मानसून छोटी छोटी खुशियों का मौसम है राज। खिड़की पर बैठकर बारिश देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सुकून के पल होते हैं वो। हाथ में गर्म चाय का कप होना, पसंदीदा गीत सुनना, बच्चों को कागज़ की नाव बनाते हुए पानी में छोड़ते हुए देखना, भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू को महसूस करना, ये पल सुनने में छोटे छोटे लगते हैं लेकिन पूरे साल याद रह जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और अगर बात घूमने की करें तो इंदौर के आसपास भी मौसम में ऐसे कई सारे स्थान हैं जो खूबसूरत से हो जाते हैं बारिश में, जैसे पाताल पानी जलप्रपात, तिनचा फॉल, जाना पांव की पहाड़ियाँ, चोरल महू, गुलावट लोटस वैली और राला मंडल अभ्यारण्य मानसून में प्रकृति का अद्भुत रूप दिखाते हैं।
0: इसमें एक और है, जाम गेट भी आजकल इंदौर ही लोग बहुत जाते हैं।
1: उसे हम कैसे भूल सकते हैं, जाम गेट भी, मतलब वहां पर सेल्फीज लेना, फोटोज लेना। पर इन सभी के साथ एक मतलब ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि हम जितने भी पर्यटन स्थल पर जाते हैं बारिश में तो हम फैमिली के साथ जाएं और पानी वाले स्थान पर जाने से थोड़ा बचें। मतलब यही हम लोग हमारे श्रोताओं को हिदायत देंगे क्योंकि कभी फिसलन होती है, कभी उतार चढ़ाव होता है, तो अपनी सुरक्षा का कड़ा इंतजाम करके खुद ब खुद रखें।
0: वैसे देखा जाए तो शहर के भीतर भी अपने रंग देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। रीजनल पार्क जा सकते हैं, बिलावली तालाब के आसपास बहुत शांति रहती है, वहाँ जा सकते हैं, कैफ़ेज़ की खिड़कियों के पास बैठकर बारिश का आनंद ले सकते हैं क्योंकि आजकल कैफ़ेज़ भी काफ़ी एस्थेटिक बन गए हैं इंदौर में।
1: हाँ,
0: तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस होता है
1: लोगों के लिए, बढ़िया है। खैर मुझे लगता है कि माधवी, जो बारिश का एक मौसम होता है तो कभी देखो पहले गर्मी होती है, फिर सर्दियाँ होती हैं, फिर बारिश होती है, तो हर एक मौसम का कुछ समय बना हुआ है। तो हम सोचते हैं

0: हमारे जीवन में भी कि यार ये दुख का समय कब टलेगा, कब जाने वाला है, तो हमें मौसम से सीखना चाहिए कि बारिश कुछ दिनों की है, फिर ठंड कुछ दिनों की है, फिर जो धूप से तपने वाली गर्मी है वो भी कुछ समय के लिए ही है। तो समय जो होता है बिल्कुल कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो हमारा जीवन का समय भी और मौसम का समय भी बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट जैसा बना होता है, ताकि समय के साथ हर चीज़ें बदलती हैं, तो मौसम भी वैसी खुशहाली लेकर आती है हमारे जीवन में।
1: काफ़ी डीप बात कह दी है तुमने, है ना। कभी कभी खुशी के लिए बस इतना ही काफ़ी होता है कि छोटी सी कोई मीटिंग हो जाए किसी के साथ, आप बाहर घूमने निकल जाएं, आप मौसम का आनंद ले लें, और शायद ऐसे ही समय कटता है, समय बीतता है और हम आगे बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल ठीक। तो मुझे लगता है कि साथियों, आइए इस मौसम का स्वागत खुले दिल से करें और प्रकृति के इस खूबसूरत सौगात का आनंद लें, लेकिन बारिश में बाहर निकलते समय सावधानी भी जरूरी रखें, क्योंकि मौसम की जानकारी लेते रहें और सुरक्षित सफर आसान बनाते रहें।
1: बिल्कुल, तो मुस्कुराते रहिए, मौसम का आनंद लीजिए और इंदौर की इस बरसात की खूबसूरती को दिल भर के महसूस कीजिए, और साथ ही बने रहिए, सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का।

0: दोस्तों, आज 26 जून को हम याद कर रहे हैं भारत के महान साहित्यकार, पत्रकार, चिंतक और अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद चट्टोपाध्याय को। उनकी जयंती पर उन्हें शत शत नमन है।
1: तो दोस्तों, कुछ लोग केवल किताबें लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे साहित्य रच देते हैं जो पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ऐसे ही महान साहित्यकार थे, जिनकी लेखनी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में नई चेतना, नया उत्साह भर दिया था।
0: साथियों, बंकिम चंद चट्टोपाध्याय का जन्म 26 जून 1838 को पश्चिम बंगाल के

0: नैहाटी के कांठल पांडा में हुआ था। वे भारत के पहले भारतीय सिविल सेवकों में से एक थे और लंबे समय तक ब्रिटिश शासन में डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत रहे, लेकिन उनकी असली पहचान उनके लेख नहीं बनी।
1: उन्होंने बंगाली साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। उनके कई सारे प्रसिद्ध उपन्यास हैं जो कि आज तक बंगाल के जो साहित्य है, बंगाल की जो रिलीजियस, ट्रेडिशनल और क्रिएटिव फील्ड है, उसमें आज तक काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि उनके लिखे गए उपन्यासों पे कई सारे स्किट्स जिसको कहते हैं, और पब्लिक स्पीकिंग होती है, और सब उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं।
0: माधवी उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, कृष्ण कांतेर विल, देवी चौधरानी और आनंदमठ प्रमुख हैं। दोस्तों, साल 1882 में प्रकाशित उनके उपन्यास आनंदमठ में शामिल गीत वंदे मातरम ने पूरे देश में स्वतंत्रता की अलख जगा दी थी। ये गीत केवल शब्दों का समूह कतई नहीं था, बल्कि भारत माता के प्रति प्रेम, सम्मान और आदर और समर्पण का प्रतीक बन गया था।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब भी देशभक्त इस गीत का उद्घोष करते थे, उनके भीतर देश के लिए कुछ कर गुजरने का नया जोश पैदा हो जाता था। आज भी वंदे मातरम सुनते ही हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। इस गीत की पहली दो पंक्तियों को भारत के राष्ट्रीय गीत का सम्मान तक प्राप्त हुआ है।
0: बिल्कुल साथियों, बंकिम चंद चट्टोपाध्याय का जीवन हमें सिखाता है कि कलम की ताकत किसी भी हथियार से कम नहीं होती। एक लेखक अपने विचारों से समाज की सोच बदल सकता है और अपने राष्ट्र के भविष्य को नई दिशा भी दे सकता है।
1: आज के इस डिजिटल युग में, जब सोशल मीडिया का और त्वरित जानकारी का दौर है, तब युवाओं के लिए ये और भी आवश्यक हो जाता है कि वो ऐसे महान साहित्यकारों को पढ़ें, उनकी सोच को समझें और अपने जीवन में राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य निष्ठा और सकारात्मक विचारों को अपना कर रखें।
0: बिल्कुल ठीक। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की अगले गीत की ओर।

0: तो दोस्तों, बारिश अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आती है। खुशहाली लाती है, प्रेम लाती है, नई चीज़ों की शुरुआत लाती है, लेकिन उसी के साथ साथ कीचड़, गंदगी, कीड़े मकोड़े, कीटाणु, ये सब भी लेके आती है। तो इस समय पे बहुत ज़रूरी है कि हम साफ़ सफाई और स्वच्छता रखें। तो राज, तुमने कभी सोचा है कि स्वच्छता और साफ़ सफाई हमारे व्यक्तित्व को कितना प्रभावित करती है?
1: हाँ, बिल्कुल सोचा है माधवी। असल में स्वच्छता सिर्फ स्वास्थ्य से नहीं बल्कि हमारी सोच, आदतें और आत्मविश्वास से जुड़ी हुई होती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। कहाँ भी, जहाँ भी जाएं, ये कहा जाता है कि स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।
1: और यही कारण है साथियों कि व्यक्तिगत स्वच्छता, जैसे रोज नहाना, साफ कपड़े पहनना, हाथ धोना और दांत साफ रखना, हमें अनुशासित और संयमता से एक जीवन जीना सिखाता है।
0: और जब इंसान साफ सुथरा होता है तो वो सामने वाले पर भी एक पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक प्रभाव डाल पाता है।
1: हाँ, और ये हमारे व्यक्तित्व की पहली पहचान बन जाती है साथियों। इंटरव्यू हो या स्कूल हो या फिर कॉलेज, स्वच्छता आत्मविश्वास भी बढ़ाती है।
0: स्वच्छता यानी हाइजीन का सीधा संबंध स्वास्थ्य से होता है यानी हेल्थ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सही स्वच्छता अपनाने से कई सका जो ऐसी बीमारियां होती हैं जो छूने से फैलती हैं, उन्हें रोका जा सकता है।
1: हाँ, और अभी बारिश में तो संक्रमण वाली टाइप से बीमारियां कहीं ज़्यादा फैल जाती हैं, तो उनका भी विशेष तौर पर आप साथियों ध्यान रखिए, क्योंकि हाथ धोने की आदत, साफ पानी का उपयोग और शौचालय की स्वच्छता से डायरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है इन सभी से।
0: अच्छा, इसी के साथ साथ अपने पर्सनल हाइजीन के साथ हमें सामाजिक स्वच्छता को भी उतना ही अहमियत देना चाहिए, उसे भी उतना ही जरूरी समझना चाहिए। आसपास की जगहों की सफाई रखें, कचरा सही जगह डालें, सार्वजनिक स्थान यानी कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक वॉशरूम्स हैं, हर जगह हाइजीन का ध्यान रखा जाए।
1: दोस्तों, यही आदतें जिम्मेदार नागरिक हमें बनाती हैं। स्वच्छ भारत अभियान ने इस सोच को और भी आगे बढ़ाया है।
0: मुझे ऐसा लगता है राज कि स्वच्छता यानी जब हम हाइजीनिक होते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मसम्मान की जो होती है, यानी कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट करना जानते हैं, हम खुद को संभालना जानते हैं, हम में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जब हम खुद को साफ रखते हैं तो खुद को महत्व देना भी सीख जाते हैं।
1: बिल्कुल सही। और यही आदतें धीरे धीरे समय प्रबंधन, अनुशासन और सकारात्मक सोच में बदल जाती हैं, जो व्यक्तित्व विकास के अहम

0: है।
1: और बच्चों में अगर बचपन से ही स्वच्छता की आदत डाली जाए तो वो ज़्यादा आत्मनिर्भर यानी कि कॉन्फिडेंट, साथ ही सेल्फ सस्टेन्ड और जिम्मेदार बनते हैं।
0: क्योंकि स्वच्छता उन्हें ये सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं।
1: तो ये कहा जा सकता है कि स्वच्छता सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि चरित्र को भी निखारती है।
0: बिल्कुल सही, साफ वातावरण, साफ शरीर और साफ सोच यही मजबूत व्यक्तित्व की एक निशानी होती है।
1: और जब व्यक्तित्व मजबूत होगा तो समाज भी स्वस्थ बनता रहेगा।
0: बिल्कुल ठीक। तो स्वच्छता अपनाना खुद से शुरुआत करने का एक सबसे बड़ा तरीका है और उपाय भी है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी हमारी बातों से बिल्कुल जागरूक हो गए होंगे, क्योंकि बारिश आती है तो अपने साथ साथ बीमारियां भी लेकर आती है और गंदगी भी हूबहू रोड पर हो जाती है। तो अपने घर का, अपने आसपास, अपने आंगन का विशेष तौर पर ध्यान रखें इस बारिश में।

0: अच्छा अब राज, हम इतनी देर से बारिश की बातें कर रहे हैं, बारिश आ चुकी है, अब ऐसा लग रहा है फाइनली कि जिस हिसाब से झमाझम बारिश इंदौर में हो रही है, ये सीज़न फाइनली आ गया है, गर्मी से राहत मिल चुकी है। तो मुझे ये बताओ कि हम बारिश प्रकृति का सबसे खूबसूरत उपहार तो है, लेकिन मॉनसून सिर्फ मॉनसून के लिए या मौसम के लिए, नई ऊर्जा के एहसास के लिए है, या कुछ और भी कर सकते हैं हम, जैसे कोई ऐसी खास एक्टिविटीज़, अगर बात करी जाए तो बागबानी, ये पौधों के लिए भी एक वरदान से कम नहीं है ये सीज़न, है ना?
1: हाँ
0: तो
1: बिल्कुल सही कहा।
0: गार्डनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉनसून में।
1: सही कहा मालती। बागवानी के शौकीनों के लिए मानसून सबसे अनुकूल समय माना जाता है साथियों। इस मौसम में मिट्टी के में प्राकृतिक नमी बनी रहती है और जिससे पौधों की जड़ों का विकास बेहतर बनता जाता है और नए पौधे आसानी से पनपने भी लगते हैं।
0: एकदम सही कहा तुमने। तुलसी, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, एलोवेरा, मनी प्लांट, पुदीना, धनिया, पालक जैसे कई पौधे इस मौसम में बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं। अगर कोई घर की बालकनी या छत पर छोटा सा किचन गार्डन बनाना चाहता है ना, तो ये समय सबसे सही रहेगा।
1: लेकिन एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी है साथियों, कि बारिश में गमलों में पानी जमा कतई ना होने दें, और क्योंकि ज्यादा नमी से पौधों की जड़ें सड़ जाती हैं, और इसलिए गमलों की जल में निकासी या फिर ड्रेनेज जैसी समस्या भी नहीं सी खड़ी हो जाती है उनमें।
0: बिल्कुल। और समय समय पर सूखी पत्तियां हटाना, पौधों की हल्की हल्की छटाई कर देना, कीटनाशक को लगाना ताकि जो कीट पतंग हैं जो पौधों को खराब कर सकते हैं वो दूर रहें, इससे हमारे लगाए हुए पौधे स्वस्थ रहते हैं।
1: सही कहा माधवी। वैसे माधवी, मानसून में गार्डनिंग के अलावा और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो हम सब कर सकते हैं?
0: बहुत सारी, बारिश के बाद किसी पार्क, नेचुरल वॉक पर, नेचुरल जो पार्क्स होते हैं, जो नेचुरल ट्रेल्स होते हैं, उन पर मॉर्निंग वॉक की जा सकती है। पक्षियों को देखना यानी कि बर्ड वॉचिंग, ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी मानी जाती है बारिश में, क्योंकि काफ़ी बर्ड्स हाइबरनेशन में आते हैं और कई नई नई प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलते हैं। बारिश के बाद की जो फोटोग्राफी है वो भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि इसके बाद नेचर रिजुविनेट होता है, फोटोग्राफर्स के लिए बेस्ट सीजन होता है, वो सबसे अच्छी पिक्चर्स खींच पाते हैं। परिवार के साथ किसी झील पर जाना, हरियाली से भरे स्थानों पर छोटी छोटी सैर करना, ट्रैकिंग करना, ये सब काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को के साथ इनको भी काउंट किया जा सकता है जो
1: हाँ,
0: आपको सुकून दे बारिश में।
1: और साथियों अगर बाहर जाना संभव ना हो तो घर के अंदर भी बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे किताब पढ़ना, संगीत सुनना, पेंटिंग करना, डायरी लिखना, या फिर खिड़की के पास बैठकर गर्मा गर्म चाय के साथ बारिश का लुत्फ़ उड़ाना।
0: बिल्कुल। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार ये भी बताया गया है कि प्रकृति के बीच समय बिताने से तनाव कम होता है, और हम जानते हैं कि आज की जो दिनचर्या है उसमें हर एक व्यक्ति को, छोटे से बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग को, स्ट्रेस तो ज़रूर है। तो मन शांत रखने के लिए प्रोटेक्टिविटी और अपने आप को प्रोटेक्ट करके अपने आप को प्रोडक्टिव बना के आगे चलना, ये सब चीज़ें आप बारिश में प्रकृति के बीच में कर सकते हो। इससे आपका जो रचनात्मक सोच है इसमें, जबकि क्रिएटिव माइंडसेट में काफ़ी सुधार आता है, और शायद यही कारण है कि बारिश का मौसम लोगों को नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करता है।
1: हाँ उस साथियों, हमने जैसे पहले भी आपको कहा था गाने के पहले कि आप अपने आसपास, अपने घर में सब जगह स्वच्छता बनाए रखें, ताकि उससे आप भी स्वस्थ रहें और आपका परिवारजन भी स्वस्थ रहें।
0: तो अगर हम प्रकृति का आनंद लें और उसके साथ जिम्मेदारियां भी निभाएं, तो मॉनसून का हर दिन यादगार बन सकता है।
1: बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों, इस मानसून में सिर्फ बारिश का इंतजार मत कीजिए, बल्कि एक पौधा लगाइए, हरियाली बढ़ाइए, प्रकृति के साथ समय बिताइए और जीवन में नई रोशनी लाइए।

0: दोस्तों, हर साल 26 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य केवल नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना नहीं है, बल्कि युवाओं को एक स्वस्थ, सकारात्मक और नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है।
1: युवावस्था का जो जीवन है वो सबसे खूबसूरत और सबसे महत्वपूर्ण दौर होता है। यही वो समय है जब आप अपने सपनों को आकार देते हैं, अपनी करियर की नींव रखते हैं और समाज में अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज कई युवा जिज्ञासा, दोस्तों के दबाव, तनाव, अकेलेपन या दिखावे की जो संस्कृति है, इसके कारण नशे की गिरफ्त में आ गए हैं।
0: शुरुआत अक्सर छोटी छोटी बातों से हो जाती है, जैसे कोई कहता है कि बस एक बार ट्राई कर लो, इससे तनाव कम हो जाएगा। सब कहते हैं तुम भी कर लो, लेकिन यही एक बार धीरे धीरे हमारे जीवन की लत और आदत बन जाती है।
1: नशा केवल शरीर को नहीं बल्कि इंसान को, उसके सपनों को, रिश्तों को, भविष्य को, इन सब को खोखला कर देता है। और इसीलिए लोगों का, जो बच्चों की बात कर रहे हैं, अगर हम मादक की बात करें तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, परिवार से दूरी बन जाती है, आर्थिक परेशानियां शुरू हो जाती हैं और कई बार व्यक्ति अपराध की राह पर पहुंच जाता है। तो ऐसे समय में जागरूकता बनाए रखें। अगर हम नशे के नुकसान की सही जानकारी रखेंगे तो हम इनसे दूर रहने के बेहतर निर्णय को ले सकेंगे।
0: बिल्कुल ठीक।
1: अच्छी संगति बहुत जरूरी है। ये कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत, तो ऐसे दोस्तों का साथ चुनें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ना कि गलत रास्ते पे ले जाएं, और अपना खूब खूब ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम और
0: उम्मीद है कि आप सभी को आज का युवावाणी कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने कई सारी पर्यावरण की बात की, बारिश की बात की, मौसम की बात की, साथ ही साथ जागरूकता फैलाने वाली भी बात की, जो कि युवाओं के लिए और आज के जेंजी वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और महत्वपूर्ण भी है।
1: तो राज, अब समय हो गया है सवालों के उत्तरों का, तो पूछिए क्या सवाल था आपका।
0: दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न था कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो उसका सही उत्तर है ग्रीनलैंड।
1: और जो दूसरा सवाल था वो ये पूछता है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो इसका जवाब है तिब्बत। तो मुझे उम्मीद है कि आपने दोनों प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढ के रखे होंगे। इस बात की भी मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त माधवी,
0: और मैं आपका साथी राज।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अभी हम आपको सुनवा रहे थे कार्यक्रम युववाणी। शाम के 5:45 हो गए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं फिजा फिल्म का ये गीत।

0: गुलाम मुस्तफ़ा और एआर रहमान के साथ साथियों की आवाज़ें अभी आप सुन रहे थे। गीत को हमने लिया था फिज़ा फिल्म से। इस गीत को लिखा था शौकत अली ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश।
1: तू बुलाता है तेरे दर पर सर झुकाए।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे बजरंगी भाईजान फिल्म का गीत, आवाजें इमरान अजीज और साथियों की थी। इस गीत को लिखा था कौसर मुनीर ने और संगीत था प्रीतम का। इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: सबदंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम

0: भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहां पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहां के बहुत से जीवों की आंखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहां चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहां उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोबा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था। कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का

0: जन्म, महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
1: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
0: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
1: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
2: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं नहीं,
2: देखिए आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए।

0: डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: अभी मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ।1985 में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई, जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।

0: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
1: प्रोफेसर डेनिस
2: जी,
1: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
2: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
1: ओह।
2: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
1: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
2: जी।
1: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
2: तो लीजिए सुनिए।
3: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
0: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
4: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
0: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
4: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
0: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
4: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं, जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
0: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
7: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
4: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
8: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।

0: 14 मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
1: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
3: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली।
4: हाँ।
3: गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
5: आग का गोला?
3: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
4: सूरज।
3: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
6: बहुत आसान पूछते हो।
3: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
6: अगली बार में बहुत मुश्किल।
3: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
4: हाँ।
3: मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
6: हाँ। मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
3: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
7: वो तारा होता है।
3: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
8: वो रात और दिन भी बनाता है।
3: एकदम सही एकदम सही।
7: वो हमें धूप भी देता है।
3: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
6: धूप से हाँ। अच्छी बात भी होती है।
3: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
6: विटामिन डी।
3: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे।
6: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
3: हाँ हाँ बिल्कुल,
6: पेड़ों को खाना भी देता है।
3: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं
6: देखे। धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
3: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
6: हाँ
8: जब तो सूरज सुबह पूर्व में
3: आता है। हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
6: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
3: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
6: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
7: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
3: ना।
7: गर्मी में तो मुझे

0: बहुत गंदा लगता है।
1: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता है।
2: हाँ।
1: तो बच्चों, सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना।
0: वो बहुत बड़ा भी होता है,
1: बहुत बड़ा होता है,
0: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
1: हम क्योंकि कई
0: दूर होता है इसलिए
1: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
0: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
1: हाँ,
0: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
1: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
3: सर्दी।
1: ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
0: और सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
1: हाँ, शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
0: नहीं
1: है। सूरज आग का गोला, लेकिन
3: सूरज आग का गोला लेकिन
1: फिर भी जीवन दाता है।
3: फिर भी जीवन दाता है।
1: धरती काटे चक्कर इसके।
3: धरती काटे चक्कर इसके।
1: लगे ये चलता जाता है।
3: लगे ये चलता जाता है।
1: सर्दी गर्मी बनते इससे।
3: सर्दी गर्मी बनते इससे।
1: ये दिन रात बनाता है।
3: ये दिन रात बनाता है।
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
3: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
1: सूरज ये
3: कहलाता है।
1: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
0: मुझे एक और पहेली आज ही बता दो।
1: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
4: जल्दी आना, जल्दी आना।
1: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
0: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
1: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ की नहीं आऊँ।
0: वो भी दस
1: पहेलियाँ। अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
0: और
1: से डर जाती
0: है। और आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
1: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
4: नहीं, 80 हो जाएंगे।
1: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज के हमारे कलाकार हैं सोनू निगम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज़ में उनकी ही एल्बम दीवाना के कुछ गीत। आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत में आज सोनू निगम को। हम सुनवा रहे हैं इनकी एल्बम दीवाना से कुछ गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत और आज के हमारे कलाकार हैं सोनू निगम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज़ में उनकी ही एल्बम दीवानगी से कुछ गीत। इन गीतों को लिखा है फैज़ अनवर ने और संगीत से सजाया है साजिद वाजिद ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज हम आपको सुनवा रहे थे सोनू निगम की आवाज़ में उनके एल्बम दीवाना से कुछ गीत। शाम के 6:45 हुए हैं, लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज के कलाकार हैं राजुल सिंह और इनके साथी। आइए सुनते हैं इनके स्वर में पहला लोकगीत।

श्रोताओं, लोकगीत में आप सुन रहे हैं आज राजू सिंह को। आइए इनकी आवाज में आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत। आज आप सुन रहे हैं मालवी लोकगीत आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। लीजिए सुनिए ये अगली पेशकश।

श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे थे राजुल सिंह के गाए कुछ लोकगीत। शाम के 7 बजने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृहमंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 MCC C-17 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है।

0: है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यिजांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग करने की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई। कोलकाता की ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में चल रहा है। बेलफास्ट में दो मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और आयरलैंड के बीच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण और उसके बाद हम आपको जानकारी देंगे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। खेती गृहस्थी में आज सुनिएगा हुकुम चंद कटारिया का कविता पाठ। इसके साथ इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं लोक संगीत और मंडी के भाव। रात्रि 8:00 हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। इस कार्यक्रम को हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 9:15 पर सुनिए चित्र गीत। 9:30 पर आप सुन सकते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों और पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन। और रात्रि 10:30 पर आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत में विदुषी पद्मा तलवलकर का गाया राग सावनी विहाग। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। आइए अब आपको जानकारी देते हैं कल के कार्यक्रमों की। कल सुबह 6:05 पर आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। 6:30 पर सुनिएगा चिंतन। 6:35 पर खेती की बातें कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। विषय होगा बीज उपचार। इस विषय पर जानकारी देंगी भारती उपाध्याय। 6:40 पर श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय पाठ होगा। सुबह 7:20 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सुनहरे पल। सदाबहार फिल्मी गीतों का ये प्रोग्राम आपके लिए सुबह हम 7:20 पर अक्सर लेकर आते हैं। 8:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। ये एक कंपेयर्ड फिल्म संगीत प्रोग्राम होता है जो उद्घोषकों का अपना कार्यक्रम होता है। सुबह 9:00 हम आपको सुनवाएंगे कलाबाई खरलवा और साथियों का गाया लोकगीत लोक संगीत कार्यक्रम में। 9:15 पर सुगम संगीत के कलाकार होंगे जगजीत सिंह। 9:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत में पंडित उमा शंकर मिश्र का सितार पर बजाया राग तोड़ी। सुबह 10:00 आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी हमारे भोपाल केंद्र से। श्रोताओं 10:05 पर आप हमें फोन कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपने पसंद के गीत। जी हाँ, कार्यक्रम होगा MH हॉटलाइन। दिन में 11:00 हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम प्रसारित करेंगे और इन कार्यक्रमों में सबसे पहले आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12:00 फिल्म संगीत। 12:30 पर संग्रहालय से

दिन में 1 बजे आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत, दिन में 2 बजे फिल्म संगीत और 2:30 पर चित्रपट संगीत। तो ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। हमारी शाम की सभा 5 बजे आरंभ होती है, तो शाम 5 बजे सभा के आरंभ में सुनिएगा कार्यक्रम युववाणी। कल का क्रम होगा हेलो फ्रेंड्स, 5:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शाम 6 बजे विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा विकसित होता भारत, आप सुनेंगे भेंट वार्ता। जिला व्यापार और उद्योग केंद्र इंदौर के महाप्रबंधक श्री स्वप्निल गर्ग से बातचीत करेंगी शिखा। 6:30 पर आप सुन सकते हैं सुगम संगीत, कलाकार होंगे जगजीत सिंह। 6:45 पर लोक संगीत के कलाकार होंगे मधुसूदन भाटिया और इनके साथी। 7:20 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी। रात्रि 8 बजे सुर्खियों में हमारे भोपाल केंद्र से। 9:15 पर दिल ने फिर याद किया हमारे केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। और 8:15 पर आप सुनेंगे दिल ने फिर याद किया और 9:15 पर सुनिएगा चित्रगीत। और आपको बता देते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। जैसा कि हमने आपको बताया ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो ये थे हमारे कार्यक्रम कल की सभा में प्रसारित होने वाले। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। रात्रि के शाम के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र से। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने आज आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों को सम्मानित किया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय रक्षा दलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। श्री मोदी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा के नशा मुक्त भारत के निर्माण के महत्व पर लिखे एक लेख को साझा करते हुए ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सूचना सही समय पर साझा करने से सरकार को मामलों की प्रभावी निगरानी और आवश्यक

0: परामर्श देने में मदद मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
0: प्रदेश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस हमें जागरूक करता है कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सजग करते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान दें और स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र के संकल्प को साकार करने में अपनी भागीदारी निभाएं।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले मीसाबंदियों के अखिल भारतीय संगठन लोकतंत्र सेनानी संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेश भर के करीब 2000 लोकतंत्र सेनानी और उनके परिजन शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों का शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए कई घोषणाएं भी की।
3: लोकतंत्र सेनानियों को स्पेशल ट्रेन कर देंगे, आप आराम से जहां आपको यात्रा करना है सरकार के माध्यम से आपकी यात्रा कराएंगे। आपने रेस्ट हाउस सर्किट हाउस में 2 दिन निःशुल्क रुकने की बात कही, निश्चित रूप से मैं रुकने के लिए व्यवस्था करने की घोषणा करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी, और ऐसे में कभी कोई गंभीर बीमारी पड़ी और वहां राज्य के उस अस्पताल में इलाज नहीं है तो हमारी एयर एम्बुलेंस निःशुल्क लेकर के आएगी और उनका इलाज कराएगी, ये व्यवस्था भी हमारी सरकार के माध्यम से होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य जन स्वास्थ्य और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। भोपाल में हजरत इमाम हुसैन की शहादत को लेकर मुहर्रम पर्व अकीदत और गमी माहौल में मनाया गया। शिया समुदाय ने शहर में मातमी जुलूस निकाला, वहीं सुन्नी समुदाय की ओर से रोजा रखकर घरों में इबादत की गई। नर्मदापुरम में विभिन्न स्थानों से ताजियों और सवारियों का जुलूस निकाला गया। बात मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले दो दिनों में इसके भोपाल और उज्जैन संभाग तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून और मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आगरमालवा और सीहोर में 60 किलो

किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा सांसद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य, सिंचाई और ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सीहोर जिले के आष्टा स्थित देवांचल धाम देवबरला बिलपान में प्रदेश का पुरातत्व विभाग जल्द ही रुके हुए विकास कार्यों को दोबारा शुरू करने जा रहा है। शहडोल और झाबुआ जिलों में साइबर ठगी से बचाने के लिए और डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। कटनी के विजय राघवगढ़ वन्य क्षेत्र में 14 वन्य जीव एक साथ मृत पाए गए हैं, जिनमें 12 चीतल और 2 सांभर हैं। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और आगरमालवा जिले में कल आयोजित हुए शिविर में पुलिस अधीक्षक ने आमजनों को ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी लिंक और सोशल मीडिया हैकिंग से बचने के प्रभावी उपाय बताए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने आज आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों को सम्मानित किया और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। शाम के 7:20 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

कार्यक्रम प्रस्तुत वाला सभी किसान भाई बहन के कवा उनकी सुनीता बहन की घनी घनी राम राम भाई। बिछावा माटी मुद्रा न मौसम का ताना बाना से बुनेली अपनी जाजम ने शुरू करा अपनो कार्यक्रम जिको नाव छे खेती न गृहस्थी। पहला बात करान भाई मौसम की न माटी की, तो यो कवांगा माटी उपजाव अन्न ख मिटा पेट की पीर, अन मुद्रा बदल श्रम ख बदल भाग्य लकीर। भाई जसो खेती में अपन ख माटी की जरूरत पड़ज, वसोज अपन कहीं को व्यवसाय करना जावाज तो अपन ख मुद्रा आने पैसा की जरूरत पड़े। भाई पैसा हो तो सब काम बन तो चले जाए, अन सबसे पहलो काम च पैसों खींचाव नहीं हो तो सपना केतरा भी हो अपन पूरा नहीं करी पाता है।

सपना जरूर देखा आन सपना न कब पूरा भी करा। क्यों? क्योंकि सरकार अपनी साथ में छे न वा योजना लेने आई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मतलब PMMY एको नाम छे और यह भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाली एक प्रमुख योजना न छे, जो कि अपना गैर कृषि का काम करने वाला या गैर कारपोरेट का कहने को मतलब यो कि छोटा छोटा सा जो व्यवसाय से जुड़ेला छे उनका बिना किसी गारंटी का मतलब कि कोलेट्रल फ्री एक अपन कमान उसको 20 लाख तक को लोन दे जे काम। अनेको उद्देश्य यो छे कि भाई अपना जो छोटी छोटी चीज न बनाने वाला हो जे अपन मैन्युफैक्चरिंग कह देवान, भाई ऐसा कोई सेवा से जुड़ेला हो, जो कृषि से जुड़ेला छोटा छोटा उद्योग करना चाहता हो, गृह उद्योग चलाना चाहता है, उनका वित्तीय सहायता मिली जाए, सहयोग मिली जाए ताकि वो अच्छे अच्छे काम करी सक। अब केतरो केतरो सरकार ऋण दे सके तो एक कारण एक कहलो छे शिशु लोन भी मिलेगा। यो जो ऋण मिलेगा वो लोन का हो काम यो 50,000 तक ले सको। जो किशोर लोन छे एक ही श्रेणी न छे अपनी अपनी, तो किशोर लोन की श्रेणी छे वो 50,000 एक से लेना न 5 लाख तक को तम लोन ले सको। तीसरी श्रेणी छे कि तरुण का नाम से छे यो आने यो 5 लाख से 10 लाख तक को लोन तम ले सको। तरुण प्लस का नाम से भी छे यो 10 लाख से 20 लाख तक को लोन ले सको। आने ये ऐसा व्यवसायी नकालन छे जो कि जो तरुण जो क्षणी को लोन छे वो अच्छा तरीका से चुकाई चुका है, उनका फिर जिनने तरुण लोन लियो हो न वो चुकाई दियो तो फिर तरुण प्लस उनका आगे उनका अपना व्यवसाय का बढ़ाने का लेन मिली जाएगा। भाई कौन ले सके जो तो एक ही पात्रता में बतावा कि कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए आना कोई का भी बैंक में या वित्तीय संस्थान जो है वो काम भाई उनको कोई लो वो नहीं हुए लो है कि ऊंच नीच नहीं हुई हो आना जो लघु या सूक्ष्म व्यवसाय हुआ उनका न कहियो लाभ मिलेगा। भाई कसो कर आवेदन भी तो करना पड़ेगा नहीं, तो मुद्रा लोन का लेन सीधा तौर पर बैंक न से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने जेखा NBFCS कवान वो या माइक्रो फाइनेंस कंपनी जेखा अपन MFIS कवान उन्हीं संस्थान से आप संपर्क करी सको या ऑनलाइन जो सरकारी पोर्टल छे जनसमर्थ पोर्टल ओका पर या उद्यमिता मित्र पोर्टल पर घर बैठी ने भी सीधा ऑनलाइन करी सको। ऑफलाइन कभी तमख करनू हो तो मुद्रा ऑफिशियल वेबसाइट छे एक आप आवेदन फार्म मिलेगा एक डाउनलोड कर लो और सीधो अपना जो नजदीक का निजी क्षेत्र का बैंक हो वहाँ जाइ न सीधो फार्म आवेदन भरी सको आने को लाभ ले सको। आवेदन भरना में भाई कई कई दस्तावेज लगेगा तो यो बतावा कि पहचान को पत्र ओका अंदर प्रमाण आधार कार्ड हो पैन कार्ड हो वोटर आईडी कार्ड हो या पासपोर्ट हो यो लगेगा। भाई का निवास कर रहा है ओको प्रमाण भी होनो तो का में आधार कार्ड तमारा बिजली को हो पानी को बिल हो वो भी लगेगा। व्यवसाय का को करना चाह रहा है का को शुरू करना चाह रहा है या तम करी चुकिया तो उन व्यवसाय को नाम भी शुरू करने की तारीख भी भाई व्यवसाय तमारो किनी जगह पर छे ओको पतो भी वो भी ओका में नाकनू पड़ेगा। आना तमारी फोटो भी लगेगा तो जमारी हाल की जो फोटो है वो दे सको। आना बैंक में तमारो खातो हो भाई व्यवसाय को खातो हो तो पिछला 6 महीना में उन्हें कितो व्यवसाय करियो को काई स्थिति थी मग्गू में वो भी लगेगा। भाई इतनी जानकारी न तमको होनी चाहिए तमारा पास में तो हम यो कहवांगा कि तम पूरी अपनी तैयारी कर लो आवेदन दियो आने इनी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लाभ लेना ना अपना सपना नख साकार भी करी सको। और हम ये कहेंगे कि खेती का साथ साथ जुड़ेला जो लघु उद्योग छे वो काम भी अपना योगदान देना ना, खेती को काम तो करी रहा है पर व्यवसाय को काम भी करी सको तो आप कृषि व्यवसाय या कृषि उद्योग वाला उद्योगपति भी बनी सको। आज इतनी बात करी, बात मौसम की हुई, भाई बादल तो काला काला हुई गए, पानी भी पड़ना मंडी।

भाई राम गप्पू जी को, भाई राम गप्पू जी रणसूरे को गायलो। अभी अपन ने यो प्यारो सो लोक गीत सुनियो, वादड़ा न को माँ अपना मानसून की मौसम की आवाई तो हुई गई, भाई शुभकामना भी देवा। पर हम यो भी कहवांगा कि अभी धैर्य धरा, अपना जो 4 इंच 5 इंच अपनी जमीन छे आली हुई जाए, मजे को तमका लगी जाए पानी पड़ी गयो, ओका बाद ज अपन ख वावनी को सोचनु। हाँ एक काम तो सोची सकाय कि भाई पानी पड़ी गयल छे तो अपन ख अपना पर्यावरण को ध्यान रखनु, आसपास को ध्यान रखनु, गांव को ध्यान रखनु। तो अपन सब एकटा हुई ना एक काम तो करी सक।

0: कान कि भाई अपना जो पर साल को रही गयो थो कि अपन झाड़ झंग नहीं रोपी पाया, अपन पौधा नहीं रोपी पाया, तो अपन वो भी कर लेवा। नहीं वो सामूहिक रूप से करांगा तो कौन अच्छो रहेगा, तो भाई ओ को भी सोए साहब बैठा लो। आने साथ में आज इनाज विषय पर अपन सुना कविता पाठ, जे का पर अपन का हुकुम चंद कटारिया कविता पाठ करेगा। आने साथ में पर्यावरण का लेना न उनका जो उद्गार छे, जो मन की बात छे, उनका जो अनुभव छे वो भी अपन का बतावेगा। सुना उनको यो कविता पाठ न उनका मन की बात।
1: राम राम किसान भाइयों, आज आप सबके समक्ष में उपस्थित हुआ हूँ। पर्यावरण पर मेरी कुछ वार्ता है, वो इस तरह से है, पर्यावरण और हम। आप सब और हम सब जानते हैं कि आज से करीब 40-50 वर्ष पहले की बात करें तो हर गांव और शहर के आसपास नदी, तालाब, बावड़ी हुआ करती थी। नदियां कल कल करती बहती रहती थी, जिससे हमारे दैनिक जीवन के सारे कार्य होते थे, जैसे नहाना, कपड़े धोना, अपने बाग बगीचों की सिंचाई करना। लेकिन हमने धीरे धीरे अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए पेड़ों को काटना, जल और जंगल की जमीन का दोहन करना शुरू कर दिया, जिससे हमारा पर्यावरण धीरे धीरे बिगड़ने लगा है। जबकि हमारी ये जिम्मेदारी थी कि अगर हमने एक पेड़ काटा है तो पहले दूसरा पेड़ लगाना चाहिए, तभी हम दूसरे पेड़ को काट सकते हैं। हमारे भवन निर्माण में आने वाली लकड़ी के लिए भी हमने पेड़ों को ही काटना शुरू कर दिया है, जिससे कि धीरे धीरे पर्यावरण दूषित होने लगा और शुद्ध वायु भी मिलना हमें मुश्किल हो गया है। हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन 5 तत्वों से बना है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, और एक दिन इसी में विलीन हो जाना है। हमने हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक का इतना महत्व बढ़ा लिया है कि हमारा कोई भी काम प्लास्टिक के बिना नहीं हो पा रहा है। हमारे बच्चों के लिए टिफिन से लेकर पानी की बोतल, खाना पैक करने के लिए प्लास्टिक का ही उपयोग होता है। हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक का गिलास जो शादी विवाह में काम में लिए जाने वाला होता है, या पीने के पानी में दूध, छाछ, पना आदि में लिया जाता है, वो गिलास प्लास्टिक का होता है। जमीन के अंदर 400 वर्षों तक नष्ट नहीं होता। एक शोध में पाया गया है कि प्लास्टिक का इतना दलदल बन गया है कि एक दूसरा देश बन सकता है। आज अगर हम अपने दैनिक जीवन में हर काम में आने वाला पानी की बात करें तो वर्तमान में पानी का जल स्तर इतनी तेजी से कम होते जा रहा है कि जमीन के नीचे 100, 200, 500, 1000 और 2000 फीट तक नीचे चला गया है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम जमीन से पानी निकालने की तो पूरी कोशिश करते हैं, पर अपनी जमीन के अंदर कैसे उतारा जाए कभी यह नहीं सोचते। जमीन के पानी का जल स्तर भी बढ़ जाए, यदि हम बरसात के दिनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जमीन में पानी उतारने की कोशिश करें तो जमीन का जल स्तर जरूर बढ़ सकता है। गर्मी के दिनों में हम जो पानी की तकलीफ उठाते हैं उससे भी बच सकते हैं। सरकार ने भी आजकल नए भवन निर्माण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना शुरू कर दिया है। अगर हमें जल स्तर सुधारना है तो हमें अपने घर आंगन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि एक पेड़ की जड़ के नीचे कम से कम 10,000 लीटर पानी रहने की क्षमता होती है। आजकल और सौर ऊर्जा का भी बहुत महत्व बढ़ गया है, इससे हम बिजली का उपयोग अधिक से अधिक कर सकते हैं और जल से बनने वाली बिजली का उपयोग कम से कम कर सकते हैं, ताकि हमारे आसपास के पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सकते हैं। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो इसकी शुरुआत 1972 में हो चुकी थी, लेकिन 5 जून 1973 से पर्यावरण दिवस मनाने की परंपरा शुरू हो गई और हमारे पूरे भारत देश में 2040 तक प्लास्टिक पर पूरा नियंत्रण हो जाएगा और पूरा भारत देश प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा। इसी पर मेरी एक रचना है, वो कुछ इस तरह से है कि जब धरती पर बरसात की पहली बूंद पड़ती है, जब धरती पर बरसात की पहली बूंद पड़ती है तो

0: धरती का कण कण खिल जाता है और पहले कलियां खिलती है और फिर सारा मधुबन खिल उठता है। एक पेड़ माँ के नाम लगाना है, एक पेड़ माँ के नाम लगाना है। आओ हम सब मिलकर वसुंधरा को हरा भरा बनाएं, हम सबको मिलकर एक पेड़ माँ के नाम लगाना है, हम सबको मिलकर एक पेड़ माँ के नाम लगाना है। आओ एक पेड़ माँ के नाम लगाना है। वसुंधरा की महिमा इतनी अपरंपार है, वसुंधरा की महिमा इतनी अपरंपार है कि हम जो बोते हैं उससे वो 100 गुना करके देती है। जैव विविधता को भी हम सबको बचाना है, जैव विविधता को भी हम सबको बचाना है, वसुंधरा की धरा पर जीव जंतुओं को बचाना है। एक पेड़ माँ के नाम लगाना है, एक पेड़ माँ के नाम लगाने हैं। आओ हम सब मिलकर वसुंधरा को हरा भरा बनाएं, हम सब मिलकर एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। हम कड़वा बोते हैं तो कड़वा देती है, हम मीठा बोते हैं तो मीठा देती है, हम आम लगाते हैं तो आम देती है, हम नीम लगाते हैं तो नीम देती है, हम मीठा बोते हैं तो मीठा देती है, हम आम लगाते हैं तो आम देती है, हम नीम लगाते हैं तो नीम देती है। एक पेड़ माँ के नाम लगाना है, वसुंधरा को हरा भरा बनाना है। वसुंधरा में अनगणित जीव जंतु हैं, वसुंधरा में अनगिनित जीव जंतु हैं, उनका पालन पोषण करती है, हम सबका बाहर सहन करती है, बड़ी सलीनता के साथ रहती है। आओ हम सब मिलकर वसुंधरा को हरा भरा बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। आओ हम सब मिलकर वसुंधरा को बार बार प्रणाम करें। हो सरकार के इस पहल के साथ हम भी एक कदम बढ़ाएं और एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। आओ हम सब मिलकर वसुंधरा को हरा भरा बनाएं, आदर्श एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। आओ हम सब मिलकर वसुंधरा को हरा भरा बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। पर्यावरण के ऊपर मेरी रचना कुछ इस तरह से है कि मैं मौसम हूँ वही हूँ बदला नहीं हूँ, मैं मौसम हूँ वही हूँ बदला नहीं हूँ, मगर जरा सोचो क्या तुम नहीं बदले। दूर दूर तक चारों तरफ जिधर देखो उधर पर्यावरण दूषित किया है, दूर दूर तक चारों तरफ जिधर देखो उधर पर्यावरण दूषित किया है, फिर भी कहते हो कि मैं बदल गया हूँ। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, चारों तरफ पेड़ लगाओ, पर्यावरण सुधारो। मेरा वादा है मैं वही काम करूँगा जो मुझे करना है, क्योंकि मैं मौसम हूँ वही हूँ बदला नहीं हूँ। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, चारों तरफ पेड़ लगाओ, पर्यावरण सुधारो। मेरा वादा है मैं वही काम करूंगा जो मुझे करना है, क्योंकि मैं मौसम हूँ वही हूँ बदला नहीं हूँ। हर आदमी ये सोचता है कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, हर आदमी ये सोचता है कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ, उन्हें मौसम कहता है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हर आदमी गुनहगार है। इसीलिए अभी भी वक्त है, समझ जाओ, चारों तरफ पेड़ लगाओ, पर्यावरण सुधारो। मेरा वादा है मैं वही काम करूँगा जो मुझे करना है, क्योंकि मैं मौसम हूँ वही हूँ बदला नहीं हूँ। जय हिंद, जय भारत।
1: वाह, तो अभी अपन ने सुनी या हुकुमचंद कटारिया जी से उनको कविता को पाठ, घनी अच्छी उन्नवाद करी कि हम एक पौधों अपनी माँ का नाम से लगावा या अपना वो जो परिजन जिन हम खोई चुके हैं, अब हम कहीं नहीं धरती पर वो नहीं मिलेगा, लेकिन उनका नाम से अगर हम एक पौधों उछारांगा तो हम कभी तसल्ली होएगा, आना जो हमारा आसमान से देखी राज वो भी हमारा पर आशीर्वाद बरसावेगा। तो इना मौसम को हम कसे दुपयोग करनू, और एक तो गांव मिली ना असी कोई बंजर भूमि होए ओखा हरी भरी करनू, और अपनी धरती माँ का की जो जिम्मेदारी छे ओ कभी निभाणू। भाई बात न तो अरु करांगा, अब सुनी लेवान एक प्यारो सो लोकगीत जिक गायलो छे बजरी लाल मालवीन अन उनकी मंडली न सुना इना गीत में वो काई कही रहेल छे।

वाह, अभी अपन न भाई बद्री लाल मालवी को गायलो इतो प्यारो सो लोकगीत भी सुनियो और साथ में एक संदेश भी सुनियो। बिल्कुल सही बात है कि इनी बार पानी का हम रोकांगा, खेत को पानी खेत में, गांव को पानी गांव में रखांगा और पानी को बिल्कुल भी वर्णा नहीं देवांगा। अगर अपना छत में पानी एकटो हुई रोज तो ओख रूप हार्वेस्टिंग पद्धति का माध्यम से जमीन में अदर उतारांगा। ना देखो गांव में जितना भी घर छे अगर यो प्रण कर ले कि आव पानी खपन का जमीन का अदर उतारनूज, भूजल स्तर का बढ़ाणूज, तो अगर पानी में उतार देगा तो ट्यूबवेल जो उंधाड़ा में अपन का परेशान करे थो जिन दिक्कत हुई थी अपन का, तो वो कतई नहीं होएगा क्योंकि भूजल स्तर बढ़ी जाएगा। न तुम मानी न चलो कि कहीं का भी गांव शहर हो, सब न को भूजल स्तर घट तो गए न वो अपनाज कर्म न से घटेलो छ। तो भाई अपना कर्म न का तो सुधारनू पड़ेगा अपन का। न को सरल से उपाय छे कि छत को पानी अपन जमीन में उतारा आन गांव का पानी का लेन भी खेत का पास अपन से गुताली उठावा गुदाल आन खंती न खोदी लेवा, क्योंकि ओ को जो ढलान की तरफ खोदांगा

रासायनिक खाद नाकी नाकी ना अपन ना अपनी धरती माता ख जरा बंजर कर दी थी, तो ओख अपन ख आव गोबर की खाद हुई, गिंडोड़ा की खाद हुई, अपनी हरो खाद हुई यो नाका अन्न माटी ख उपजाऊ बनावा। तो भाई माटी अगर स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, तो दाणो भी अच्छो रहेगा। अब भाई बात आई दाणा की, तो दाणो भी तुम कहनी माटी का हिसाब से अच्छो मजे को लाणो, खातरी बन दुकान से लाणो, खातरी बन जगह से लाणो, अने देखी परखी न लाणो भाई तुम्हारी किस्म काकी छे वो कप भी विचार कर लेणु, एक बार नहीं दुई बार विचार करनु कि भाई अपना खेत में कितनी पकत देगा, अने ओका बाद भी दाणो टोल बन होनु चाहिए, एक सरीको होनु चाहिए, चमकदार होनु चाहिए, अच्छो स्वस्थ देखाए असो कि हाँ छे, तब ज अपन खलावणुज। अने घाई नहीं करनु है यत्ती न इत्मीनान से लाई न न अपना खेत में चोपणु। चोपणो को भी तरीको छे, बीजोपचार का कतई नहीं भूलनु है, ये छोटी सी बात छे लेकिन बड़ी गुणकारी छे। क्यों? क्योंकि माटी का अंदर जो रोग होंड रहे वो बीजोपचार करने से रोग ने से अपन को सुरक्षा मिली जाए ना। आदि भाई लड़ाई तो अपन यहाँ जीती गया, क्योंकि जड़ नमक कई बीमारी लगी जाए, जैसे उखटा हुई हो, ब्लास्ट हुई हो, जड़ गलन को रोग हुई हो, ओख यो सुरक्षा दे अने वो बीज का नहीं लगना देते हैं। कीड़ा कुरकुट न से बचा हुई जाए, हानिकारक जो कीड़ा छे दीमक हुई ये हुई, तो ये अपना जब अपन बीजोपचार कराएं तो काम नहीं होते हैं। अंकुरण बीज को घणो अच्छो हुई जाए, यो भी अच्छो छे ना भाई, आज शुरुआती दौर में लागत कम लगी रही, भाई कीड़ा कुरकुट हुई ना ना फिर दवाई छाटांगा तो ज़्यादा पैसा लगी जाएगा। आना ओका बाद बीजोपचार में देखना कायल छे कि 15-20% बढ़ोतरी ज़्यादा हो, ये कारण बीज उपचार करनू चाहिए। बीज उपचार को तरीको भी छे कि बीज उपचार को सही नियम छे FIR फार्मूलो न, इना फार्मूला का अनुसार छे। एफ मतलब हुयो फंजीसाइड मतलब फपुंद नाशक, अन दूसरो हुयो आई मतलब इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक, अन दूसरो आर तीसरो हुयो आर मतलब राइजोपियम मतलब जैव उर्वरक। अब एक आम फपुंद नाशक की बात कर लेवा, तो सबसे पहले बीज न का फंगस जनित जो रोग ने से बचाना कले फपुंद नाशक हुआ, जैसे थायरम हुई हो, बाविस्टिन हुई हो, वो कैसे उपचारित करा। कीटनाशक ने की बात करा, तो जमीन में कीड़ा न का बचाना कले कीटनाशक जैसो को एमिडाक्लोप्रिट हुई हो की परत चढ़ावा, अने तीसरो जैव उर्वरक कोलेन सबसे आखिरी में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाला जो पोषक तत्व छे, जो पोषण छे, वो कारण बीज नंबर राइजोपियम कल्चर देखा अपन PSB कल्चर भी कहान, उना उनका नसे जैव उर्वरक नसे उपचारित करांगा तो यो घणो अच्छो तरीको रहेगा किसान भाई नौनी। इना तरीका से अपन ख अपन बीजोपचार करनो ओका बात ज चोपणो। चोपड़ो को भी अपनो तरीको छे जो तमारा पास सोईसा है वो करो, पर रीज एंड फरोज पद्धति आजकल घणी अच्छी कारगर छे। वो काम ज़्यादा पानी भी हो, अब मौसम की मार छे, ज़्यादा भी हुई जाए कम भी हुई जाए, तो ओका से विपरीत परिस्थिति न में भी अपनी फसल बने ली रहे। फिर एक बात कहवांगा कि किस्म न में विविधता रखा, मध्यम समय की अगेती की हो या चट्टी भी हो, एक सार लेने का बजाय अलग अलग किस्म ना अगर चोपोगा तो कभी गड़बड़ हुई, कहीं मौसम की मार हुई, फसल की कीड़ा कुटकुट कोयो, तो इतनी आर्थिक हानि नहीं होएगा। यो तरीको छे सूझबूझ से खेती करने को, तो इना तरीका से खेती करोगा तो खेती घनी अच्छी रहेगा और पकत भी अच्छी मजे की हो। इन्हीं शुभकामना के साथ कि तुम वावणी करो और मंडी में खूब अच्छा से ले जाओ, खूब अच्छा भाव मिला। भाई भाव की बात करी तो लियो मंडी का भाव भी बता देवा लगे हाथ नहीं अच्छे। लक्ष्मीबाई नगर प्रांगण मंडी का भाव हमारे पास आयला छे। सोयाबीन की आवत आज रही 237, अने भाव रहो 4480 से लगे ना 7100, मॉडल भाव रहो 6900। गेहूँ की आवक रही 170 कुंटल, अने 2241 से लई ना 2576 एको भाव बैठो, मॉडल भाव रहो 2546।

चना की आवक रही 2 क्विंटल, अन एको जो एकज भाव रहो 4,950, मॉडल भाव भी वो ज रहेगा 4,950। अब संयोगिता गंज प्रांगण मंडी छे ओको भी भाव बताई देवा काई रहो, तो गहूँ की आवक रही 832 क्विंटल, अन भाव बैठो 2,400 से लगाई ने 3,080, अन मॉडल भाव रहो 2,526। सोयाबीन की आवक रही 197 क्विंटल, अन न्यूनतम भाव बैठो जी को 4,955 से लगी ने 6,890, अन मॉडल भाव रहो 6,890। मिर्ची की 94 क्विंटल आवक रही 12,490 से लगी ने 15,000 अधिक तक मूल्य रहो, अन मॉडल भाव बैठो 12,800। चना की 46 क्विंटल आवक रही 4,790 से लगे ने 5,855 अधिकतम मूल्य रहो, अन 5,385 एको मॉडल भाव रहो। मटर की 1 क्विंटल आवक रही अन भाव बैठो 3,195। मूंग की 2 क्विंटल आवक रही भाव रहो 5,000 रुपया से लगे ने 7,250 रुपया क्विंटल, अन मॉडल भाव रहो 7,250। मक्का की 9 क्विंटल आवक बैठी 1,887 से लगे ने 2,171 एको अधिकतम मूल्य रहो, अन मॉडल भाव की बात करा तो यो रहो 1,887। मेथी दाना का 1.5 क्विंटल आवक रही 6,690 रुपये को भाव बढ़ो। सातन में बतावा तुवर की जो आवक रही वो 12 क्विंटल रही 5,730 से लगे न एको भी एकज भाव रहो 5,730, अन मॉडल भाव भी एको 5,730 रहो। डॉलर चना की 1,435.5 क्विंटल आवक बठी भाव रहो 5,400 से लगे न 8,760, अन एको मॉडल भाव रहो 8,000। अमचूर का जो 78 क्विंटल आवक हुई अन 4,110 से लगे न 5,130 रहो एको अधिकतम मूल्य, अन मॉडल भाव रहो 5,130। तो भाई ये तो था आज की मंडी ने का भाव इंदौर मंडी का। अन मन कर रहे छे कि एक लोकगीत तो अरुही जाए, तो सुना न पण यो आनंदीलाल भावेल भाई को गायलो प्यारो सो भीली लोकगीत।

आनंदीलाल भावेल भाई का गायलाइना भीली लोकगीत का साथज कार्यक्रम को समय हुई चलो जाजम का अवेरा सभी किसान भाई बंडन सुनने वाला न से सुनीता बन मांग विदा न कह राम राम।

0: खेती गृहस्थी कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे अगला प्रसारण भोपाल केंद्र से। कार्यक्रम होगा सुर्खियों में।
1: प्रसारण थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: 2026 में भारत की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज गुरुग्राम में संपन्न हुई। वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और अवसरों पर और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर हुई चर्चा के बाद ब्रिक्स देशों के सामूहिक दृष्टिकोण और सहमति को दर्शाते हुए एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई। इस घटनाक्रम के महत्व, इसकी बारीकियों और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
4: धन्यवाद सोनू जी।
3: अतुल जी, जो ये 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई है, इसके महत्व को सर्वप्रथम आप बताएं कि कैसे आंकते हैं, खासकर जो वर्तमान ग्लोबल एनर्जी इकोसिस्टम है, जिस तरह के उसमें चैलेंजेस हैं, उसको देखते हुए ये जो सहयोग ब्रिक्स देशों के बीच उभर के आ रहा है, इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है?
4: सुनो जी, अगर आप देखें किसी संदर्भ में ये बैठक हुई है, और संदर्भ अगर हम देखें तो जो ईरान के ऊपर जो युद्ध चला इतने दिनों का, अब लगता है कि समाप्ति की ओर है, उसने एक चीज दर्शाई कि हमारी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर बहुत वल्नरेबिलिटी है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर खासकर बहुत वल्नरेबिलिटी है, और गल्फ देशों से। तो भारत की अगर हम बात करें तो हमारा जो इम्पोर्ट कंटेंट है बहुत हाई है, 80% के प्रतिशत हम बाहर से लेते हैं। इसलिए हमें एनर्जी के ऊपर सेल्फ सफिशियंट होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास तेल के उतने भंडार नहीं है, गैस के भंडार उतने नहीं है, इसलिए हमें अल्टरनेटिव फ्यूल्स पे जाने की जरूरत है ताकि हम आत्मनिर्भर हो सके। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो देश मिलके ये काम सोच रहे हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं वो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, यानी कि ये पश्चिमी देश नहीं है, ये उभरते हुए देश है, जिसमें भारत है, चीन है, रूस है, ब्राजील है, और 11 देश आपने जैसे कहा था, UAE आ गया, ईरान भी उसमें आ गया। तो ये जो कॉन्क्लेव बना है ये उभरते हुए देशों का है, तो एक नई दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं, जो पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड जो कहते हैं, उसके ऊपर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। और तीसरी इसमें एक बात जो जुड़ी हुई है वो है कि आफ्टर ऑल 2 चीजों पे एम्फेसिस किया गया, एक तो अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज इस तरह से सो कॉल्ड रिच देश नहीं है, इसलिए अफोर्डेबिलिटी बहुत जरूरी है। और फाइनली जो बात जा रही है कि जो डेवलप होगी टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, जो एनर्जी टेक्नोलॉजीज होगी, उसको हमें शेयर करना है किसके साथ? ग्लोबल साउथ के साथ। तो एक ग्लोबल साउथ का एलिमेंट भी ब्रिक्स के साथ जुड़ जाता है। तो मुझे लगता है ये एक तो कॉन्टेक्स्ट हो गया, और उसका जो एक तरह से डायरेक्शन है वो भी बहुत क्लियर हो गया इस बैठक।

0: के बाद।
1: बिल्कुल। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत के स्वच्छ ऊर्जा बदलाव और भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा रोडमैप पर प्रकाश डाला। उन्होंने सर्वेषां ऊर्जम के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
2: गाइडेड बाय द विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर एंड द ब्रिक्स चेयरशिप थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी India seeks to strengthen BRICS cooperation towards building energy systems that are resilient, future ready, technologically advanced, environmentally sustainable and people centric. India's own energy journey reflects this approach. Following the principle of Sarvesham Urjam, that is energy for all, our vision extends beyond meeting today's energy needs. India seeks to build a future-ready energy system that is digital, centralized and consumer-centric. Clean power, smart grids, energy storage and emerging fuels will work together to create a more reliable and sustainable energy ecosystem. This will support economic growth and improve the lives of over 1.4 billion people. Today, India is the world's third largest producer and consumer of electricity.
1: जिस तरह से खट्टर जी ने बताया कि आर्थिक विकास सामाजिक प्रगति के मुख्य आधार के रूप में किफायती भरोसेमंद और टिकाऊ ऊर्जा बहुत ही जरूरी है और हम विश्व के तीसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर कंज्यूमर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और उन्होंने जो हमारा रैपिड क्लीन एनर्जी एक्सपेंशन है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो बायो एनर्जी हो, उसमें जो हमारा लीडरशिप रोल है उस पर भी बल दिया। सो आपको लगता है कि भारत ग्लोबल एनर्जी इकोसिस्टम में एक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है?
0: सोनू जी देखिए कि एक दिशा मिली है, डॉक्ट्रिन मिला है एनर्जी फॉर ऑल। छोटा सा तीन वर्ड्स का है लेकिन इसमें बहुत कुछ कहा जाता है। एनर्जी फॉर ऑल मतलब हम सिर्फ अपने लिए नहीं देख रहे हैं, पूरे विश्व के लिए देख रहे हैं। और अगर अब इससे जोड़े पहले वाला स्लोगन जो है, जो सोलर एनर्जी के ऊपर बात हुई थी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो वो भी पूरे विश्व को देखते हुए उसके कॉन्टेक्स्ट या पर्सपेक्टिव में बात हुई थी। तो इसलिए जो दिशा जो आप कह रहे हैं वो लीडरशिप का है या नेतृत्व का है, लेकिन मंशा जो है वो ग्लोबल है। और खास करके जो आपने बात की, इसमें ग्लोबल साउथ हमारा फोकस रहा है, चाहे वो G20 की हमारी मीटिंग हुई है, उसके बाद की कोई मल्टीलैटरल्स हुई है, तो हमने ग्लोबल साउथ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, बल्कि केंद्र बिंदु बनाया है हमारी सोच की दिशा का। तो एक तरह से ये दोनों चीजें अभी बैठक हुई है उसमें भी दर्शाई जा रही है। साथ में फिर इसको करना कैसे, इसके रोड मैप्स क्या हो सकते हैं, जो पावर मिनिस्टर ने कहा है उसमें वो चीजें भी आती हैं कि आपको स्मार्ट ग्रिड्स कैसे बनानी है, मतलब डिजिटली कंट्रोल ग्रिड्स जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करें, जैसे जैसे पावर डाउन जाती है अप जाती है उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल उसका होता है डिजिटली, तो वो स्मार्ट ग्रिड होती है। स्मार्ट ग्रिड की बहुत जरूरत है अगर आप शेयर करना चाहें एनर्जी। और सबसे बड़ी बात होती है खास करके ये रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें तो स्टोरेज की, कि भाई सन चला गया विंड चली उसके बाद स्टोर कैसे करनी है, ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक है। और उसके ऊपर भी इस बार जो है एक संस्था बनाई है जिसपे आप स्मार्ट ग्रिड्स और स्टोरेज के ऊपर खास करके रिसर्च होगी। तो ये भी सिर्फ बात सोच की नहीं है लेकिन कैसे करना है इसको, इस बड़े प्रयास को, क्योंकि सब कुछ पहले से लिखा हुआ नहीं है, ये नए प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। अब इसमें एक और चीज आएगी, तो लोग चाहिए, नए स्किल्ड मैन पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, सबको इसमें ट्रेनिंग की जरूरत है। उसके लिए भी संस्था बनाई गई है इस बार कि जहां पर ये ट्रेनिंग भी दी जाए। तो सिर्फ बात ही नहीं हो रही बट जिसको कहते हैं ना वॉक द टॉक, वो भी साथ साथ हो रहा है कि भाई करना तो है, कैसे करना है वो भी, कैसे हम लक्ष्य में पहुंचेंगे, और जो गोल है वो ग्लोबल है।
1: जी। सो बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि ये ब्रिक्स ऊर्जा अनुसंधान सहयोग प्लेटफॉर्म जिसकी बात हुई है, जिसके अंतर्गत स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण की बात हुई है, और जो ये प्लेटफॉर्म है इसमें ब्रिक्स देशों के बीच जो अनुसंधान तकनीकी सहयोग और नॉलेज शेयरिंग होगी, आपको लगता है कि ये सारे इन देशों के एनर्जी सिक्योरिटी को और एनर्जी स्टेबिलिटी को मजबूत करने में सहायक होगा?
0: बिल्कुल, क्योंकि बात सुनो जी हो रही है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की। जब तक इंस्टीट्यूशंस नहीं बनेगी, संस्थान नहीं बनेगी, तब तक आप जो है एश्योर तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले से एक बनी हुई है ये संस्था, ब्रिक्स एनर्जी रिसर्च कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म। ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये वर्चुअल है सिर्फ, इसमें कोई फिजिकल हेडक्वार्टर्स नहीं है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के संदर्भ में रिसर्च और उसके रिकमेंडेशंस वगैरह वगैरह सारे जो देश हैं ब्रिक्स के इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। आप स्टडीज जिसपे करनी है वो एलोकेट की जाती है, ये जो मंत्रालय हैं ये इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स आ जाते हैं और डाउनस्ट्रीम होके स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से रिसर्च वर्क करती है। एक तो ये ERCP एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके साथ साथ एक तो

0: गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्योंकि बात फिर आती है स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज की,
1: जी
0: उसके भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस आधार पर काम करेंगे, क्योंकि बहुत से देशों की अपनी रेगुलेशंस होती है, इसको एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबको लेके आता है। तो वो भी इस बार बात हुई है, यहाँ पर ये गाइडिंग प्रिंसिपल भी अडॉप्ट किए गए हैं। तीसरी बात है कि इसके ऊपर जो रिसर्च है स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए, एक सेपरेट एक संस्था बनी है जो इसके ऊपर डिटेल में फोकस से और विस्तार से इसके ऊपर रिसर्च करेगी।
1: एक और बड़ा रोचक केंद्र बिंदु निकल के आया है कि भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों को आकार देने में युवा भागीदारी की भूमिका को बहुत बल दिया है और ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन के आयोजन का समर्थन किया ऊर्जा मंत्रियों ने। ये आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है?
0: देखिए, सोच नई है और सोच फ्यूचरिस्टिक है, डिजिटल है, न्यू इकोनॉमी की है, तो इसमें यूथ की भागीदारी तो बहुत जरूरी है, उसके बिना ये होगा नहीं काम। तो एक तरह से एक नया साइकिल शुरू हुआ है फ्यूचर एनर्जी का, जिसमें यूथ की भूमिका जो होगी मेरे को लगता है वो सेंट्रल रहेगी, जैसे आपने कहा, उससे साथ में क्योंकि रिसर्च का एलिमेंट भी आ जाता है, R&D का एलिमेंट आता है, इसमें स्टार्टअप्स वगैरह की भूमिका आएगी, यूथ का इंटीग्रेशन इसमें जरूरी है क्योंकि उसके बिना होगा नहीं काम। तो
1: जी
0: एक सेंट्रल फोकस रहेगा यूथ को इंटीग्रेट करने के लिए और ट्रेन करने के लिए, हमारी जो जेंजी जनरेशन है वो उसको वो खासकर इसमें शामिल होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अहम और बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, और साथ में अगर हम देखा जाए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फाइनली हमको यूथ के लिए क्रिएट करनी है, तो उसके लिए क्रिएट करने के लिए पुरानी तरीके से नौकरियां मिलने वाली नहीं है, अब आपको खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेट करना इसको, यूथ को स्किल्ड करना इन नई टेक्नोलॉजीज में बहुत जरूरी है हमारे फ्यूचर के लिए।
1: अतुल जी, ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों ने राष्ट्रीय परिस्थितियों, विकास प्राथमिकताओं और ऊर्जा प्रवाह को सम्मान देने के महत्व को भी दोहराया। इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, खासकर विकासशील देशों के लिए जिनके लिए एनर्जी ट्रांजिशन जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ इस स्टेज में फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल भी जरूरी है?
0: बिल्कुल, क्योंकि आप इस वक्त क्लाइमेट फंडामेंटलिस्ट नहीं बन सकते कि सिर्फ रिन्यूएबल ही करेंगे। भारत में ये देखे कोयले के कितने बड़े भंडार है, आप उसको छोड़ तो नहीं सकते, आप क्लीन कोल की तरफ जा सकते हैं कि वो पोल्यूटिंग ना हो, लेकिन फॉसिल फ्यूल तो जरूरी है। जो गैस है, अगर आप भारत में देखें तो हमारे बहुत सारे व्हीकल्स जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में इन्वॉल्व है या ऑटो रिक्शा वगैरह है, सब CNG पे चलते हैं। तो आपको एक अच्छा मिक्स की जरूरत है, बायोफ्यूल्स की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये जो बैलेंस है बिटवीन फॉसिल फ्यूल्स और या क्लीन फॉसिल फ्यूल्स और रिन्यूएबल्स के ऊपर बहुत अच्छा बैलेंस बैठक में देखने को मिला है, क्योंकि बात क्लाइमेट चेंज की भी हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की भी हो रही है, इसलिए वो कॉम्बिनेशन जो एक तरह से एक मॉडल बनाने की जरूरत है वो शायद भारत दिखा सकता है बाकी विकासशील देशों के लिए। और फाइनली बात यह है कि विकासशील देश जब जुड़ जाते हैं तो स्केलेबिलिटी और भी मिलती है, आपकी जो अफोर्डेबिलिटी, उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, तो इसलिए विकासशील देशों का उसमें जुड़ना बहुत जरूरी है। और भारत की सोच में ये बहुत ही क्लियर है कि शेयर करना है, और शेयर करना सिर्फ ये नहीं कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा, लेकिन इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस कि फाइनली अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करनी है दुनिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन को, तब ये जुड़ना बहुत जरूरी है और शेयर करना बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, जिस तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने शुरू किया और जो उसमें प्रगति हुई है उसके बारे में भी उन्होंने बात करी कि 2014 में सौर ऊर्जा क्षमता 3 GW थी, उससे बढ़कर आज वो 154 GW से अधिक हो गई है, और छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में तेजी लाने और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाई है, आपको लगता है कि इस तरह के मॉडल्स ये बाकी देश भी अडॉप्ट कर सकते हैं और हम भी दूसरे देशों से सीख सकते हैं?
0: बिल्कुल, और जैसे आपने बात की सोलर अलायंस की, देखिए अब उससे क्या हुआ है कि 2014 से पहले तो स्केल आप देखिए 3 GW से फाइनल फिगर आपकी कितने गुना बढ़ चुकी है, 3 से 150, इट्स ए रेवोल्यूशन, एनर्जी रेवोल्यूशन है इसको कहते हैं, इससे एक्सपीरियंस आपका गेन हुआ है, अब इसको आप शेयर कर सकते हो क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर सन के साथ किया है तो शायद और तरीके से भी हम कर सकते हैं, बाकी जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसमें भी हो सकता है। इसमें जब आपने शुरू में बात की लीडरशिप की, एक नेचुरल लीडरशिप आती है क्योंकि एक्सपीरियंस आ गया आपके पास, और इसकी एप्लीकेबिलिटी बाकी कंट्रीज के लिए बिल्कुल है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस रहा है। और अब हम आगे इसको दूसरे जो सोर्सेज आ रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात हो रही है, उसमें आप अलग कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, उसके ऊपर भी रिसर्च बहुत जरूरत है। तो नाउ यू कैन पुट योर फुट फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है भारत ने जैसे DPI किया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे देशों में आपको ये मिल जाता है DPI, जो हमारा पेमेंट सिस्टम, उसी तरह से एनर्जी के ऊपर भी हमारा भी एक सारा है, और मॉडल वही है, शेयर कर

0: है और ग्लोबल साउथ के साथ शेयर करना है, क्योंकि भारत में स्केल बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इतना हो जाता है, फिर आसान हो जाता है हमारे लिए वो शेयर करना। तो मुझे लगता है कि ये एनर्जी के ऊपर भी, रिन्यूएबल एनर्जी हो या न्यू एनर्जी हो, तो हम नेचुरल लीडर एक तरह से बन रहे हैं। ये नहीं कि हमारी मंशा लीडरशिप के अपने आप को ज्यादा जबरदस्ती आगे करने की, लेकिन वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप शेयर कर सकते हो, आप लीड कर सकते हो। ये एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स लिए गए हैं एनर्जी के फील्ड के ऊपर।
1: जैसा आपने कहा कि धरातल पर हमने निर्धारित समय से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल किया, बहुत सारे जो हमारे गोल्स थे उनको हमने समय से पहले क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए या क्लाइमेट फ्रेंडली जो स्टेप्स थे उनको हमने हासिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद समझिए।
2: अभी आप सुन रहे थे 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।
3: सुर्खियों में मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कीजिए स्वीकार आपकी रेडियो दोस्त श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।

0: श्रोताओं, आज दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम में बातें मौसम के जादू की। मौसम का भी अपना एक जादू होता है, आप मानते होंगे, है ना? जब ठंडी हवाएं धीमे धीमे बहती हैं, बादल आसमान को अपनी बाहों में समेट लेते हैं और फूलों की खुशबू फिजाओं में घुल जाती हैं, तब दिल भी कुछ अनकहे एहसासों से भर उठता है। ऐसे में प्यार और भी गहरा और भी खूबसूरत लगने लगता है। ऐसा महसूस होता है मानो प्रकृति का हर रंग, हर खुशबू और हर हवा का झोंका सिर्फ मोहब्बत की ही दास्तान सुना रहा हो। ठंडी हवाओं ने छेड़ा है प्यार का साज, ठंडी हवाओं ने छेड़ा है प्यार का साज, फूलों ने भी बिखेर दिए हैं अपने अंदाज। जब साथ हो अपने हम सफर का, तो हर मौसम बन जाता है सबसे खास।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

श्रोताओं, प्यार का जादू भी कितना अनोखा होता है। ये बिना दस्तक दिए दिल में उतर जाता है और फिर हर पल को खास बना देता है। इसकी मौजूदगी में साधारण सी राहें भी खूबसूरत लगने लगती हैं, हवाएं मधुर संगीत सुनाने लगती हैं और मौसम भी जैसे प्यार का पैगाम लेकर आता है। प्यार वो एहसास है जो दो दिलों के बीच खामोशी में भी अनगिनत बातें कह देता है। जब दिल सच्ची मोहब्बत से भर जाए तो हर मुस्कान में खुशी, हर धड़कन में उम्मीद और हर मौसम में एक नया जादू नजर आने लगता है। मौसम की नजाकत हो प्यार की बात हो, मौसम की नजाकत हो प्यार की बात हो, दो दिलों की मीठी सी मुलाकात हो, हर धड़कन गुनगुनाने लगे, हर पल महकने लगे, जब साथ हो हम सफर का तो हर मौसम जादू बन जाए।

सुहानी हवाएं जब चेहरे को छूती हैं, बादलों की ओट से झांकती धूप मुस्कुराती है, तो लगता है जैसे प्रकृति भी प्यार की कोई कहानी कह रही हो। मौसम की बाहों में जब हवाएं मुस्कुराती हैं, दिल की हर धड़कन कोई धुन गुनगुनाती है, बादलों की चादर, फूलों की महक, हर ओर मोहब्बत का ही रंग नजर आता है। ऐसे ही किसी पल में जब आंखें आंखों से बात करने लगे, तो लगता है जैसे मौसम नहीं खुद प्यार जमीन पर उतर आया हो। ये मौसम भी कितना शायर है, हर झोंके में एक पैगाम लाता है, जो बात लबों से कह न पाए कोई, वो बात चुपके से दिल तक पहुंचाता है।

जब बारिश की पहली बूंद धरती को छूती है तो सिर्फ मिट्टी ही नहीं महकती, दिल भी महक उठते हैं। वादियां हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, पेड़ पौधे जैसे नई जिंदगी से भर जाते हैं और हवाओं में एक मीठी सी खनक खुल जाती है। ऐसे ही मौसम में दिल नए सपने बुनने लगता है, अनकहे अरमान जाग उठते हैं और हर धड़कन किसी अपने की आहट महसूस करने लगती है। शायद इसीलिए बरसात को मोहब्बत का मौसम भी कहा जाता है। बरसाती बूंदों ने दिल की जमी को छू लिया, बरसाती बूंदों ने दिल की जमी को छू लिया, हर ख्वाब ने फिर से जीने का बहाना ढूंढ लिया। जब सावन ने प्यार का पैगाम सुनाया, जब सावन ने प्यार का पैगाम सुनाया, हर धड़कन ने किसी अपने का नाम दोहराया।

मौसम ने आज फिर इशारों में कुछ कहा है। मौसम ने आज फिर इशारों में कुछ कहा है। हवाओं ने दिल का हर राज छू लिया है। ऐसे में लब खामोश रहें तो कैसे रहें। हर फिजा ने मोहब्बत का गीत छेड़ दिया है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त और कीजिए स्वीकार

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशारोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रूपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं।

0: तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में एचएसबीसी के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत यूके व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमरीका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमरीका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एआई बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने

0: शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरू और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देशभर में आशूरा ए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। यीशु के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किये। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू टोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा।

मॉडर्न गर्ल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और मुकेश की युगल आवाज़ों में। गुलशन बावरा ने गीत को लिखा था और संगीत था रवि का। और अब आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में टार्जन की महबूबा इस फिल्म से एक गीत। इस गीत को लिखा है अनजान ने और

0: संगीत है सुरेश का। आइए सुनते हैं ये गीत।
1: ये मौसम खुशनुमा, ये फिजा, ये रुत जमा।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं एक्ट्रेस फिल्म का गीत। शमशाद बेगम की आवाज़ है, एलसी कपूर ने गीत को लिखा है और संगीत है श्याम सुंदर का।

0: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत अब समाप्त होता है।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या?
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: पर सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

सभी श्रोताओं का मन भावन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कीजिए स्वीकार आपकी रेडियो दोस्त श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है जूली फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीत है राजेश रोशन का। पत्र भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, पोता मुस्तफा खान, रऊफ भाई और शहीद भाई। ये पत्र है मालेगांव से। भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं दत्ता घायल, सुनीता बाई घायल, सानिका और गजानन घायल। श्री रोडकेश्वर नगर से पांगरा शिंदे टेल, इसके साथ इन्होंने जो नाम भेजे हैं वो नाम है रामचंद्र, सुनील, पंडित राव शिंदे पाटिल, चांदू बलखंडे, विलास शिंदे। इसके बाद इसी पत्र में इन्होंने अशोकनगर ज़िला हिंगोली से ही पत्र को शामिल किया है। इनके नाम हैं श्रोताओं के दीपाली राजू ठोके, पार्वती सखाराम ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके, छत्रपति शाहूनगर हिंगोली से टिक्कू इंगोले, रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत, रमाबाई सुरेंद्र इंगोले, मयूरी, सुरभि, मंजूषा, गौतम इंगोले। श्री माटेश्वर रेडियो श्रोता संघ नागेश्वर माटेगांव पुणे से शेष राव बोबड़े, सोना जी, सीताराम, शुभम, बालाजी बोबड़े, सुवर्णा, वेणुताई, वैष्णवी, नावकीकर मारो और इनके साथियों ने ये गीत सुनना चाहा है जिसे हमने जूली फिल्म से लिया है। लीजिए सुनिए।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मन भावन आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, दिल तो पागल है फिल्म से। लता मंगेशकर और उदित नारायण की युगल आवाजें इस गीत में आप सुनेंगे। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं उत्तम सिंह। गीत के लिए पत्र भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक, मीका बिरक, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, कवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली,

अंदाज अपना अपना ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की युगल आवाज़ें। इस गीत में आप सुनेंगे, मजरूह ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है तुषार भाटिया ने। और आपको बता देते हैं पत्र भेजने वाले श्रोताओं के नाम, इनके नाम हैं वी आर, राजश्री, रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज, सुवती, टोनी, निधि। इन्होंने पत्र भेजा है सोमानी नगर इंदौर से, गुमाश्ता नगर स्कीम नंबर 71 इंदौर से ये पत्र आया है। भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं अनिल कवचाले, रुबीहा, सुषमा, सीमा, स्मिता, पूजा, राखी और मीना। ये पत्र है पलसीकर कॉलोनी इंदौर से। श्रोताओं के नाम हैं धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश सहजवानी, हनी, जिम्मी, अमिता, दियान और जियांश मटाई। गौरीनगर इंदौर से पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले।

अल्लाह रखा ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब आपको सुनवाने जा रहे हैं। आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें हैं, राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है और संगीत है अनु मलिक का। और इस गीत के लिए फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं राजपुर से घीसु दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सुवती, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, स्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे। ये पत्र है छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं सुरेश सारथी और पूर्णिमा सारथी। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, इन्होंने पत्र छत्तीसगढ़ से भेजा है। तो आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। कार्यक्रम में अगला पत्र हमने शामिल किया है लाबरिया भैरो इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, रितिका, कृणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार। गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबिता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे। ये पत्र आया है आदर्श नगर मालोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा और शाइना शर्मा। एक पत्र और हमने शामिल किया है जिनकी फरमाइश पर हम ये गीत सुनवा रहे हैं। पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। फिल्म का नाम है तकदीर। किशोर कुमार और महेंद्र कपूर की आवाज़ें हैं। फारूक कौसर ने इस गीत को लिखा है और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, रात्रि के 10:03 हो रहे हैं और आप हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र के साथ और सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मन भावन। जी हाँ, ये वही कार्यक्रम है जिसमें आप भेजते हैं अपने पत्र और फरमाइशें और हम पूरी करते हैं आपके फरमाइशी गीत सुनाकर आपकी फरमाइशों को। आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत। इसे हमने लिया है साथिया फिल्म से। इस गीत में आवाज़ आप सुनेंगे साधना सरगम की और मुर्तज़ा की। इसके साथ आपको बता देते हैं कि संगीत है एआर रहमान का और गीत को लिखा है गुलजार ने। पत्र भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं दरियापुल वाबली महाराष्ट्र से, गजानन येले नवदीप येले, शेरी वर्नेर अकोला से, बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। ये पत्र है मलकापुर से। श्रोताओं के नाम हैं संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति सतीश सर्राफ और जगदीश तांबट, भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत हमने शामिल किया है यादों की बारात फिल्म से। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। मजरूह गीतकार और संगीतकार हैं R.D. बर्मन। और आइए अब आपको बता दें कि किन श्रोताओं ने इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है। ये हमारे श्रोता हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी। इन्होंने पत्र भेजा है उत्तराखंड से। उत्तराखंड से ही पत्र भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, रानी, तबस्सुम, रुखसार और मोहम्मद आशिफ। ये पत्र आया है छाबड़ा से। भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। उमर खेड़ महाराष्ट्र से, गंगाधर पोपलवाड़, सम्यक पोपलवाड़, प्रियंका, लक्ष्मी और स्वरिता पोपलवाड़ के साथ हैं उत्तम चमघाड़े। तो आइए सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, मन भावन कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं राम लक्ष्मण का संगीत, गीत मिताली का, और आवाज़ें आप सुनेंगे हरिहरन, हेमा सरदेसाई, शंकर महादेवन, उदित नारायण और सैफ अली खां की। फिल्म का नाम है हम साथ साथ हैं। फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंवाणकर, श्रीमती सरिता गंवाणकर, प्रिंस एकाश गंवाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गंवाणकर, प्रणीता गंवाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गंवाणकर, श्रीमती वैशाली गंवाणकर, श्वेता सुमित गंवाणकर, कुमारी ध्वनि गंवाणकर, और इन्होंने इनका नाम लिखा है परी। औरंगाबाद से राजेश साबेल पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। जरूर वरूड महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी, कार्तिक और युवराज। तो आइए सुनते हैं हम साथ साथ हैं फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन। रात्रि के 10:22 हो चुके हैं और अब आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत हमने लिया है कुछ कुछ होता है फिल्म से। अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू के साथ आप सुनेंगे साथियों की आवाजें इस गीत में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने। गीत के लिए पत्र भेजने वाले श्रोताओं के नाम आपको बता दें। इनके नाम हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। ये पत्र आया है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। श्रोताओं के नाम हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। ये पत्र आया है कृष्णा नगर टीवी टावर नागपुर से। श्रोताओं के नाम हैं नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई, रीमाताई डोंगर दिवे, दीक्षाताई डोंगर दिवे और राहुल डोंगर दिवे। तो आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर कुछ कुछ होता है फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ मनभावन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। दीजिए इजाजत और कीजिए स्वीकार आपकी रेडियो दोस्त श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आपको सुनवा रहे हैं विदुषी पद्मा तलवलकर का गाया राग सावनी बिहाग। इनके साथ संगति की है सारंगी पर शंकरलाल ने, तबले पर हितेंद्र दीक्षित ने और हारमोनियम पर मोहन मुंगरे ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे विदुषी पद्मा तलवलकर का गाया राग सावनी बिहाग। इनके साथ संगति की सारंगी पर शंकर लाल ने, तबले पर हितेंद्र दीक्षित ने और हारमोनियम पर मोहन मोंगरे ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रात्रि के 11 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में और उसके पश्चात अंग्रेजी में।

0: कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से।